0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 6 बजे हैं, अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष

0: के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। सतगुरु साईं के समक्ष निवेदन है कि भक्तों को मानवीय कमजोरियों, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से उबार लें। मानव प्रतिष्ठा परमार्थ के बिना तो हो नहीं सकती।

हे गुरुवर, आप जैसा कोई नहीं। आप अनुपम हो, अतुलनीय हो। महात्मा कबीर कहते थे, गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट।

हे राम, दाता तो केवल तुम ही हो, किसी और से याचना करना अपनी अस्मिता को खो देना है। हे प्रभु, तुम्हारे सुमिरन से मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुम्हारी शरण पाकर मैं धन्य हुआ।

मैदान करबला में बिनते मौला अली की आयाल की शहादत इंसानियत और दीन को एक ऐसे अलमिये से बचा कर ले गई जहां सदाकत हमेशा के लिए पामाल हो सकती थी।

साईं बाबा का दरबार सौहार्द की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ आकर भक्त अपना जन्म सफल बना जाता है।

मुकेश और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं संगीतमय श्री रामचरितमानस गान।

चित्रकूट पहुंचकर श्री राम को देखते ही भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधी न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का, जो कवि के कर्म मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाएं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृ प्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर केवट निषाद राज से भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की रज अपने माथे पर धारण की। स्नेह और शील का ये अद्भुत दृश्य है जहां उपस्थित सभी लोग प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई न कुछ कहता है न ही कुछ पूछता है। तब निषाद राज बोले, हे नाथ, कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवकगण, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल यहां आए हैं।

अभी आप सुन रहे थे संगीतमय श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर।

0: और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: क्रोध, क्रोध एक मनोभाव है जो हर मनुष्य में होता जरूर है, कम हो या अधिक। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो उसे सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। क्रोध मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति का हरण कर लेता है। क्रोध की अधिकता मनुष्य को अकेला बना देती है। क्रोध करने वाला मनुष्य समझता है कि सब उससे डरते हैं, जबकि वास्तव में सब उससे बचकर दूर भाग रहे होते हैं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि क्रोधी मनुष्य के साथ कोई रहना चाहेगा? जो मनुष्य क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसमें वो शक्ति आ जाती है कि वो सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सके। क्रोध करने वाला मनुष्य अपने बने बनाए काम क्षण भर में बिगाड़ कर रख देता है। क्रोध या आवेगवश मनुष्य कभी कभी ऐसी गलती कर बैठता है कि जीवन पर्यंत उसकी भरपाई नहीं हो पाती। मुंबई में रहने वाली एक महिला ने अपनी बेटी का रिपोर्ट कार्ड देखा। बेटी के नंबर उसकी मां की अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। मां अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाई और रसोई में रखी छुरी बेटी के मार दी। छुरी सीधे बेटी की छाती में लगी और बेटी तुरंत ही मर गई। मां ने बेटी को क्रोधवश छुरी मार तो दी थी, लेकिन वो उसे जान से मारना नहीं चाहती थी। जब उसने देखा कि उसकी बेटी तो मर चुकी है, अब पश्चाताप करने के अतिरिक्त उसके पास कोई दूसरा उपाय था ही नहीं। क्या मां का पश्चाताप बेटी को वापस जिंदा कर सकता था? हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। क्षण भर का क्रोध और जीवन भर का पश्चाताप, हमें किसी भी स्थिति में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना ही चाहिए। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, वो बड़े से बड़े कार्य को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। क्रोध पर नियंत्रण करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। व्यक्ति अगर ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। जब हम सब जानते हैं कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी हम उससे नहीं बच पाते। हम ये भी जानते हैं कि क्रोध हमें कितना अकेला बना देता है। ऐसा ही एक क्रोधी व्यक्ति था रमेश। उसे बहुत गुस्सा आता था। उसके क्रोध को देखकर एक सज्जन व्यक्ति ने उसे सुदर्शन ऋषि के आश्रम में जाने की सलाह दी। रमेश ने उसे गुस्से से घूरा और बोला, क्या मैं पागल हूं जो सुदर्शन ऋषि के आश्रम में जाऊं? इस बात को सुनकर वो सज्जन व्यक्ति तो वहां से चला गया। धीरे धीरे रमेश के गुस्से के कारण सब उससे दूर रहने लगे। एक दिन बेहद गुस्से में रमेश सुदर्शन ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। सुदर्शन ऋषि ने मन ही मन उसके गुस्से को समाप्त करने की ठान ली। वे जानबूझकर बोले, कहो नौजवान, कैसे हो? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे अंदर तो दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए हैं। ऋषि की बात सुनकर रमेश को बेहद क्रोध आया। क्रोध में उसकी मुट्ठियां भीग गईं और वो सुदर्शन ऋषि के साथ साथ सभी को अनाप शनाप बकने लगा। उसकी आवाज सुनकर आश्रम में अनेक लोग एकत्रित हो गए, परंतु किसी ने कुछ कहा नहीं। जब वो थक गया तो स्वयं ही नीचे बैठ गया। अत्यधिक क्रोध के कारण उसके सिर में दर्द होने लगा था और गला भी सूख गया था। ये देखकर ऋषि ने कहा, कहो युवक, क्रोध ने तुम्हारे सिवा किसी का अहित किया? क्रोध ने तुम्हें सबसे दूर कर दिया, जबकि तुम ज्ञानी और शिक्षित हो। ऋषि की बात सुनकर रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी क्षण उसने क्रोध को दूर करने का निश्चय कर लिया। क्रोध मनुष्य के सारे गुणों को ढक लेता है। कितना ही गुणवान व्यक्ति हो, यदि वो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता तो उसके सारे गुण सिर्फ एक अवगुण के कारण खत्म हो जाते हैं। हर परिस्थिति में अपने क्रोध को नियंत्रित करना आना ही चाहिए। यदि हम ये कहें कि हमें क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो संभवतः यह संभव नहीं है। लेकिन हम क्रोध को नियंत्रित तो कर ही सकते हैं और बहुत सारी बुराइयों से बच भी सकते हैं। क्रोध एक ऐसी कुल्हाड़ी है जो मनुष्य को उसी के स्वभाव से काट डालती है और उसकी मृदुता को नष्ट कर देती है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:45 हुए हैं। काव्यधारा के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्री विनीत प्रकाश गर्ग उर्फ हुड़दंग नवगीनवी से उनका काव्य पाठ।
2: 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद साहब का

0: खत्म हुआ था, आज भी वो सभी लोगों के हृदय में बसते हैं। ऐसे लोग, ऐसे वीर कभी मरते नहीं हैं, बल्कि यादों में बस जाते हैं। 23 जुलाई 1906 को भावरा में जन्म लिया, 23 जुलाई 1906 को भावरा में जन्म लिया। देशभक्ति नस नस में जिसकी, एक शेर सा जन्म दिया। देशभक्ति नस नस में जिसकी, एक शेर सा जन्म दिया। देश की खातिर जान गंवा दी, उनको शीश नवाता हूँ। देश की खातिर जान गंवा दी, उनकी गाथा गाता हूँ। चंद्रशेखर आजाद का जीवन शत शत शीश नवाता हूँ। चंद्रशेखर आजाद का जीवन शत शत शीश नवाता हूँ। पूज्य पिता का नाम अदब से सीता राम तिवारी था। पूज्य पिता का नाम अदब से सीता राम तिवारी था। माता थी जगरानी देवी, उन पर यह जगवारी था। माता थी जगरानी देवी, उन पर यह जगवारी था। अंग्रेजों को नित खदेड़ कर देश से बाहर कर डाला, ऐसे देश से प्यार किया जैसे फूलों की माला। अंग्रेजों को नित खदेड़ कर देश से बाहर कर डाला, ऐसे देश से प्यार किया जैसे फूलों की माला। चित्र तुम्हारा देख देख कर चैन हृदय में पाता हूँ। चंद्रशेखर आजाद का जीवन शत शत शीश नवाता हूँ। चंद्रशेखर आजाद का जीवन शत शत शीश नवाता हूँ। अंग्रेजों के हाथ न आए चने उन्हें चवाए थे। अंग्रेजों के हाथ न आए चने उन्हें चवाए थे। वीरभद्र एक दोस्त था धोखा देकर गहरे घाव लगाए थे। अंग्रेजों के हाथ न आए चने उन्हें चवाए थे। वीरभद्र एक दोस्त से धोखा खाकर गहरे घाव लगाए थे। अपना कनपटा अपनी गोली वीर गति को प्राप्त किया। अपना कनपटा अपनी गोली वीर गति को प्राप्त किया। अंग्रेजों के हाथ न आए स्वयं को यूं ही समाप्त किया। अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में यूं जीवन का अंत हुआ। देश पे मरने मिटने वाले आजादी का संत हुआ। देश पे मरने मिटने वाला आजादी का संत हुआ। देश कभी ना बिकने पाए, देश कभी ना बिकने पाए, ऐसे गीत सुनाता हूँ। चंद्रशेखर आजाद का जीवन शत शत शीश नवाता हूँ। चंद्रशेखर आजाद का जीवन शत शत शीश नवाता हूँ। 23 जुलाई 1906 को भावरा में जन्म लिया, ऐसे देशभक्त की नस में वीर पुरुष को प्रणाम करता हूँ। और कविताएं, झूठ का कद बढ़ रहा है, गुमनाम सीढ़ी चढ़ रहा है। झूठ का कद बढ़ रहा है, गुमनाम सीढ़ी चढ़ रहा है। इंसानियत का मोल कोई भी नहीं है, इंसानियत का मोल कोई भी नहीं है। पाठ ये उल्टे ही जैसे पड़ रहा है। आज हर व्यक्ति का जीवन एक अलग दिशा में जा रहा है। जीवन है उपहार प्रकृति का, ढंग से इसे सजाना है। जीवन है उपकार प्रकृति का, ढंग से इसे सजाना है। देश बढ़ रहा प्रगति पथ पर, पूजा के पुष्प चढ़ाना है। जीवन है उपहार प्रकृति का, ढंग से इसे सजाना है। उत्सव बेला की मालाएं भारत नया बनाना है। उत्सव बेला की मालाएं भारत नया बनाना है। जले गरीब के घर में चूल्हा, ऐसा चंदन लाना है। जीवन है उपहार प्रकृति का, ढंग से इसे सजाना है। देश बढ़ रहा प्रगति पथ पर, पूजा के पुष्प चढ़ाना है। मैंने अभी शुरू में चंद्रशेखर आजाद पर एक कविता पढ़ी, और कुछ और देश के वीरों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां वीर रस पर और दे रहा हूँ। सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद जैसी खोलते लहू की ये कहानी होनी चाहिए। सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद जैसी खोलते लहू की ये कहानी होनी चाहिए। आजादी के माने कभी हिंसा नहीं होती मित्र, आजादी के माने कभी हिंसा नहीं होती मित्र। मुस्कुराती देश की जवानी होनी चाहिए। चूम के फांसी का फंदा झूला था बैरागी बंदा। चूम के फांसी का फंदा झूला था बैरागी बंदा। काम ऐसी देश की बलिदानी होनी चाहिए। चूम के फांसी का फंदा झूला था बैरागी बंदा। कौम ऐसी देश की बलिदानी होनी चाहिए। देशद्रोही दुश्मनों को पल में जो समाप्त कर दे, आंख चंद्रशेखर आजाद जैसी सयानी होनी चाहिए। आंख चंद्रशेखर आजाद सी सयानी होनी चाहिए। सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद जैसी खोलते लहू की ये कहानी होनी चाहिए। खोलते लहू की ये कहानी होनी चाहिए। चार पंक्तियां और दे रहा हूँ मित्रों। देश को जो तोड़ रहे उनसे सावधान रहो, देश के लिए भी थोड़ा मान होना चाहिए। देश को जो तोड़ रहे उनसे सावधान रहो, देश के लिए भी थोड़ा मान होना चाहिए। सूझ के सींच के लहू से हमें भारत जैसा देश दिया, ऐसे सब शहीदों का सम्मान होना चाहिए। देश को जो तोड़ रहे उनसे सावधान रहो, देश के लिए भी थोड़ा मान होना चाहिए। सींच के लहू से हमें भारत जैसा देश दिया, ऐसे सब शहीदों का सम्मान होना चाहिए। धर्म, जाति, रंग भेद सारी बातें छोड़िएगा, धर्म जाति रंग भेद सारी बातें छोड़िएगा, सबसे पहले दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए, सबसे पहले दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए, सबसे पहले दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। कुछ पंक्तियां और दे रहा हूं। ये भारत देश मेरा है कि पंछी चहचहाते हैं, ये भारत देश मेरा है कि पंछी चहचहाते हैं, नमन उन शिष्ट लोगों को जो दुख में मुस्कुराते हैं। सभी भाषा, सभी बोली, सभी का मान अपना है, मगर हिंदी वो पूजा है जिसे झरने भी गाते हैं। कुछ पंक्तियां आपको सामने और दे रहा हूं। कुछ अच्छे संस्कार उन बच्चों ने पाए थे, कुछ अच्छे संस्कार उन बच्चों ने पाए थे, बूढ़े हुए माँ बाप को तीर्थ पे लाए थे। कुछ अच्छे संस्कार उन बच्चों ने पाए थे, बूढ़े हुए माँ बाप को तीर्थ पे लाए थे। थे वो ही माँ बाप जो बच्चों के संग आए थे, बचपन में बच्चों की उंगली थाम कर उन्हें मंदिर घुमाए थे। चार पंक्तियां इसी क्रम में और प्रस्तुत कर रहा हूं। मंदिर नहीं जरूरी हर रोज जाइए, मंदिर नहीं जरूरी हर रोज जाइए, हो जो अमीर गरीब सभी को गले से लगाइए। मंदिर नहीं जरूरी हर रोज जाइए, हो जो अमीर गरीब सभी को गले से लगाइए। कर्मों से अपने आप को इतना ऊंचा उठाइए, कदम पग आपके जहां भी पड़े उस जगह को मंदिर बनाइए। आजकल के जमाने में माँ बाप की क्या स्थिति हो रही है, चार पंक्तियों में दे रहा हूं। माँ ने कमाए पैसे पत्थरों को तोड़कर, माँ ने कमाए पैसे पत्थरों को तोड़कर, बेटे का कर्ज चुक गया वो पैसे जोड़कर। माँ ने कमाए पैसे पत्थरों को तोड़कर, बेटे का कर्ज चुक गया वो पैसे जोड़कर। सामान उसने माँ का ढंग से जमा दिया, सामान उसने माँ का ढंग से जमा दिया, नौकर गया था आज ही कमरा जो छोड़कर, नौकर गया था आज ही कमरा जो छोड़कर, माँ ने कमाए पैसे पत्थरों को तोड़कर। दो लाइन का एक बंद दे रहा हूं। माँ के ऊपर लिख दिए उसने गीत हजार, माँ के ऊपर लिख दिए उसने गीत हजार, माँ कमरे में बंद है अरसे से बीमार, माँ कमरे में बंद है अरसे से बीमार। जिंदगी का रंग कोई भी नहीं है, रोशनी का ढंग कोई भी नहीं है, जिंदगी का रंग कोई भी नहीं है, रोशनी का ढंग कोई भी नहीं है, हौसलों का कत्ल होता दिन दहाड़े, आदमी के संग कोई नहीं है, आदमी के संग कोई नहीं है। ये फूल महकेंगे एक दिन खुशबू सदा ना हो सकेगी, ये फूल महकेंगे एक दिन तक खुशबू सदा ना हो सकेगी, मिली लीज पर तुम्हें जिंदगी ये कभी रजिस्ट्री ना हो सकेगी। लिखोगे जब भी वसीयत अपनी जान जाओगे ये हकीकत, लिखोगे जब भी वसीयत अपनी जान जाओगे ये हकीकत, तुम्हारी मिल्कियत में तुम्हारी एक पाई ना हो सकेगी, तुम्हारी मिल्कियत में तुम्हारी एक पाई ना हो सकेगी। धन्यवाद।
1: काव्यधारा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री विनीत प्रकाश गर्ग उर्फ हुड़दंग नगीनवी से उनका काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले संस्कृत में तत्पश्चात हिंदी में।
2: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान् यत् विकसित भारत निर्माणस्य स्वप्नं जनान्दोलनस्य रूपं धारयेत्। राष्ट्रस्य युवजनाश्च अस्य संकल्पस्य आधारशिलाः भवेयुः। सर्वेषां परिष्काराणां केन्द्रे नागरिकाणां कल्याणमेव भवितव्यमिति तेनोक्तम्। प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां विकसित भारत लक्ष्याणां सिद्ध्यै ग्राम विकासस्य, कृषेः, समाजकल्याणस्य तथा सम्बद्ध क्षेत्राणां प्रगति समीक्षार्थम् आयोजितस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। अस्मिन्नुपवेशने मन्त्रिमण्डल सचिवः, प्रमुखमन्त्रालयानां सचिवाः तथा प्रधानमन्त्रिणः कार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। प्रशासनेन संसदि नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे सार्थक चर्चायै स्वसज्जता पुनरुक्ता। लोकसभायां संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय संसदीय नियमानुसारं सर्वेषां पक्षाणां सहभागेन अस्मिन् विषये सार्थक चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः तृतीय दिनमपि संसदि विपक्षेण नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं छात्राणां विरोध प्रदर्शनानि चोद्धृत्य पुनः पुनः व्यवधानं कृतम्। अनन्तरं लोकसभा, राज्यसभा च आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता, केन्द्रीय मन्त्री च जेपी नड्डा अवदत् यत् छात्रैः उत्थापितं नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं राजनीति विषयः न कर्तव्यः। अस्मात् प्रकरणात् राजनैतिक लाभस्य प्राप्त्यै प्रयत्नः अपि न समीचीनः। असौ ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवदत् यत् एतत् अन्वेषणस्य विषयः अस्ति, अथ अस्मिन् विषये गंभीर विमर्शस्य च आवश्यकता वर्तते। असौ एतदपि अवदत् यत् एषा गंभीरा समस्या अस्ति, यस्याः विषये सम्यक् निष्कपटश्च विमर्शः अपेक्षितः।
3: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पोंडेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस देश से मनीला नगरे आयोजित क्वाड देशानां विदेश मन्त्रिणाम् उपवेशनस्य अन्तराले कनाडा देशस्य विदेश मन्त्रिणा अनीता आनन्द इत्यनया सह मेलनम् अकरोत्। असौ सामाजिक सञ्चार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे अवदत् यत् भारत कनाडा देशयोः मध्ये सहकार्यं निरन्तरं सुदृढं भवति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् उभय देशयोः प्रधानमन्त्रिभ्यां निर्धारित लक्ष्याणां सिद्धि विषये वार्ता जाता। उत्तर मेसिडोनिया देशस्य राष्ट्रपति पदासीना गोर्दाना सल्जानोस्का दावकोवा इत्येषा अवदत् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रस्य भारतस्य राष्ट्रपतिः एका महिला अस्ति इति गौरवस्य विषयः अस्ति। सा एतदपि अवदत् यत् राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मेलनानन्तरं सा अतिप्रभाविता जाता तथा महिलाः विश्वे परिवर्तनम् आनेतुं समर्थाः सन्ति इति तया एतदपि अनुभूतम्। अद्य राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नेव दिवसे 27-1900 वर्षे इण्डियन् ब्रॉडकास्टिंग कम्पनी इत्यस्य संस्थानस्य अन्तर्गते बॉम्बे केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं जातम्। 37-1900 वर्षे जून मासस्य अष्टमे दिने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्त्य ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। अयं दिवसः भारतस्य विकासे, शिक्षा प्रसारे तथा सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणे प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयति। इति वार्ताः।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनसे न केवल सरकार के कामकाज में सुधार होना चाहिए बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भी प्रगति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गंभीर समस्या है जिस पर ईमानदारी से बातचीत होना जरूरी है।
3: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
4: श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसर डैन, सीनेट अध्यक्ष मिर्सोआ अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरेन ग्रिंडियानू से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दोना सिल्जानोवस्का दाफोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपिये में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में सुश्री दाफोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। अमेरिका की सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज होने के साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वह समुद्री मार्गों से गुजरने वाले नागरिक और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब अमरीका होर्मुज जलडब्रू मध्य पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 956 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आइए सुनते हैं घुटने के दर्द विषय पर जानकारी।
5: घुटने का दर्द एक ऐसा कष्ट साध्य रोग है जो अधिकता से स्त्री पुरुषों को पीड़ित करता रहा है। घुटने पर हाथ रखकर उठने लगने का मतलब है इस रोग की शुरुआत। पौष्टिक भोजन का अभाव, मानसिक तनाव, भय, क्रोध, खून की शरीर में कमी होने से ये रोग होता है। वैसे 50 की उम्र के बाद उचित देखरेख के अभाव में हड्डियों में चिकनाई घटने लगती है और खुश्की बढ़ने लगती है। शरीर में फॉस्फोरस की कमी ऐसे में होने लगती है। इन वजहों से हड्डियों के जोड़ों की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है और नतीजतन दर्द की शुरुआत हो जाती है। घरेलू उपचार के लिए दाना मेथी का चूर्ण 1 चम्मच भर नित्य प्रातः गर्म पानी से सेवन करें। सौंठ का काढ़ा बनाकर उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाएं। रोज रात को सोने से पहले इसे गरम गरम सेवन करें। नारियल की कच्ची गिरी पीसकर घुटनों पर मलें। कच्ची गिरी का सेवन भी करते रहें। नित्य प्रातः 3 से 4 अखरोट की गिरियां खाएं। फलों और सब्जियों का सेवन अधिकता से करें। रात को गर्म दूध के साथ इसबगोल की भूसी 1-2 चम्मच लेते रहें। सुबह शाम टहलने में कंजूसी न करें। ठंडी और वायु प्रकोप करने वाली चीजें न खाएं। मांस, मदिरा, धूम्रपान, खट्टी चीजें सेवन न करें। कब्ज़ से बचाव रखें। घुटनों को एकदम मोड़ कर न बैठें। बैठे बैठे देर तक काम करते रहने या एक ही स्थिति में काफी देर तक बैठे रहने से शरीर का कोई अंग कभी कभी देर के लिए सुन्न हो जाता है। इसे अंग विशेष का सो जाना भी कहते हैं। मांसपेशियों या रक्तवाहिनियों में कमजोरी आ जाने से वो हिस्सा सुन्न पड़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये रोग वायु प्रकोप से होता है। आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार रक्त संचरण में रुकावट होने से सुन्नता आ जाती है। जब कोई हिस्सा सुन्न हो जाता है तो उसमें झंझनाहट होने लगती है। सुई चुभने जैसा अनुभव होता है और वो सहजता से कार्य नहीं कर पाता। बादाम का तेल मलने से सुन्नता दूर होती है। पीपल के पेड़ की 4-5 कोपलें सरसों के तेल में मिलाकर आंच पर पकाएं, फिर छानकर इस तेल की मालिश करें। तिल का तेल, इसे मीठा तेल भी कहते हैं, कि 100 ग्राम मात्रा में 5 ग्राम अजवाइन और लहसुन की 2 पुतियां छिलकर कुचलकर डालें और तेल को पकाएं। पुतियों के काला होने पर उतार लें और छानकर शीशी में भरें। सुन्न हिस्से पर इस तेल की मालिश असरकारक रहती है।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे घुटने का दर्द विषय पर जानकारी। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। अपने सुनने वालों को बता दें आज प्रातः 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे शामली और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। सुबह 7:31 पर सूचना और मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ प्रसारित किया जाएगा। धरती गाती है कार्यक्रम में प्रातः 9:25 पर आप सुनेंगे मृदुला निगम और दिशा सक्सेना के स्वर में रोहेलखंडी लोकगीत। दिन में 1:15 पर महिला जगत के स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज क्रम में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पूजा सिंह से प्रियंका त्यागी की बातचीत का विषय रहेगा महिलाओं के लिए फिजियोथेरेपी। लोकधारा में दिन में 1:45 पर सुनिएगा दीपा चौहान के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती की बातें।
6: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं बरसात के मौसम में मेड़बंदी का महत्व। किसान भाइयों बरसात का मौसम चल रहा है और जहां तक बात है बरसात की तो भाई देखो 25 जून से और भैया लगभग लगभग सितंबर के महीने तक

0: बरसात का मौसम रहता है और हमारे किसान भाई बरसात के मौसम में काफी ऐसी फसलों का चयन करते हैं, बुआई करते हैं, जिससे भाई वो बरसात बरसात में ही पक कर तैयार हो जाती हैं। किसान भाइयों, यदि बारिश ना होती तो भैया हमें जो है एकाध पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई हमारे किसान भाई समय के अनुसार समय पर अपने खेतों की मेड़बंदी कर लेते हैं, जिससे भैया वो पानी का संचय भैया करके अपनी भविष्य के लिए रख लेते हैं। किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर करती है। आज हम कितने भी आधुनिक या कितने भी वैज्ञानिक युग में खेती कर रहे हैं, लेकिन भाई हमारे किसान भाई वर्षा ऋतु पर आधारित आज भी हैं, और वर्षा का जल यदि सही ढंग से खेत में रोका और संरक्षित किया जाए तो इससे फसलों को अच्छी वृद्धि मिलती है। किसान भाइयों, इसी उद्देश्य से खेतों में मेड़बंदी की आवश्यकता पड़ती है। भाई मेड़बंदी का अर्थ है खेतों की सीमाओं पर मिट्टी मजबूत मेड़ बनाना, ताकि भैया वर्षा का पानी तेजी से बहकर बाहर ना जाए। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में मेड़बंदी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये जल संरक्षण, मृदा संरक्षण तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसान भाइयों, बरसात के समय तेज वर्षा के कारण खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, इससे मृदा अपरदन होता है, और जब खेतों में मजबूत मेड़ होती है तो भाई वर्षा का पानी धीरे धीरे रुकता है और मिट्टी का कटाव हमारे खेतों का नहीं होता है। इससे भैया खेत की उपजाऊ परत सुरक्षित रहती है तथा पोषक तत्वों का नुकसान हमारे किसान भाइयों के खेतों का नहीं होता है, इससे हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ होता है। किसान भाइयों, मेड़बंदी का एक प्रमुख लाभ है जल संरक्षण, यानी कि वर्षा का पानी मेड़ों के कारण खेतों में अधिक समय तक ठहरता है और धीरे धीरे मिट्टी में समा जाता है, जिससे भैया भूजल स्तर बढ़ता है। किसान भाइयों, मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहती है, बरसात समाप्त होने के बाद भी ये नमी लंबे समय तक हमारे किसान भाइयों की फसलों के लिए उपलब्ध रहती है। किसान भाइयों, जिससे सिंचाई की आवश्यकता हमें जो है कम पड़ती है। भाई मेड़बंदी से उर्वरकों और जैविक खादों का बहाव भी रुक जाता है। भाई बरसात का पानी आया और हमारी मेड़बंदी यदि हमारे खेतों की है, तो भैया यदि हमने कोई खेत में अपने उर्वरक डाल रखा, भाई जैविक खादों का बहाव भी रुकता है। यदि वर्षा का पानी बिना रोक टोक बह जाए, यानी कि हमारे खेत की यदि मेड़बंदी ना हो, तो उसके साथ खेत में डाले गए पोषक तत्व भी बाहर निकल जाते हैं और मेड़ों के कारण ये पोषक तत्व खेत में ही बने रहते हैं, जिससे फसल को पर्याप्त पोषण मिलता है। किसान भाइयों, उर्वरक पर होने वाली लागत भी कम होती है, यानी कि जो हमने आज उर्वरक डाला है वो भैया हमें लंबे समय तक हमारी फसलों को मिलता रहेगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन अपनी फसलों से मिलेगा। किसान भाइयों, अगर बात करें मेड़बंदी से जल भराव की समस्या को भी, तो भाई नियंत्रित किया जा सकता है। उचित ढंग से बनाई गई मेड़ें अतिरिक्त पानी के प्रभाव नियंत्रित करती हैं और आवश्यकता अनुसार भैया पानी को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में सहायता करती हैं। इससे फसलों की जड़ों को नुकसान नहीं होता और उनकी वृद्धि स्वस्थ रहती है। किसान भाइयों, मेड़बंदी पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इससे वर्षा का जल भूमि में अधिक मात्रा में समाता है और पुनः भूजल धारण हो जाता है, और सूखे की स्थिति में भी पानी की उपलब्धता बेहतर बनी रहती है। किसान भाइयों, बरसात में मेड़बंदी किसानों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है और आवश्यक कृषि उपाय है। ये वर्षा जल का संरक्षण करती है, मिट्टी के कटाव को रोकती है और भूजल स्तर बढ़ाती है। किसान भाइयों, साथ ही साथ कृषि को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनाती है। आप अपने खेतों की मेड़बंदी वर्षा ऋतु से पहले कर दें, ताकि भाई वर्षा ऋतु का जो जल होता है उसका आप पूरा सदुपयोग कर सकें, लाभ कमा सकें। तो किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेती एवं खेती से जुड़े अन्य विषयों के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। संध्या 4:00 युद्ध नायकों पर आधारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स रात 8 बजे संसद समीक्षा, रात 9:30

पर कंट्री वाइड तथा इनसाइट्स कार्यक्रम और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल में हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग, ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल में हम आपको सुनवाएंगे। शामली और अम्बेडकर नगर जिलों की हलचल, ये कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे सूचना और मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ धरती गाती है। कार्यक्रम में प्रातः 9:25 पर सुनिएगा मृदुला निगम और दिशा सक्सेना के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत। दिन में 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1334वां भाग सुनवाया जाएगा। दोपहर 1:15 पर महिला जगत के स्वास्थ्य के स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज क्रम में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पूजा सिंह से प्रियंका त्यागी की बातचीत का विषय होगा महिलाओं के लिए फिजियोथेरेपी। दिन में 1:45 पर लोकधारा में सुनिएगा दीपा चौहान के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में संध्या 5 बजे पशुपालकों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD पर चर्चा होगी। युवाणी में शाम 5:15 पर कुछ खास है आज क्रम में, आज का विषय होगा खुद से कंपटीशन रखो। इसके अलावा बूझो तो जाने क्रम में भारत और इंग्लैंड के एक शहर की तुलना से संबद्ध प्रश्न पूछा जाएगा। कृषि जगत में सुनिएगा संध्या 6:05 पर अंकित कुमार का लिखा नाटक चकबंदी। प्रतिभागी होंगे आलोक कुमार, प्रमोद सिंह, सुवेंद्र सिंह, नरेश पाल सिंह, सोहन शर्मा और कुमुद सिंगल। निर्देशक होंगे अंकित सैनी और प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा होंगे। शाम 7 बजे विविधा में श्री श्री पाल सांगवान की वार्ता का विषय रहेगा लोक संस्कृति के प्रसार में आकाशवाणी। संध्या 7:32 पर सुगम संगीत में सुनिएगा साकिब अक्काशी और साथियों के स्वर में कव्वालियां। फिल्मी गीत हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे सवेरे 8:45 पर गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में। सुबह 10 बजे की तुम्हारे कार्यक्रम के तहत प्रातः 11 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम में, दोपहर 12

0: असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को जन आंदोलन में बदलने की अपील की, कहा देश के युवाओं को बनाना चाहिए इसकी नींव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर जताई चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के चयन के लिए दिया एक महीने का अतिरिक्त समय। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की, आज 995 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताई है। नई दिल्ली में कल उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
3: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
2: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद कल भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए।
4: देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
2: वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य

0: मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में कल पार्टी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मंगलवार को नीट पेपर लीक मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन के विरोध में किया गया। अयोध्या के श्री मणिराम दास छावनी में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर ट्रस्ट ने साफ किया कि राम भक्तों की आस्था पहले की तरह अटूट है और मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बनी हुई है। ट्रस्ट के महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के चयन के लिए गठित समिति ने आवेदनों की अधिक संख्या और प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी है। तब तक प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
1: एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा है। विषय की गंभीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने यह अनुरोध स्वीकार किया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलम्ब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है।
0: कल हुई ट्रस्ट की बैठक में मंदिर प्रबंधन, चढ़ावा व्यवस्था, ट्रस्ट के रिक्त पदों और धार्मिक समिति के पुनर्गठन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मीडिया के माध्यम से नियमित संवाद बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके जिले के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जल निकासी की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में मुख्यमंत्री ने जल निकासी के प्रबंध पर जोर देते हुए कहा कि जल भराव की समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोका जाए ताकि इससे नाले चोक न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ चौकियां सक्रिय रहें और बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों में बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति पूरी दुनिया की धारणा बदली है। श्री योगी ने कहा कि भाजपा ने सबसे बड़े दल के रूप में सुशासन और लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे।
3: मुख्यमंत्री 6-लेन फ्लाईओवर सहित गोरखपुर को 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वह टीपी नगर पैडलेगंज मार्ग पर बने 6-लेन फ्लाईओवर के समीप आयोजित समारोह में 813.52 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 181.77 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। टीपी नगर पैडलेगंज मार्ग पर 2.6 किलोमीटर की लंबाई वाले और गोरखपुर के पहले 6-लेन फ्लाईओवर से अंतर जनपदीय कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। इस फ्लाईओवर के जन समर्पित हो जाने से संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़, कुसुम नगर, देवरिया, बिहार, महाराजगंज और नेपाल तक आने जाने वाले लोगों की यात्रा में काफी सुविधाजनक हो जाएगी। GN चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज से शुरू हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश के 10 एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में 2 खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे।
4: गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर दौड़ में पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगे। प्रयागराज के कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट और जौनपुर के रोहित यादव भाला फेंक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टेपल चेस और 5000 मीटर दौड़ में भाग लेंगी। वहीं प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर की पैदल चाल और नीरू पाठक 400 मीटर की रिले दौड़ में प्रतिस्पर्धा करेंगी। यूपी पुलिस की अस्मिता डे जूडो और आगरा के आदित्य प्रताप सिंह बॉक्सिंग में दम दिखाएंगे। लखनऊ के श्रियांश त्रिवेदी और भदोही के सागर पैरा एथलीट के रूप में भाग लेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत कल प्रदेश के बिजनौर जिले में एक साथ 57 तालाबों की खुदाई का काम शुरू किया गया। हमारे बिजनौर प्रतिनिधि ने बताया कि वहां 409 अमृत सरोवरों के बाद अब 562 चिन्हित स्थानों पर जल संचयन के लिए ढांचा मजबूत किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य क्रिटिकल जोन में भूजल स्तर में सुधार करना है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 25 जुलाई तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इस बीच बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा नदी में खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में हिंडन और यमुना नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को जन आंदोलन में बदलने की अपील की। कहा, देश के युवाओं को बनाना चाहिए इसकी नींव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर जताई चिंता। कहा, युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO के चयन के लिए दिया 1 महीने का अतिरिक्त समय। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। आज 995 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
6: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
7: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: साथ साथ।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में तिथि विशेष पर जानकारी, अखबारों की सुर्खियां, फिल्मी गीत, इसके अलावा जानकारी दी जाएगी चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर। फिल्मी सफर में हास्य अभिनेता महमूद के फिल्मी सफर पर प्रकाश डाला जाएगा। साथियों, स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के आदिवासी गांव भावरा में हुआ था। सन 1921 में जब चंद्रशेखर सिर्फ 15 साल के थे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और एक दिन धरना देते हुए पकड़ लिए गए। बालक चंद्रशेखर को अदालत में पेश किया गया और 15 बैंतों की सजा दी गई। चंद्रशेखर बैंत के हर वार पर महात्मा गांधी की जय और भारत माता की जय बोलते जाते थे।

सजा पूरी हुई तो चंद्रशेखर का बनारस के ज्ञानवापी मोहल्ले में नागरिक अभिनंदन हुआ। अब वे चंद्रशेखर आजाद कहलाने लगे। इस घटना के बाद चंद्रशेखर का मन देश को आजाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वे मन्मथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य हो गए। चंद्रशेखर जिस बड़े अभियान में सबसे पहले शामिल हुए उसे काकोरी डकैती अभियान का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल कर रहे थे। चंचल स्वभाव और कम उम्र होने के कारण बिस्मिल उन्हें क्विक सिल्वर यानी पारा कहकर पुकारते थे। 9 अगस्त 1925 को हुई काकोरी डकैती में शामिल सभी क्रांतिकारी एक एक कर पकड़े गए, पर चंद्रशेखर आजाद कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगे। वे झांसी में पुलिस थाने जाकर पुलिस वालों से गपशप लड़ाते थे, पर पुलिस वालों को कभी भी उन पर संदेह नहीं हो सका। काकोरी कांड के बाद उन्होंने दल का नए सिरे से गठन किया और उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड आर्मी रखा। चंद्रशेखर इस नए दल के कमांडर थे। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। बहुत देर तक आजाद ने जमकर अकेले ही

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
3: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को याद करना पुण्य प्राप्त करने जैसा है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 23 जुलाई सन 1856 को हुआ था। तिलक गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान किसी भांति विस्मृत नहीं किया जा सकता। उनका नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने 1914 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और इसके अध्यक्ष रहे। सन 1916 में उन्होंने जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसमें आज़ादी के लिए संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रावधान था। उनका कहना था कि भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का दुष्परिणाम है, जिन्हें प्रशासनिक अधिकारी बिना किसी का पक्ष लिए न्यायपूर्ण कठोर कार्रवाई के द्वारा रोक सकते हैं। 16 वर्ष की अल्पायु में अनाथ होने के बावजूद तिलक ने अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना अधिकांश समय लोगों की सेवा में लगाने का फैसला किया। तिलक ने प्लेग की बीमारी के दौरान देशवासियों की जो सेवा की उसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसे ही पुणे में प्लेग के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने हिंदू प्लेग अस्पताल शुरू किया और कई दिनों तक इसके लिए धन जुटाने का काम करते रहे। जहां पुणे के अधिकांश नेता नगर छोड़कर भाग गए थे, तिलक वहीं रहे। अपनी उपस्थिति से उन्होंने लोगों में भरोसा जगाया। उन्होंने अपने दो साप्ताहिक समाचार पत्रों मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा के माध्यम से लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने का भी काम किया। इन पत्रों के जरिए ब्रिटिश शासन तथा उदार राष्ट्रवादियों की कटु आलोचना के लिए वे मशहूर हो गए थे। तिलक मौलिक विचारों के व्यक्ति थे जो आसानी से कुछ भी ठुकरा सकते थे। कांग्रेस के नरम दल के लिए तिलक के विचार ज्यादा ही उग्र थे। नरम दल छोटे सुधारों के लिए सरकार के पास प्रतिनिधि भेजने का पक्षधर था, जबकि तिलक का लक्ष्य स्वराज था, छोटे मोटे सुधार नहीं। उन्होंने कांग्रेस को अपने उग्र विचार स्वीकारने के लिए मनाने का प्रयास किया। इस मामले पर सन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल के साथ उनका संघर्ष भी हुआ। राष्ट्रवादी शक्तियों में फूट का लाभ उठाकर सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 6 साल के कारावास की सजा दी और बर्मा निर्वासित कर दिया। बर्मा के शहर मांडले की जेल में तिलक ने महान कृति भगवद गीता रहस्य का लेखन शुरू किया, जो भगवद गीता का मूल टीका है। 1 अगस्त 1920 को बंबई में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता और पंडित नेहरू ने भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी थी। साथियों, भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के तौर पर ऑल इंडिया रेडियो देश की जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजित कर लगातार उसकी सेवा कर रहा है। शुरू से ही ऑल इंडिया रेडियो अपने उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ करता आ रहा है। भाषाओं की संख्या के मामले में दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक ऑल इंडिया रेडियो है। देश भर में 413 स्टेशन हैं और इसकी पहुंच देश के 99.19% हिस्से में है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में होता है। आज का दिन रेडियो के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। वैसे तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के प्रयासों से हो चुकी थी, लेकिन औपचारिक और संगठित प्रसारण 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत ही शुरू हुआ। सन 1930 में ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और बाद में 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। सन 1957 में इसको आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी नाम दिया गया, जो आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसी साल आम जनता के मनोरंजन के लिए विविध भारती सेवा शुरू की गई। इस सेवा ने खासतौर पर हिंदी फिल्म संगीत को घर घर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। रेडियो का ये वो सुनहरा दौर था जब लोग अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए मुंतजर रहा करते थे। विविध भारती ने रेडियो को मनोरंजन का एक बड़ा माध्यम बना दिया था। रेडियो का महत्व सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं रहा। आज़ादी के संघर्ष में भी रेडियो ने अहम भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद भी रेडियो देश के विकास का साथी बना। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए आकाशवाणी ने करोड़ों लोगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाई। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी रेडियो ने अपनी उपयोगिता साबित की है। जब कई बार अन्य संचार माध्यम काम करना बंद कर देते हैं, तब रेडियो के जरिए ही लोगों तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। वर्तमान समय में आकाशवाणी आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है। FM चैनलों से लेकर डिजिटल प्रसारण तक रेडियो ने बदलते समय के साथ खुद को लगातार अपडेट किया है। आज आकाशवाणी देश की बड़ी आबादी तक पहुंच रखता है और कई भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करता है। आज आम जनता के पास सूचना और मनोरंजन को लेकर बहुत से विकल्प हैं, लेकिन सबसे भरोसेमंद माध्यम के रूप में रेडियो की भूमिका और उसका महत्व आज भी बरकरार है। तो श्रोताओं, आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की असीम शुभकामनाएं। श्रोताओं, हास्य अभिनेता महमूद का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। सन 1958 में रिलीज हुई फिल्म परवरिश से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। 1961 में आई फिल्म ससुराल उनके लिए बहुत अहम साबित हुई, जिससे उन्हें हास्य कलाकार के रूप में स्थापित होने में मदद मिली। इसके बाद उन्हें कॉमेडियन के साथ साथ प्रमुख भूमिका निभाने का मौका मिला 1965 में प्रदर्शित फिल्म जौहर महमूद इन गोवा से। महमूद की दो सबसे ज्यादा यादगार भूमिकाओं वाली फिल्में रहीं 1966 की प्यार किए जा और 1968 की पड़ोसन। अपने बहुरंगी किरदारों से दर्शकों को हंसाने वाले और गंभीर भूमिकाओं द्वारा रुलाने वाले महमूद अभिनय के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। अपने बहुमुखी अभिनय और कला के प्रति समर्पण ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाया। 4 बार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल करने वाले महमूद ने कई फिल्मों में गीत भी गाए। आशा भोसले के साथ उनका गाया हुआ फिल्म दो फूल का हास्य गीत मुत्तु कोड़ी हव्वाड़ी हवड़ा बहुत मशहूर हुआ था। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। इन फिल्मों में छोटे नवाब, भूत बंगला, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, दुश्मन दुनिया का और सबसे बड़ा रुपया आदि प्रमुख हैं। विकलांगों पर बनी फिल्म कुंवारा बाप में किया गया उनका अभिनय आज भी उनकी यादों को ताज़ा करता है। नए लोगों को मौका देना महमूद की फितरत का हिस्सा था। उन्होंने छोटे नवाब फिल्म में नए संगीतकार राहुल देव बर्मन को पहली बार मौका देकर फिल्म उद्योग को एक बेहतरीन तोहफा दिया। इसी तरह उन्होंने अमिताभ बच्चन की उस वक्त मदद की जब वे संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। अमिताभ बच्चन के करियर को सहारा देने के लिए महमूद ने बॉम्बे टू गोवा फिल्म बनाई थी। 300 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में अभिनय करने वाले महमूद को जिंदगी के आखिरी दिनों में स्वास्थ्य समस्याओं ने आ घेरा और इलाज के लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। 23 जुलाई सन 2004 को अमेरिका में ही उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अब जान लेते हैं आज के दिन हो चुकी प्रमुख घटनाओं के संबंध में। आज गुरुवार 23 जुलाई है, मौजूदा साल 2026 का 204वां दिन। दोस्तों, बांग्ला साहित्यकार तारा शंकर बंदोपाध्याय को सन 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद 1966 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास गणदेवता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1969 में उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया था। 23 जुलाई 1898 को बंगाल के वीरभूम जिले के लाभपुर कस्बे में जन्मे इन्हीं तारा शंकर बंदोपाध्याय की कहानी जलसा घर पर इसी नाम से सत्यजीत रे ने 1958 में फिल्म का निर्माण भी किया था। दोस्तों, मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की प्रमुख रही मारिया निर्मला जोशी का जन्म 23 जुलाई 1934 को रांची में हुआ था। नेपाली मूल की निर्मला ने 17 साल की उम्र में धर्म बदला और मिशनरीज से जुड़ गईं। पद्म विभूषण से सम्मानित निर्मला ने मदर टेरेसा के साथ कई देशों की यात्राएं की। पनामा, न्यूयॉर्क और काठमांडू में मिशनरीज सेंटर खोलने के लिए मदर टेरेसा ने उन्हीं को चुना था। महाराष्ट्र मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के संस्थापक निदेशक डॉ. मोहन अगाशे 23 जुलाई 1947 को महाराष्ट्र के भोर में जन्मे थे। उनके पढ़ाए छात्र भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में मनोचिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हैं। मनोचिकित्सा के साथ ही अभिनय में भी दिलचस्पी के कारण उन्हें मराठी, हिंदी, बंगाली, मलयाली और तमिल फिल्मों में अभिनय का मौका मिला। पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त आगोशे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के महानिदेशक भी रहे। दक्षिण भारतीय और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत का कर्नाटक संगीत के साथ कुशल संयोजन करने वाले प्रतिभाशाली भारतीय वायलिन वादक लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को संगीत के क्षेत्र में तकनीक और नए प्रयोगों के क्रांतिकारी परिवर्तनकर्ता के रूप में जाना जाता है। पद्मश्री, पद्मभूषण और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित एल सुब्रमण्यम 23 जुलाई 1947 को मद्रास में जन्मे थे। उन्होंने बर्नार्डो बेर्तोलुकी के फिल्मों लिटिल बुद्धा और कॉटन मैरी ऑफ मर्चेंट आवरी में भी एकल वायलिन वादन किया था। पार्श्व गायक, संगीतकार, अभिनेता और फिल्म निर्माता हिमेश रेशमिया ने 1998 में बतौर संगीतकार फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से, 2005 में गायक के रूप में फिल्म आशिक बनाया आपने से और 2007 में फिल्म आपका सुरू से अभिनय शुरू किया था। 2006 में लंदन के वेम्बले स्टेडियम में प्रस्तुति देने वाले हिमेश पहले भारतीय कलाकार थे। 23 जुलाई 1973 को जन्मे मुंबई में जन्मे हिमेश को तेरे नाम, आशिक बनाया आपने और आपका सुरू जैसी फिल्मों ने खूब लोकप्रियता दिलाई। दोस्तों, ये थी इतिहास के पन्नों में दर्ज आज की तिथि की प्रमुख घटनाएं। अब एक दृष्टि आज की सुर्खियों पर डाल लेते हैं। गतिरोध तोड़ने में जुटी सरकार, इस सुर्खी के साथ दैनिक जागरण नीट ने नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष और युवाओं के प्रदर्शन का सामना कर रही केंद्र सरकार द्वारा काकरोच जनता पार्टी की मांगों पर बातचीत शुरू करने और संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा शुरू करने की पेशकश की खबर दी है। दैनिक अमर उजाला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा को खबर बनाया है जिसमें जेनेरिक दवाओं पर अगस्त 2028 से 100 से 200% तक क्रमिक रूप से टैरिफ लगाने की बात कही गई है। अखबार लिखता है कि इस घोषणा का भारत पर व्यापक असर पड़ सकता है क्योंकि भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, वाहन खरीद और घूमने फिरने जैसी जरूरतों को लोग आजकल कर्ज लेकर पूरा कर रहे हैं। कर्ज लेने के इस रुझान में बीते 7 वर्षों में हिस्सेदारी तेजी से बढ़कर 49.70% तक जा पहुंची है। इस खबर पर दैनिक हिंदुस्तान ने सुर्खी लगाई है, बेहतर जीवन शैली के लिए धड़ल्ले से कर्ज ले रहे लोग। और अब आखिर में ये सुंदर सा गीत आपके लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में और उसके बाद उर्दू में।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
5: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
6: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
4: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
8: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: What is the most important?
3: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
2: With deep feelings, emotional intelligence.
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
4: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
5: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्बी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
6: पीओजेके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने

0: कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जनतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss neat paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Center approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government, but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. We have a report.
3: Prime Minister Modi made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Viksit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Highlighting the rapidly evolving governance landscape, Mr. Modi stressed the need to modernize governance processes in line with changing times. Calling for greater convergence among ministries, he said the vision of Viksit Bharat should become a Jan Andolan with the country's youth forming the foundation of this national mission. Addressing the issue of drug abuse among young people, Prime Minister stressed the need for an institutional mechanism that promotes coordination across departments and integrates youth-centric initiatives to tackle the challenge more effectively. On sports, Mr. Modi advocated an integrated development strategy to position India as a global sporting destination. Prime Minister also highlighted the transformative potential of the PM Kusum scheme in strengthening the agriculture sector through wider adoption by farmers. He further emphasized the need for a global mapping of skill requirements to align India's workforce with emerging international opportunities and future employment demands. With Bhanu and Suparna, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that government is ready to discuss the neat paper leak issue in Parliament and formulate an effective policy to ensure a permanent solution to the issue. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said, instead of indulging in blame games and constantly shifting the goalposts, the opposition should participate in a meaningful parliamentary

0: destination because it combines spectacular scenery, ancient history, and unique wildlife in one place.
1: Earlier, President of North Macedonia, Gordana Silvanovska Davkova, said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani News in Skopje, Ms. Davkova said she was earlier impressed by India's long history and also spirituality.
2: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
1: National Broadcasting Day is being observed today. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on air from the Bombay station under the Indian Broadcasting Company. On the 8th of June 1936, the Indian State Broadcasting Service became All India Radio. The day commemorates nearly a century of broadcasting's contribution to informing, educating, entertaining and uniting the nation. Details on this from our correspondent.
3: This day highlights the pivotal role broadcasting has played in India's development, educational outreach and cultural preservation. From the freedom movement to nation building, radio has played a vital role in disseminating information, promoting literacy, creating health awareness and sharing agricultural knowledge, particularly in rural India. In 1956, the name Akashvani was adopted for the national broadcaster. The Vivid Bharati service was launched in 1957 with popular film music as its main component. For generations, Akashvani has been serving to inform, educate and entertain the masses, truly living up to its motto, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. National Broadcasting Day celebrates not just technological progress, but also radio's enduring power to inform, educate, entertain and unite a diverse nation. With Priya Mondal, this is Dilnashi Arzu, Akashvani News, Delhi.
1: A voluntary shutdown and wheel jam strike continue in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. The Joint Awami Action Committee, JAAC, has urged people of the POJK to participate in the protests today with full strength to demand implementation of their demands and pray for those who were killed by Pakistani authorities during the movement. In a social media post, JAAC has termed today as a day of utmost importance. The JAAC leader slammed the Pakistani authorities, describing the rulers as killers of the innocent people who have been murdered in retaliation for demanding their rights. On to sports. The 23rd Commonwealth Games CWG will begin today in Glasgow, Scotland. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain are set to represent India at the CWG 2026. Indian contingent comprises 125 members, including para-athletes. India won 61 medals at the last Commonwealth Games. However, this year's Commonwealth Games presents a different challenge with fewer medal events and a significantly smaller sporting program. In China Open Badminton, India's PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Shangzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated number 11 Alvi Farhan of Indonesia to reach the round of 16. In another round of 32 match, Lakshya Sen defeated Japanese player Yushi Tanaka 22-20, 15-21, 21-14. And now for a look at today's newspapers. It's over to Subhadra Ramachandran.
4: Thank you, Sarabjit. On the margins of ASEAN engagements, Jaishankar conveys to Lavrov India's concern over safety of Indian seafarers, notes the statesman. The Financial Express informs, cross-holding cap set to ease. Airline doors may open for Adani GMR. 100% tariff on generic drug imports into US from 2028. Trump prescribes new pill. India's side effects unlikely, states the Economic Times. And finally, the Financial Express, on its editorial page under the caption, Oil on the Boil Again, writes, Brent spot prices have gone well past $90 a barrel with the war clouds over West Asia. The prospect for costlier oil is bad news for countries like India that imports 88% of its energy requirements, which would widen its trade deficit and push up inflation. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss NEET paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
5: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ जमीर रजवी. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के इकदामात तरतीब दिए जाने चाहिए. मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी. भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है. मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अल-अक़वामी टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा. अब खबरें तफसील से. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद हर इस्लाह का बुनियादी मकसद होना चाहिए और हुकूमत के इकदामात अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखकर तैयार किए जाने चाहिए. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लाहात को न सिर्फ हुकूमत के कामकाज को बेहतर बनाना चाहिए बल्कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफर को भी तेज करना चाहिए. पेश है एक रिपोर्ट.
6: वजीर आजम मोदी ने यह बात सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए कही जिसमें देही तरक्की ज़राअत समाजी बहबूद और दिगर मुतल्लिका शोबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया. ये मीटिंग वजीर आजम की रिहायशगाह पर मुनाकिद हुई जिसमें हुक्मरानी को मजीद मुअस्सर और मजबूत बनाने मुख्तलिफ वजारतों के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाने अवामी फलाह के लिए इस्लाहात पर तेजी से अमल दरामद करने पर जोर दिया गया. तेजी से बदलते हुए हुक्मरानी के मंजरनामे को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने बदलते हुए वक्त के मुताबिक हुकूमत के निजाम को जदीद बनाने की जरूरत पर जोर दिया. वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत का विजन एक जन आंदोलन बनना चाहिए जिसमें मुल्क के नौजवान इस कौमी मिशन की बुनियाद हों. उन्होंने नौजवानों में मुनशियात के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर ताउन और नौजवानों पर मरकूज प्रोजेक्टों को मरबूत करने के लिए एक इदारा जाती निज़ाम कायम करने की ज़रूरत है ताकि इस चैलेंज से ज़्यादा मौसर अंदाज में निपटा जा सके. इसके अलावा खेलों के शोबे में भी वज़ीर आज़म मोदी ने जामे और मरबूत तरक्की पर जोर दिया. वज़ीर आज़म ने कहा कि एक जामे हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए ताकि भारत को खेलों के आलमी मरकज़ के तौर पर कायम किया जा सके. उन्होंने पीएम कुसुम स्कीम की ज़रई शोबे की कायापलट की सलाहियत को भी उजागर किया और कहा कि अगर ज्यादा से ज्यादा किसान इस स्कीम को अपनाएं तो इससे ज़राअत को नुमाया फायदा पहुंच सकता है. वजीर आजम ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया भर में दरकार महारतों का जामे जायजा लिया जाए ताकि भारत की अपराधी कुव्वत को आलमी सतह पर उभरने वाले रोजगार के मौके और मुस्तकबिल की मुलाजमतों की जरूरियात के मुताबिक तैयार किया जा सके. नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्बार.
5: सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि तलबा की जानिब से उठाए गए नीट पेपर लीक मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए और इस मामले से सियासी फायदा उठाना मुनासिब नहीं है. नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ये जांच का मौजू है جس پر تفصیلی بات چیت کی ضرورت ہے۔ جناب نڈا نے کہا کہ پیپر لیک ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر سنجیدگی سے غور و خوض ضروری ہے۔
7: گہن چرچا کے مادھیم سے اس کی باریکیوں میں ہم جائیں، واٹ آر دا فیکٹرز وچ آر لیڈنگ ٹو پیپر لیک، ہو آر دا پیپل انوالوڈ اینڈ ہاؤ دی سینٹرل گورنمنٹ ہیز ریسپونڈیڈ۔ جب ہمارے دھیان میں کوئی پیپر لیک آیا ہے تو ہم نے کس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا ہے؟
5: مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے۔ انہوں نے حکومت کے اس موقف کو دہرایا کہ پارلیمنٹ میں نیٹ کے معاملے پر بحث کے لیے وہ تیار ہے اور اپوزیشن بحث کے دورانیے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ جناب نڈا نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ ہی وہ سب سے مناسب موضوع فورم ہے جہاں اس معاملے پر تفصیلی اور جامع بحث کی جا سکتی ہے۔ جناب نڈا نے مزید کہا کہ اپوزیشن پیپر لیک جیسے سنگین معاملے پر بامانی پارلیمانی بات چیت کی بجائے الزام تراشی کا سہارا لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپر لیک قومی تشویش کا معاملہ ہے جو کسی ایک حکومت یا سیاسی پارٹی تک محدود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپوزیشن اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے میں لگی ہوئی ہے۔
7: میں پوچھنا چاہوں گا وپکش کے نیتا راہل گاندھی سے کہ آپ سلیکٹیو کیوں ہیں؟ آپ نے یو پی اے کی اور یو پی اے کے سپورٹڈ سرکاروں کو، ان کی گورنمنٹس کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں چرچا؟ کیوں آپ نے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا؟ یہ سپشٹ بتاتا ہے کہ آپ کا ادیشیہ چھاتروں کا ہت نہیں ہے۔ آپ کا ادیشیہ ایجوکیشن کی کوالٹی میں بڑھوتری ہو، اسٹوڈینٹس کو جسٹس ملے، اس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے۔
5: جناب نڈا نے کانگریس اور اپوزیشن کی حکمرانی والی ریاستوں میں مختلف امتحانات کے پیپر لیک کے معاملے بھی اٹھائے۔ انہوں نے کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی پر جانبداری برتنے کا الزام لگاتے ہوئے سوال پوچھا کہ وہ ان واقعات پر بات کیوں نہیں کرتے۔ جناب نڈا نے جناب گاندھی پر الزام لگایا کہ وہ اس معاملے سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ افسوسناک ہے۔ جناب نڈا نے کہا کہ جناب گاندھی نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران دی گئی پریزنٹیشن میں 150 امتحانی پرچوں کے لیک ہونے سے متعلق بات کی۔ جناب نڈا نے مزید کہا کہ یہ جانچ کا موضوع ہے اور حکومت بلا شبہ اس کی جانچ کرے گی اور ملک اور عوام کے سامنے سچائی کو پیش کرے گی۔ حکومت نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر پارلیمنٹ میں بامانی مباحثے کے لیے تیاری کی بات دہرائی ہے۔ لوک سبھا میں کل اس بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ حکومت ملک کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے پارلیمانی ضوابط کے تحت اس معاملے کے سبھی پہلوؤں پر بامانی مباحثے کے لیے تیار ہے۔ جناب ریجیجو کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب نیٹ پیپر لیک معاملے، طلبہ کے مظاہروں سمیت مختلف موضوعات پر پارلیمنٹ کی کارروائی اپوزیشن کے ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کل لگاتار تیسرے دن بھی رکھنا اندازی کا شکار رہی۔ اس دوران راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کے بغیر بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سماجی کارکن سونم وانگچوک نے کہا ہے کہ اگر حکومت یہ یقین دہانی کرائے کہ نیٹ پرچہ لیک کے خلاف احتجاج کرنے والے نوجوانوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی تو وہ اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دیں گے۔ مرکزی وزرا جے پی نڈا اور جیتندر سنگھ کو لکھے گئے خط میں جناب وانگچوک نے دونوں وزیروں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے منگل کی رات اسپتال میں ان کی عیادت کی۔ دلی ہائی کورٹ نے کل مرکز اور دلی پولیس سے ان درخواستوں پر جواب طلب کیا ہے جن میں پارلیمنٹ کی جانب مارچ کرنے والے مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کا الزام لگایا گیا تھا۔ عدالت نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ پولیس کارروائی سے متعلق تمام ریکارڈ محفوظ رکھیں جن میں سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی شامل ہیں۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو اپنا جواب داخل کرنے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ معاملے کی اگلی سماعت 11 ستمبر کو ہوگی۔ دلی میٹرو ریل کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے اطلاع دی ہے کہ قومی راجدھانی میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اگلے حکم نامے تک صبح 7:30 بجے سے 16 میٹرو اسٹیشن بند رہیں گے۔ ان اسٹیشنوں میں لوک کلیان مارگ، راجیو چوک، پٹیل چوک، رام کرشن آشرم مارگ، بارہ کھمبا روڈ، سپریم کورٹ، سیوا تیرتھ، جنپت، منڈی ہاؤس، سینٹرل سیکرٹیریٹ، آئی ٹی او، دلی گیٹ، اندرپرست، خان مارکیٹ، جور باغ اور شیواجی اسٹیڈیم شامل ہیں۔ ڈی ایم آر سی نے کہا ہے کہ راجیو چوک، منڈی ہاؤس اور سینٹرل سیکرٹیریٹ اسٹیشنوں پر میٹرو بدلنے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ایٹمی توانائی کے محکمے کے مملکتی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت سال 2033 تک سودیشی بناوٹ کے کم از کم 5 چھوٹے ماڈیولر نیوکلیائی ری ایکٹرز کو فعال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
8: لوک سبھا میں اپنے تحریری جواب میں ڈاکٹر سنگھ نے بتایا کہ پارلیمنٹ نے شانتی قانون 2025 کو نافذ کرتے ہوئے प्राइवेट शराकत दारों के लिए न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे के दरवाजे खोल दिए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 220 मेगावाट का एक भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, 55 मेगावाट का एक रिएक्टर और एक हाई टेंपरेचर गैस कूल्ड रिएक्टर डेवलप कर रहा है जो हाइड्रोजन पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने न्यूक्लियाई तवानाई मिशन के तहत ऐलान करदा साल 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियाई बिजली सलाहियत हासिल करने के मकसद से रोड मैप वजह किया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि रोड मैप के मुताबिक 8.78 गीगावाट की मौजूदा न्यूक्लियाई बिजली की सलाहियत के साल 2031-32 तक 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। ये हौसलियाबी उन प्रोजेक्टों के जरिए हासिल की जा सकती है जो फिलहाल नफाज के मुख्तलिफ मरहलों में हैं। नई दिल्ली से कमोदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
5: मरकज ने तमिलनाडु में मजमुई तौर पर 1012 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से दो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मिक्स्ड ईएमसी को मंजूरी दी है। इस कदम का मकसद रियासत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निजाम को मुस्तहकम करना और इस सेक्टर में भारत को खुद इन्हेसारी की सिमत में आगे बढ़ाना है। ये ऐलान कल लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने दी। दोनों मिक्स को मनालूर और पिलापक्कम में फरोग दिया जाएगा। मनालूर ईएमसी 474.3 एकड़ रकबे पर फैला होगा और इस प्रोजेक्ट पर 587.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि पिलापक्कम ईएमसी की तामीर 379.3 एकड़ में 424.55 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से दो रोजा रोमानिया दौरे पर रहेंगी। इस दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू रोमानिया के सदर निको सरदान, उबूरी वजीर आजम इली बोलोयान, सीनेट के सदर मिर्सिया अब्दुरिडियान और चेंबर ऑफ डिप्यूटीज के सदर सोरिन ग्रिंडेन्यू से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया का रोमानिया भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के अराकीन से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। सदर जमहूरिया फिलवक्त शुमाली मकदूनिया के तारीखी दौरे पर हैं। ये मकाम न सिर्फ अपनी खुदरती खूबसूरती बल्कि गोनागों तारीख और आलमी अहमियत की हामिल लेक ऑर्हिड के लिए जाना जाता है। इससे पहले शुमाली मकदूनिया की सदर गोर्डाना दावकोवा ने कहा कि यह फख्र की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत की सदर एक खातून है। स्कोपिये में आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मोहतरमा दावकोवा ने कहा कि वो भारत की तवील तारीख और रूहानियत से काफी मुतासिर हैं। आज नशरियात का कौमी दिन मनाया जा रहा है। साल 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो नशरियात का आगाज हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम तब्दील करके इसे ऑल इंडिया रेडियो AIR रख दिया गया। ये दिन भारत की तरक्की, तालीम के फरोग और सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ में नशरियात के अहम किरदार को उजागर करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
6: ये दिन भारत की तरक्की, तालीमी आगाही और सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ में नशरियात के अहम रोल को उजागर करता है। आज़ादी की तहरीक से लेकर मुल्क की तामीर तक रेडियो ने मालूमात की तरसील, खानदगी के फरोग, सेहत से मुतालिक आगाही पैदा करने और खासतौर पर देही इलाकों में ज़रिए मालूमात पहुँचाने में नहायत अहम किरदार अदा किया। कई नस्लों से आकाशवाणी अपने नस्लैन बहुजन हिताय बहुजन सुखाए के ऐन मुताबिक आवाम की को मालूमात, तालीम और तफरी फराहम करता आ रहा है। नई दिल्ली से दिन नशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
5: मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
8: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि सरहदी इलाकों में अमनो इस्तेहकाम भारत और चीन के दरमियान मामूल के ताल्लुकात की पहली शर्त। अखबार इनकलाब की सुर्खी है, खातून अरकान पार्लियामेंट पर काबिल एतराज तबसरे की पादाश में रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल। मुल्क में तैयार आबदोज शिकन जंगी जहाज INS मालवन बहरिया के बेड़े में शामिल, इस खबर को भी अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार की एक और सुर्खी है, अपोजिशन की हंगामा राय की वजह से लोकसभा में मुसलसल तीसरे दिन वक्त पर सवाल नहीं हो सका। अखबार इनकलाब लिखता है, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दाना हमले में हेड कांस्टेबल की मौत। अखबारात की बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान, ईरान के जौहरी तंसीबात के करीब अमरीका का हमला।
5: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और आवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के इकदाम तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1,012 करोड़ रुपए मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अलावामी T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
9: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स।
10: हुरिया, हुरिया, हुरिया, हुरिया।

कुंवारा बाप फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार महमूद और साथियों की आवाजों में। बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के और इस गीत की धुन तैयार की थी राजेश रोशन ने।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

रवि के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे दो कलियां फिल्म का गीत। आवाज थी मन्ना डे की और गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने।

बॉबी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, शैलेंद्र और साथियों की आवाजों में। गीतकार थे विट्ठल भाई पटेल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

मुकेश और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे जिंदगी और तूफान फिल्म का गीत। शब्द रचना थी राम अवतार त्यागी की और धुन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की थी। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं अल हिलाल फिल्म का गीत। आवाजें हैं इस्माइल आजाद कव्वाल और साथियों की। गीतकार हैं शेवन रिजवी।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 9:15 हुए हैं। कुछ ही पलों में कार्यक्रम जिले की हलचल हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए शामली और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज कुमार का।
3: शामली जिले की धरती को कीटनाशकों के जहर से बचाने के लिए कृषि विभाग ने समेकित कीट प्रबंधन IPM के तहत सोलर लाइट ट्रैप तकनीक की पहल की है। यूरिया और DAP की बढ़ती खपत के बीच यह आधुनिक तकनीक पर्यावरण की रक्षा करेगी और किसानों को फसल के होने वाले 20-40% आर्थिक नुकसान से बचाएगी। पादप सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार के अनुसार फसल से 3-4 फीट ऊपर लगने वाला यह लाइट ट्रैप सूर्यास्त के बाद प्रकाशों से कीटों को आकर्षित कर नष्ट कर देगा। इससे अंडों की श्रृंखला टूट जाएगी जिससे गन्ना टॉप बोरर सफेद गिडार और धान का तना छेदक जैसे कीट पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि पहले चरण में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सभी ब्लॉकों के लिए 250 सोलर लाइट ट्रैप आवंटित किए गए हैं। 635 की कीमत वाले इस उपकरण पर 431 का DBT अनुदान मिलेगा जिससे किसानों को यह मात्र 204 में उपलब्ध होगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। शामली जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सहकारिता गन्ना और इफको की सभी संस्थाओं पर CCTV कैमरे लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। किसानों को जोत के अनुसार संतुलित खाद की पर्याप्त उपलब्धता, उर्वरकों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने, अभद्रता और बेवजह हंगामे पर अंकुश को यह कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी आलोक यादव के निर्देश पर जिले के सभी प्रमुख उर्वरक वितरण केंद्रों को सर्विलांस के दायरे में लाया जा रहा है। इसके तहत सहकारिता विभाग की 43 संस्थाओं, 36 सहकारी समितियों व उनके 7 उपकेंद्रों, गन्ना विभाग के 18 केंद्रों और इफको के 4 केंद्रों पर CCTV स्थापित किए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए खाद के स्टॉक लोडिंग और वितरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के साथ ही AR कोऑपरेटिव और गन्ना अधिकारियों को तहसीलों क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग करने की हिदायत दी है। सभी संबंधित विभाग इन कैमरों को अपने कार्यालयों से लिंक कर सीधे कमांड और मॉनिटरिंग करेंगे। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि खरीफ सीजन में किसानों को जोत के आधार पर पर्याप्त व संतुलित खाद मिलेगी। कालाबाजारी, ओवर रेटिंग और हंगामा करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए समितियों और बिक्री केंद्रों को CCTV से जोड़ा जा रहा है। स्टॉक की जानकारी भी SMS से मिलेगी। लापरवाही मिलने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शामली में जिला अस्पताल में जल्द ही थायराइड, विटामिन डी और अन्य जरूरी हार्मोन्स की जांच शुरू होने जा रही है। इसके लिए अस्पताल में अत्याधुनिक ऑटोमेटिक इम्यूनोइस एनालाइजर, हार्मोन्स एनालाइजर मशीन के संचालन का बजट जारी हो चुका है। CMS डॉक्टर मनोज कुमार अखोरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार प्रत्येक CHC पर यह सुविधा उपलब्ध करानी है। योजना के तहत POCT के कर्मचारी सभी CHC से मरीजों के सैंपल एकत्र कर जिला अस्पताल पहुंचाएंगे, जहां जांच के बाद रिपोर्ट सीधे मरीजों के व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। एंड्रॉइड फोन न होने पर मरीजों को संबंधित CHC से ही हार्ड कॉपी मिलेगी। इस आधुनिक मशीन से थायराइड प्रोफाइल, इंसुलिन, विटामिन B12, प्रजनन व गर्भावस्था संबंधी हार्मोन्स और कई संक्रामक रोगों की सटीक व तेज जांच संभव होगी। रिजेंट किट और स्टाफ की उपलब्धता के साथ 30 जुलाई तक मशीन के सुचारू संचालन की पूरी संभावना है। शामली जिले ने गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पेराई सत्र 2025-26 के क्रॉप कटिंग परिणामों के आधार पर शामली 969.12 क्विंटल

0: ने 1 जनवरी से 30 जून तक लक्ष्य से अधिक 1996 मरीजों की पहचान कर 101% की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अथर जमील ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से पोषण योजना के तहत मरीजों को 4 अवधि तक प्रतिमाह 1,000 की आर्थिक सहायता सीधे आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके तहत 100 मरीजों की सूची तैयार कर निक्षय पोर्टल पर अपलोड की जा रही है, जिन्हें पहली किस्त के रूप में 3,000 दिए जाएंगे। 6 माह का उपचार पूरा होने पर दूसरी किस्त मिलेगी। विभाग ने जिन मरीजों की बैंक केवाईसी अधूरी है उन्हें इसे जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 2 सप्ताह से अधिक खांसी बुखार या वजन घटने जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत मुफ्त जांच कराने की अपील की है। शामली जिला प्रशासन ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना की अनूठी शुरुआत की है। इसके तहत प्रथम चरण में विभिन्न समूह की 25 महिलाओं का चयन किया गया है, जिन्हें ई रिक्शा चलाने के लिए 20 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। करीब 1.5 लाख रुपए की लागत वाले इन गुलाबी रंग के ई रिक्शा पर समूह की पूरी जानकारी अंकित होगी। प्रशासन ने 25 ई रिक्शा का ऑर्डर दे दिया है और जल्द ही ये सड़कों पर दिखाई देंगे। हाल ही में कलेक्ट्रेट, जिला अस्पताल, सीएमओ कार्यालय, विकास भवन और पुलिस ऑफिस जैसे प्रमुख सरकारी दफ्तर पूर्वी यमुना नहर पर स्थानांतरित हुए है, जिससे वहाँ लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया है। यात्रियों की सहूलियत और महिलाओं के रोजगार को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में इन्हें इसी रूट पर चलाया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक यादव ने बताया कि यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो आगामी चरणों में पिंक ई रिक्शा को पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चला जाएगा।
1: शामली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
2: राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपराणा यादव ने अंबेडकर नगर का दौरा किया। अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान अपराणा यादव ने मुख्यमंत्री शैक्षिक कैशलेस शिक्षा योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना से शिक्षकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच मिलेगा। उपाध्यक्ष अपराणा यादव ने स्कूल चलो अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपाध्यक्ष ने वन स्टाफ सेंटर एवं पोषण पुनर्वास केंद्र का भी निरीक्षण किया। पोषण पुनर्वास केंद्र में 10 बच्चे भर्ती पाए गए। उपाध्यक्ष ने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सुविधाओं की जानकारी भी ली। उपाध्यक्ष ने कहा कि एनआरसी से वापस लौटने के बाद भी बच्चों की नियमित देखभाल की जाए ताकि कुपोषण की पुनरावृत्ति न हो। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शैक्षिक कैशलेस शिक्षा योजना का शुभारंभ करने से शिक्षकों में काफी खुशी है। गंभीर बीमारियों का इलाज कराना शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकार ने अब इसे आसान कर दिया है। इस योजना से शिक्षकों को बहुत फायदा होगा, शिक्षकों का मनोबल बढ़ा है। अंबेडकर नगर में विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से यूनिफार्म, जूता, मोजा, स्वेटर बैग एवं स्टेशनरी के लिए धनराशि भेज दी गई है। प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक के खाते में 1200 रुपए भेजा गया है। अंबेडकर नगर के प्रभारी और प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जिले के अलग अलग ग्राम पंचायतों में आयोजित जन चौपालों में शामिल हो रहे हैं। श्री राजभर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान एवं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना है। अंबेडकर नगर में बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायतों में राहत चौपाल के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तहसील टांडा के बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायतों में 7 जुलाई से राहत चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। चौपाल में आपदा से बचाव एवं राहत उपाय की जानकारी दी जा रही है। यह कार्यक्रम 31 जुलाई तक चलेगा। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ईशा प्रिया के निर्देश पर फलदार पौधों का भंडारा आयोजित किया गया। कलेक्ट्रेट में आयोजित इस भंडारे में फरियादियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को फलदार पौधे वितरित किए गए। जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने फागिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, स्वच्छता, जन जागरूकता एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का निर्देश दिया। अंबेडकर नगर में समरस वन स्थापना के तहत लगभग 10 लाख पौधों का रोपण किया गया। कटेहरी विकासखंड के ग्राम पतौना में स्थित अंबेडकर पार्क में समरस वन की स्थापना का मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया। अंबेडकर नगर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लोहिया भवन सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में 184 सड़क सुरक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की समीक्षा बैठक अंबेडकर नगर में संपन्न हुई। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आयोग के अध्यक्ष व जिलाधिकारी को आयोग के गठन के उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि जनपद में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या एवं सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पिछड़ेपन, प्रकृति कारण आदि की समीक्षा की गई। अंबेडकर नगर में टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास एवं बुनकरों की समस्या के निदान के संबंध में भारत सरकार के टेक्सटाइल निदेशक अश्विनी पांडे और डीएम ईशा प्रिया ने बुनकरों और उद्यमियों के साथ बैठक की। टेक्सटाइल निदेशक ने इकाइयों का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने बुनकरों की समस्याओं से टेक्सटाइल्स निदेशक को अवगत कराया। अम्बेडकर नगर में इस समय खेती किसानी का काम तेजी से चल रहा है। धान की रोपाई का काम अपने आखिरी चरण में है। मानसून के आने और बरसात होने से किसानों के चेहरे पर खुशी है। ज्यादातर किसान इस समय खेतों में खाद की बुआई कर रहे हैं। जिले में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अम्बेडकर नगर में

0: विवादों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए लोक महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टांडा तहसील क्षेत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा और SDM पुष्पेंद्र पटेल की मौजूदगी में लोक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 3 विवादों का निपटारा किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मृदुला निगम और दिशा सक्सेना की आवाजों में रोहिलखंडी लोकगीत।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

ये रोहिलखंडी लोकगीत आप सुन रहे थे मृदुला निगम के स्वर में। आइए अब आपको सुनवाते हैं दिशा सक्सेना की आवाज में ये रोहिलखंडी लोकगीत।

सखी साजन गए रे उस पार, दिशा सक्सेना के स्वर में ये रुहेलखंडी लोकगीत आप सुन रहे थे। इन्हीं के स्वर में सुनते हैं एक और रुहेलखंडी लोकगीत।

दिशा सक्सेना के स्वर में ये रोहिलखंडी लोकगीत आप सुन रहे थे। इन्हीं के स्वर में आइए सुनते हैं एक और रोहिलखंडी लोकगीत।

दिशा सक्सेना के स्वर में ये रोहिलखंडी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं मृदुला निगम के स्वर में ये रोहिलखंडी लोकगीत।

दोपहर 1:15 पर महिला जगत के स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज क्रम में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पूजा सिंह से प्रियंका त्यागी की बातचीत का विषय होगा महिलाओं के लिए फिजियोथेरेपी। लोकधारा में आप सुनेंगे दिन में 1:45 पर दीपा चौहान के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है आपके अनुरोध पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ।

0: छोटे नवाब फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार थे शैलेंद्र और धुन राहुल देव बर्मन की थी। पसंद थी आप सब श्रोताओं की। रहमानिया मोहल्ला महसौल सीतामढ़ी बिहार से तलत जहानाज, फरज जहानाज, रिफत जहानाज, रूही नाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और अमन अकरम।
1: नमस्कार श्रोताओं, और मैं

0: आपके साथ कार्यक्रम गीत तुम्हारे में राजवीर सिंह, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे श्रोताओं ने की थी शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल ने, जिला नांदेड़, येताला, महाराष्ट्र से।
1: कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से आप थे अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य।
0: ये फरमाइश हमारे पास आई थी सनावद से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना की ओर से।
1: ये पत्र आया था बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी का, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी का, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, छठिया बोखरा डुमराव से सुनील कुमार वर्मा और मुस्तफाबाद दिल्ली से अनुरोध करते थे लाल बाबू दीवाना।
0: ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोरधनधरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का।
1: इस गीत को कंडला बंदर कच्छ से पसंद करते थे जगदीश जौहरी, पूजा जौहरी और जैनिश गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और अहमदाबाद से कंचन सोनार के साथ कुसुम।
0: जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून।

0: शंकर जयकिशन की संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे जिंदगी फिल्म का गीत। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की और शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी। पसंद करते थे इस गीत को आप सब श्रोता। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्य और भाई सुच्चा पाठक।
1: और ये फरमाइश हमारे पास आई थी छत्तीसगढ़ महासमुंद से कलीम आसमा डोम, सलीम आसमा डोम, याकूब आसमा डोम, यूसुफ आसमा डोम और चांदनी चौक बिहार से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्लू वली जाटव, सोनम वली जाटव। और ये अगली फरमाइश
0: दौलतबाग मुरादाबाद से है। अनुरोध करते हैं जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी।
1: जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से फरमाइश की थी मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नन्नी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप ने।
0: कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से आप थे ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबेहा नेवादा गाजीपुर से थे प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और शेरपुर कलां गाजीपुर से अनुरोध करते थे अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय।
1: गांव और पोस्ट राहुल नंगली, एवरग्रीन क्लब एआईआर नजीबाबाद बिजनौर से फरमाइश की है मदनगिरी, आसिफ चौधरी, प्रकाश चंद, राशिद अंसारी, मुकेश कश्यप, अमित धीमान और आचार्य सत्यवीर सिंह ने।
0: मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से अनुरोध करने वाले श्रोता थे विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, रामापुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी और आरएसपुरी।
1: कुमारेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्याम और परिवार वाले।

हाथी मेरे साथी, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, आनंद बख्शी का ये गीत था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, अगले गीत से पहले ये संदेश।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, इस संदेश से पहले जो गीत आप सुन रहे थे वो हमने लिया था हाथी मेरे साथी फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। उस गीत को पसंद करते थे आप सब श्रोता मेन बाजार नेट और से एम जुल्फकार राही, एम मुमताज राही, एम जुनैद राही, अलसबा गुल, गुल फिशारानी, मोहम्मद आयन फरीदी और मोहम्मद कैफ फरीदी।
2: और ये फरमाइश हमारे पास आई थी दत्तरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा की ओर से।
1: कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्यों में मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता ने इस गीत के लिए फरमाइश भेजी थी।
2: और ताहिर भाई, ये फरमाइश हमारे पास आई थी गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, मनोज भ्याण ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था।
1: करनाल से इस गीत को पसंद करते थे सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन और सुविता जैन और सुनीता शर्मा।
2: दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने भी इसी गीत की फरमाइश हमारे पास कर भेजी थी।
1: मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से अनुरोध किया था बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह।
2: संगीता टॉकी

0: चिराग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और धुन थी मदन मोहन की। पसंद आप सब श्रोताओं की थी।
1: मोहल्ला नादेहिंद नजीब आबाद से गीता रानी वर्मा, अनिता वर्मा, मेघा वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, वीरेंद्र वर्मा और अमित वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा था।
0: परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी।
1: ग्राम नंगलाउबन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से फरमाइश की थी ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी, शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत और पूनम ने।
0: निकट पत्थर वाली मस्जिद कस्बा जलालाबाद से अब्दुल खालिक सलमानी, कुलसूम, महनाज, मेहताब, नेहा, सादिया, आफिया, शहनाज, अरहान, आलिया और आयशा ने भी इसी गीत को पसंद किया था।
1: और ये फरमाइश हमारे पास आई थी रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नाजमा बेगम नाज और सरिता गौतम ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था।
0: ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड से आप थे जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनो, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका और रोमिका यादव।
1: ग्राम नजीमपुर तहसील नजीबाबाद से फरमाइश की थी योगेश कुमार और उमेश रानी ने।
0: ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से अनुरोध करते थे राशिद अंसारी, परवीन जहां अंसारी, निषाद आयशा और मोहम्मद अफान। जसपुर उत्तराखंड से आप थे रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर।
1: नाज पैलेस अजमेर शरीफ से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी।
0: अफगानान शेरकोट जिला बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, नाजिमा भी, अलमीर और जन्नत ने भी इसी गीत के लिए फरमाइश की थी।
1: सब्जी मंडी बुलढाणा से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन।
2: ख्यालों में

0: जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

0: आप सुन रहे थे गुमनाम फिल्म का गीत महमूद मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार थे शैलेंद्र और धुन शंकर जयकिशन की थी। पसंद थी आप सब श्रोताओं की। मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान और उनके परिवार के सदस्य।
1: मारहरा दरवाज़ा एटा से फरमाइश की थी नबी हसन अब्बासी, सोहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रसीद वारसी ने। और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान और सबीहा अंजुमन खान ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था।
0: बोड़सरा नैला से आप थे प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू।
1: नलगोंडा तेलंगाना से फरमाइश की थी मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस और मुनीरू निसा ने।
0: ये पत्र था आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा का।
1: और रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी।
0: यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से आप थे दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार।
1: पुराना बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर से फरमाइश की थी एम ताहिर और एम उजैफ ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था एयरपोर्ट रोड वंदा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे ने।
0: दूलापुर जिला मुरादाबाद से फरमाइश की थी मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य और सोनी ने। अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम और अमान साबरी अनुरोध करते थे दाऊद सराय सहारनपुर से।
1: गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह।
0: मोहल्ला हलवाईयान कस्बा शेरकोट से फरमाइश करते थे मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू साजिदा और चांदनी रानी।
1: मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से फरमाइश की थी गुलाम हसन, निषाद बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी, सराफत अली अब्दुलरहमान और बिटिया मदीहा ने।

0: सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे परख फिल्म का गीत। आवाज थी लता मंगेशकर की और गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने।
1: और इस गीत को सुनना चाहा था गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, दिनेश चौहान, रामदेवरा। दिनेश चौहान ने रामदेवरा से, बाबूराम जयपाल ने डांगरी से और खुदा बख्श खलीफा ने इस गीत को सुनना चाहा था खलीफों की बावड़ी से।
0: ये पत्र था राजवीर जी भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से।
1: जी,
0: फरमाइश करने वाले श्रोता थे स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे।
1: और ताहिर भाई टैगोर गार्डन नई दिल्ली से फरमाइश की थी हमारे श्रोता रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने।
0: चांडूर बिस्वा तालुका नांदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से अनुरोध करते थे नारायण भाऊ खड़से, रत्नाताई खड़से, ललिता संजना और उनके परिवार के सदस्य।
1: और जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से फरमाइश की थी तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा ने।
0: नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से आप थे अकरम हुसैन, प्रिंस वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, इशरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूरन कुमारी शर्मा और चीना शेख।
1: गांव जाखोद राजस्थान से फरमाइश की थी शंभुलाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक।

0: प्यार किए जा, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ किशोर कुमार की थी, राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इस गीत को सुनना चाहा था
1: ग्राम बग बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम ने।
0: झज्जर हरियाणा से फरमाइश की थी बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने।
1: गौतम नगर जिला नांदेड़ से आप थे प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले।
0: सब्जी मंडी बुल्ढाणा से शब्बीर हुसैन।

0: जिन देव बर्मन की थी, और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। रवि ने इस गीत की धुन तैयार की है खानदान फिल्म के लिए। इन दोनों गीतों की मिलीजुली फरमाइश इस तरह से है।
1: जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी, और ये मैसेज हमें मिला है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की ओर से।
0: ग्राम जहानाबाद नजीबाबाद जिला बिजनौर से फरमाइश करते हैं मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जैद, अक्सरानी, इंशारीबा, अनाबिया और आयरा।
1: मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली।
0: शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से फरमाइश करने वाले श्रोता आसिफ चौधरी, अरफात चौधरी, आदिब चौधरी और कादिर चौधरी।
1: जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा।
0: ये पत्र महाराष्ट्र के बीड शहर से आया है। अनुरोध किया है प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और राम निवास अग्रवाल ने।
1: सहारनपुर से फरमाइश की है सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग ने।
0: छत्रपति संभाजी नगर से अनुरोध करते हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश।
1: चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता कुमारी, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार इस गीत की फरमाइश कर रहा है। और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे और विजय तायडे का।
0: गांधी चौक रोपड़ पंजाब से ये पत्र है हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक का।
1: जी गांव विदर्भ से फरमाइश की है बसंतराव भोजने और पीएस नहाव करने।
0: पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से आप हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।
1: उत्तम नगर दिल्ली से हैं कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को फिल्म आशिकी टू में। गीत और संगीत मिथुन का था। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत आमिर जमाल की आवाज़ में फिल्म मर्डर से। सईद कादरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने। खामोश चेहरे पर भी हजार पहरे होते हैं, पर जो आंखों को पढ़ ले वो आशिक गहरे होते हैं।

टू का ये गीत जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने। संजय मासूम के इस गीत को संगीतबद्ध किया प्रीतम ने। तेरी बंदगी में मैंने हर नमाज छोड़ दी, तेरी बंदगी में मैंने हर नमाज छोड़ दी, तेरे दीदार के बाद हर हसीन चीज की ख्वाहिश ही छोड़ दी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दिन के 11:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
0: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
1: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
0: जी,
1: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
0: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
1: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं
0: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
0: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
1: विमलेश जी, बाहा या बहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
0: जी।
1: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
0: जी।
1: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
0: जी।
1: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नववर्ष माना जाता है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
1: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
0: जी,
1: और वहां से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं। फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
0: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
1: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
0: जी।
1: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
0: जी।
1: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
0: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओ, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की

0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
1: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
2: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
3: चलो पकड़ते हैं माधव को। पकड़ लेंगे।
1: और ये पकड़ लिया। भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसल कर गिर गया।
2: बस चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
1: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
2: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
4: जी महाराज, जी महाराज।
2: अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा।
5: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
1: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहां जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
2: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
6: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
7: जी महाराज।
6: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
2: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
6: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
2: अच्छा, तो ये प्रकरण है तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
6: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटें, पेड़ को ना काटें महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
2: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, विष्णुदत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
7: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
1: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
8: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे, हम स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
1: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहां पहुंचा। खेल चल रहा था।
2: आज मैं राजा बनूंगी।
9: आज मैं राजा बनूंगा।
5: आज तो मैं राजा बनूंगा।
10: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
2: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा। न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
11: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
2: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
11: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
12: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
2: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
11: महाराज की जय हो।
13: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
6: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
14: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोदकर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
13: शिला जब खोदकर निकाली गई तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
15: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
14: चोरी?
13: राजा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
14: हाँ, ये सच है। मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
15: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
13: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
15: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
14: झूठ?
13: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
15: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
14: चोट? वो
13: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि 4th मूर्ति बोल उठी,
15: ठहरो, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
13: राजा को क्रोध आ गया।
8: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मैं राजा हूँ, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। मैं बैठूंगा।
13: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
16: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।

0: बहुत बहुत शुक्रिया व्यास जी। अच्छा ये लो पैसे रखो
1: जनाब, थोड़े ज्यादा दे दिए।
0: रखो रखो।
1: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।
0: गर्मी में पानी पिलाया तुमने। रखो,
1: शुक्रिया
0: शुक्रिया।
2: ये अमृत वाला आ गया।
3: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
4: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
0: मशकूब भाई।
1: जी जनाब।
0: प्यास बहुत लग रही है,

0: आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए
1: लाओ। बस बस
0: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
1: सही

0: हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा।
1: ऐसा ही करूंगा।
2: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
0: पैसा लाए हो?
3: यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
4: मुंह उठाए खाली हाथ चले आते हो?
3: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है अकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए अकीम साहब।
4: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
3: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
4: बच्चे को गोद में उठाओ।
3: बच्चे की जान बचा लीजिए अकीम
4: साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो।
3: मर जाएगा ये।
4: उठा,
3: मर जाएगा अकीम साहब।
4: चलो निकलो बाहर।
2: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब। शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
5: अमृत वाला

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्दालूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ?
1: खैर, जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब,
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज, मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
3: ये मैंने क्या कर डाला? ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला? क्या किया?

0: Ma crema. Αμύρητο αλάχια. Κι αχούμ, ράγκα τζαμάκ.
1: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
0: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमा,
1: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
2: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं, अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संग दिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

संसद समीक्षा रात 8 बजे और संसद में आज प्रश्नकाल के दौरान होने वाली कार्रवाई की रिकॉर्डिंग हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 10 बजे। कंट्री वाइड और इनसाइट्स, ये दोनों ही कार्यक्रम भी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले करेंगे रात 9:30 पर।

सुगम संगीत के अंतर्गत शाम 7:32 पर हम आपको सुनवाएंगे साकिब अक्कासी और साथियों की गाई कव्वालियां। विविध क्रम में आज शाम 6:45 पर श्रीपाल सांगवान की वार्ता का विषय होगा लोक संस्कृति के प्रसार में आकाशवाणी।

शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे नाटक, शीर्षक होगा चकबंदी। आलेख अंकित कुमार का, निर्देशन अंकित सैनी का और प्रस्तुति होगी शोभित शर्मा की। प्रतिभागी कलाकार होंगे आलोक कुमार, प्रमोद सिंह, सुवेंद्र सिंह, नरेश पाल सिंह, सोहन शर्मा और कुमुद सिंघल।

हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आज जानकारी दी जाएगी राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के बारे में। संदेश टू सोल्जर्स हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे दिन में 4 बजे।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत आज अपराह्न 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे दीपा चौहान के गाए गढ़वाली लोकगीत। महिला जगत कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा दिन में 1:15 पर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर पूजा सिंह से प्रियंका त्यागी की बातचीत, जिसका विषय होगा महिलाओं के लिए फिजियोथेरेपी। और फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी 12:05 पर कार्यक्रम सैनिकों के लिए में। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम मिड डे मेलोडी के अंतर्गत। एक ही संगीत कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। शाम 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत में। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत संध्या। और रात 8:30 पर एक ही फिल्म से। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 अर्थात 954 kHz पर। इस समय दिन के 12:05 हो रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 12:05 हो रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे फिल्म शहीद का ये गीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत जिसको हमने लिया है फिल्म जिगरी दोस्त से। आवाज़ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की है, आनंद बख्शी का ये गीत है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जिगरी दोस्त, इस फिल्म में भी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म परदेश का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति और आदित्य नारायण ने। आनंद बख्शी का लिखा यह गीत है और धुन है नदीम शर्मन की।

फिल्म परदेश में भी आप सुन रहे थे हरिहरण कविता कृष्णमूर्ति और आदित्य नारायण को। आनंद बख्शी के इस गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम शर्मा ने। और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से। आवाज़ है रूप कुमार राठौर की, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत है अनु मलिक का।

रूप कुमार राठौर के गाए फिल्म बॉर्डर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, जय हिंद। जिन्हें चाहूं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 956 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 12:30 हो रहे हैं और यह समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम मिड डे मेलोडी का। तो नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत के कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में। और दोस्तों, आज का जो ये दिन है ये वाकई बहुत ख़ास है। आज कैलेंडर पर तारीख है 23 जुलाई यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। जी हाँ, आज ही के दिन साल 1927 में बम्बई स्टेशन से पहली बार रेडियो तरंगों ने देश में गूंजना शुरू किया था और तब से लेकर आज साल 2026 तक तकनीक बदली, दुनिया बदली, पर अगर नहीं बदला तो हमारा और आपका ये जादुई डिब्बा और आपकी हमारी ये दोस्ती। तो चलिए आज की इस संगीत में दोपहर को समर्पित करते हैं रेडियो के नाम और शुरू करते हैं गानों का कारवां इस खूबसूरत आरजे स्पेशल ट्रैक के साथ।

श्रोताओं, श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ ने इस गाने को सुनकर वाकई दिल को पल पल झूमने पर मजबूर कर दिया है। श्रोताओं, याद है वो ज़माना जब दादाजी सुबह सुबह ट्रांजिस्टर की सुई घुमाकर समाचार ढूंढते थे, या जब घर की छत पर एंटीना सीधा करके मैच की कमेंट्री सुनी जाती थी। जहाँ श्रोताओं, रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं है बल्कि हमारे परिवारों का

झूमने पर मजबूर कर दिया है। शतम, याद है वो जमाना जब दादाजी सुबह सुबह ट्रांजिस्टर की सुई घुमाकर समाचार ढूंढते थे, या जब घर की छत पर एंटीना सीधा करके

0: नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, इस कॉमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में, और मैं हूं आपके साथ राजवीर सिंह। श्रोताओं, आपको पता है कि रेडियो की सबसे खूबसूरत बात क्या है? जी, ये सरहद पर बैठे हमारे जवान भाई से लेकर खेत में हल चलाते किसान और घर में रसोई में काम करती हमारी माताओं बहनों को सबको एक साथ एक ही सुर में प्रोता है। जी हाँ, आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। आइए इस मिट्टी और इसकी खुशबू को सलाम करते हैं ए आर रहमान साहब के इस बेहतरीन संगीत के साथ।

रंग दे बसंती। इस फिल्म में भी आपने सुना एआर रहमान और नरेश लेयर को। संगीत भी एआर रहमान का ही था। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, वक्त बदला और रेडियो भी अब केवल ड्राइंग रूम से निकलकर आपकी गाड़ियों, आपके स्मार्टफोन्स और डिजिटल एप्स तक पहुंच चुका है। आज का रेडियो मॉडर्न है, लाउड है और इसमें युवाओं का जोश है। तो चलिए इसी मॉडर्न रेडियो वाइब को सेलिब्रेट करते हैं सैफ और प्रीति के इस सुपरहिट और एनर्जेटिक टाइटल ट्रैक के साथ।

सलाम नमस्ते, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास की आवाज़ों में। विशाल शेखर का संगीत और बॉल जयदीप साहनी के। श्रोताओं, क्या कमाल का सफ़र रहा है रेडियो का। दोस्तों, चलते चलते इस कार्यक्रम में बस इतना ही कहूँगा कि स्क्रीन की दुनिया में भले ही सब कुछ बहुत चकाचौंध भरा हो, लेकिन रेडियो वो सुकून है जो बिना कुछ देखे भी सीधे दिल में उतर जाता है। आज इस राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त लेता हूं और आपको छोड़े जाता हूं इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कमाल खान और अमित मिश्रा को फिल्म ट्यूबलाइट में। गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया प्रीतम ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का यह कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन का 1 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की।
1: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
0: राज्यसभा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे

0: ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले नीट पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने जवाब दिया था कि वो नीट परीक्षा के पेपर लीक सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग रखी है। एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैना नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्र के हित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in the NEETA paper leaks. Mr. Modi also asserted that protecting students' future remains the top priority of the government. In a social media post, Prime Minister Modi said nothing is more important than the welfare and future of the youth of the country. PM Modi's statement comes amid ongoing students' protest at Delhi's Jantar Mantar over the NEET paper leak case. Mr. Modi said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. He asserted that those who try to harm the future of the youth will not be spared. The Prime Minister added that the decision has been taken as part of a series of measures to safeguard the interests of students. Both Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on their feet protesting on the paper leak issue. The presiding officer, Dilip Saikia, urged the opposition to cooperate for the smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition.
2: Today, I appealed on behalf of the entire NDA for a discussion on NEET. After meeting Mr. Kharge and some other opposition leaders, yesterday we were hopeful that a discussion on NEET would take place today. However, the Congress party imposed conditions. Imposing conditions suggests that your intentions are not right, as it appears that you want to prevent the discussion.
1: Despite the appeal by Mr. Rijiju, the opposition members continued with sloganeering and trooped into the well. As the pandemonium continued, Presiding Officer Dilip Saikia adjourned the House till 2 p.m. Earlier, when the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m., Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of paper leak and students' protest. The same scene was also witnessed in the Rajya Sabha. When the Rajya Sabha assembled again at 12 noon after the first adjournment, leader of the opposition Mallikarjun Kharge again raised the issue of NET paper leak and students' protests. Union Minister and leader of the House Jagat Prakash Nadda criticised the opposition, terming its conduct highly irresponsible. However, the opposition continued with their protest and sloganeering. Amid the din, the chairman adjourned the House till 2 p.m. NDA and opposition MPs today held a protest at Makar Dwar inside Parliament premises. NDA MPs emphasised a discussion on the NET paper leak issue in the House, while opposition MPs demanded the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. BJP President and Rajya Sabha MP Nitin Nabin said the NDA government is fully prepared to discuss the future of students and youth at every level. Speaking to reporters, Mr. Nabin said that Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi and the entire opposition are shying away from the discussion in the House.
3: Our government is fully prepared to hold discussions at every level for the future of students and young people. However, Rahul Gandhi, the Congress party and the entire opposition are shying away from the discussion. They view young people merely as stepping stones for their politics, whereas the NDA government and Prime Minister Narendra Modi is to remain fully committed to build a bright future for the country's youth.
1: Delhi police has debunked reports circulating on social media claiming the death of a female during the protest at Jantar Mantar in New Delhi. In a social media post, the police clarified that the information is false.

नमस्कार श्रोता बहनों, स्वस्थ महिला, सशक्त परिवार और समृद्ध समाज, इसी संदेश के साथ हमारी सभी बहनों का स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में प्रियंका त्यागी के साथ। इसी मंगल कामना के साथ कि हमारी सभी श्रोता बहनें अपने परिवार सहित कुशल मंगल से होंगी। बहनों याद दिला दें कि आज कार्यक्रम में खास रहेगा हमारा क्रम स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज, जिसमें होती है ऐसी जानकारी विषय जो हमारे स्वास्थ्य, जागरूकता और बेहतर जीवन से जुड़े होते हैं। तो बहनों कार्यक्रम में बनी रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर आखिर तक। और बहनों आज का महिला जगत कार्यक्रम शुरू करते हैं हम सभी के लिए बहुत ही खास राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के साथ, जो कि हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। बहनों रेडियो ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक देश को जोड़ने, शिक्षित करने और सूचना पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा मुंबई स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण किया गया। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी का नाम दिया गया। और बहनों तब से लेकर आज तक आकाशवाणी अपनी सरलता और विश्वसनीयता के कारण महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, किसानों और बच्चों के बीच अपनी जगह बनाए हुए है। आज के डिजिटल युग में संचार के अनेकों माध्यम होने के बावजूद भी रेडियो आज भी लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है, चाहे दूर दराज के गांव हो, खेत खलिहान हो या शहर, रेडियो हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। बात चाहे स्वास्थ्य की हो या कृषि, रोजगार, संगीत, मनोरंजन या किसी आपदा या आपातकाल की, रेडियो ने सही समय पर जनसाधारण तक सूचना पहुंचाई है। इस दिन को भारतीय प्रसारण के इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में याद किया जाता है। तो बहनों हम सब राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर उन सभी उद्घोषकों, पत्रकारों, तकनीशियनों और प्रसारण से जुड़े कर्मियों का सम्मान करें जो अपनी आवाज और समर्पण से समाज को जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन से जोड़ते हैं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, यही है आकाशवाणी का ध्येय वाक्य। अब बहनों ये जानकारी तो रही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के बारे में और कार्यक्रम में, अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये संदेश।

0: इन संदेशों के बाद फिर से स्वागत है सभी बहनों का कार्यक्रम महिला जगत में। बहनों, एक स्वस्थ समाज का आधार स्वस्थ महिलाएं हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जब एक महिला स्वस्थ होती है तो वह पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। लेकिन अक्सर महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपने शरीर के दर्द और तकलीफ को नजरअंदाज कर देती हैं। बहनों, फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा है जो महिलाओं के जीवन के बहुत से चरणों में लाभकारी होती है। फिजियोथेरेपी महिलाओं के लिए किस प्रकार से लाभकारी है, जानने के लिए सुनते हैं हमारा क्रम स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए फिजियोथेरेपी विषय पर विस्तृत जानकारी दे रही हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पूजा सिंह। तो बहनों, सुनते हैं ये भेंटवार्ता। श्रोता बहनों, आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों की समस्या और गलत पोस्चर जैसी परेशानियां बहुत आम हो गई हैं। ऐसे में फिजियोथेरेपी केवल इलाज का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण आधार है। महिलाओं के लिए फिजियोथेरेपी की आवश्यकता किन स्थितियों में लाभकारी होती है, इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पूजा सिंह, महिलाओं के लिए फिजियोथेरेपी विषय पर जानकारी देने के लिए। डॉक्टर साहिबा नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा सिंह।
0: डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो सबसे पहले तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी वास्तव में होती क्या है और इसको लेकर लोगों में क्या भ्रम है।
1: फिजियोथेरेपी एक वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा कराया जाता है। भौतिक चिकित्सा के द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, जिसमें शरीर की कार्यक्षमता, दर्द, मूवमेंट और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर काम किया जाता है। इसमें मरीज की स्थिति के अनुसार मूल्यांकन

0: थेरेपी में दर्द को कम करने के लिए, शरीर की मूवमेंट को सुधारने के लिए और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, रोजमर्रा के काम करने की क्षमता वापस दिलाने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें दवाइयों या सर्जरी पर निर्भर हुए बिना व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उपचार किया जाता है। फिजियोथेरेपी में जैसे कि हम कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों का दर्द, आजकल की जैसे भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है लोगों की, उसमें लोगों को रिलैक्स नहीं मिल पाता है, उसको रिलैक्स करने के लिए पोस्चर्स उनके गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनके कमर दर्द, घुटनों के दर्द या फिर गर्दन के दर्द शुरू हो जाते हैं। इसमें मशीनों के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा और उनको उठने बैठने के तरीके समझाकर उनके कमर दर्द, गर्दन के दर्द, पैरों के दर्द को ठीक किया जा सकता है। आजकल जैसे कि महिलाओं में आप देखिए, शियाटिका सबसे मेन प्रॉब्लम है। शियाटिका में एक पैर में दर्द होने शुरू हो जाता
1: जी
0: है।
1: जी
0: महिलाएं दोहरा काम करती है, दोहरे क्षेत्र में कार्य करती है, जैसे कि उनको घर भी संभालना होता है, फिर उनको जॉब भी करनी होती है, उनको बच्चे भी देखने होते हैं, तो उससे क्या होता है, महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं।
1: कार्यभार ज्यादा होने से आजकल हम देख रहे हैं कि महिलाओं में कमर दर्द और गर्दन दर्द बहुत एक आम हो चला है, तो ऐसे में फिजियोथेरेपी कितनी लाभकारी है?
0: फिजियोथेरेपी काफी लाभकारी है। फिजियोथेरेपी में क्या होता है, हम बिना दवाई के, बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट करते हैं। फिजियोथेरेपी में सिर्फ पेशेंट को अपनी समस्या बतानी होती है, उसका इवैल्यूएशन करके, उसका मूल्यांकन करने के बाद उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसकी कंडीशन को देखकर ही ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है कि उसके लिए क्या जरूरी है और क्या गलत। जैसे हमारे पास महिलाएं आती हैं, किसी को कमर दर्द है, किसी को गर्दन दर्द है। आजकल क्या होता है, लोग बाग इतने अपने शेड्यूल में, इतना हेक्टिक शेड्यूल हो चुका है कि अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो वो अपने पोस्चर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। महिलाएं एमएनसीज में काम करती हैं, वहां पर वो लैपटॉप या फिर फोन वगैरह या फिर सिस्टम में वर्क करती हैं, उनको कंटिन्यूअसली बैठना पड़ता है 6 to 8 hours, फिर उनके गर्दन में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम मेन होती है
1: जी।
0: वो हमारे पास आते हैं, हम उनका इवेल्युएशन करते हैं, दर्द कहाँ तक है, किस सीमा तक पहुंचा है, फिर उसके बाद उनके ट्रीटमेंट को जारी किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है सर्वाइकल के लिए, बैक पेन के लिए और अदर समस्याओं के लिए भी, जो कि हड्डियों से जुड़ी हुई है, मांसपेशियों से रिलेटेड है और नर्व की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सब फिजियोथेरेपी में की जाती है।
1: डॉक्टर साहिबा, बात करें गर्भावस्था की, तो गर्भावस्था से पहले और बाद में क्या फिजियोथेरेपी लाभकारी है?
0: जी बिल्कुल है। गर्भावस्था के बाद जो वुमेन होती है, तो वो अपना बॉडी का सब कुछ चेंज कर देती है, मीन्स उसमें चेंजेस आ जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, कमर दर्द शुरू हो जाता है, उनकी मसल्स वीक हो जाती है और जो पेल्विक मसल, फ्लोर की मसल्स होती है, जो हमारी मीन्स लोअर एब्डोमेन मसल्स होती हैं, वो भी वीक हो जाती हैं। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकती है, उनसे सलाह ले सकती हैं। पेल्विक मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइजेस होती हैं। मैंने बताया कि महिलाएं पहले की हेल्थ के अकॉर्डिंग मोटी हो जाती हैं या फिर हेल्दी ज्यादा हो जाती हैं, तो उसको उनको बैलेंस करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की नीड होती है, वो हेल्प ले सकती हैं। वो फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज बता देते हैं, उसके थ्रू आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और गर्भावस्था के दौरान औरतों में कमर दर्द शुरू होने लगता है, कमर की मसल्स होती है, जो मांसपेशियां होती हैं, वो थोड़ा सुस्त पड़ जाती हैं, थक जाती हैं, क्योंकि उसने इतना वेट गेन किया है, बच्चे का वेट फिर प्लस अपनी बॉडी का वेट, तो उससे क्या होता है, उनकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, तो उसके लिए उनको फिजियोथेरेपी की नीड होती है।
1: डॉक्टर साहब, एक चीज और हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद अगर कोई मदर अपने बच्चे को फीड कराती है, तो लगातार एक पोजीशन में रहने से अगर किसी को कमर दर्द की या सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी नहीं है, तो उस समय पर वो परेशानी हो जाती है, तो इस कंडीशन में फिजियोथेरेपी कहाँ तक लाभ पहुंचा सकती है?
0: एक माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, वो एक ही सेम पोस्चर में रहती है, तो वो अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रख पाती है, उस टाइम पर वो अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, वो सिर्फ बच्चे के लिए सोचती है। तब क्या होता है, मोस्टली महिलाओं में ये प्रॉब्लम आने लग जाती है कि उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लग जाती है, बैक पेन हो जाता है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत लाभकारी है। वो किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर कंसल्ट कर सकती है, उनसे सलाह ले सकती है, क्योंकि एक लंबे समय तक करने वाला कार्य होता है। बच्चे को माँ बार बार फीड कराती है, तो वो कई बार कंटिन्यूअसली हो जाता है, तो उसी पोजीशन में झुके रहने की वजह से गर्दन में दर्द शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए हम फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। इट्स वेरी बेनिफिशियल।
1: और किन किन समस्याओं में फिजियोथेरेपी सबसे ज्यादा मददगार हो सकती है? बच्चों और बुजुर्गों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में?
0: बच्चों और बुजुर्गों में चलने फिरने संबंधी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे बुजुर्ग जो होते हैं, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी नीचे ढलने लगती है, मीन्स उनकी कमर मुड़नी शुरू हो जाती है, बोन्स उनकी वीक होने लग जाती है, जैसे की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, मोस्टली ये बुजुर्गों में देखी जाती है। किसी बच्चे की मसल्स जो होती है, वो बाय बर्थ ही वीक होता है बच्चा। ऐसे बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी हमारे यहाँ पर होता है, तो उसमें बच्चे क्या होता है, दिमागी तौर पर भी वीक होता है और बॉडी से भी, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से बच्चा आपका तंदुरुस्त हो सकता है, उससे मीन्स मांसपेशियां उसकी मजबूत कर सकते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे के लिए आप फिजियोथेरेपी

0: से मिल सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, उनको एक्सरसाइज के थ्रू, जो मशीनें लगानी होती है मशीनों के थ्रू उनको ट्रीटमेंट देते हैं, प्लस एक्सरसाइज के थ्रू उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मांसपेशियां मजबूत होती है जिससे बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। बुजुर्गों के लिए, जैसे आप पूछ रही हैं, बुजुर्गों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम सबसे मेन है। कमर दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटनों के दर्द के लिए फिजियोथेरेपिस्ट से आप जाकर मिल सकते हैं। उनको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, मशीन्स लगाई जाती हैं, बिना दवाई के बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि उसमें कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, किसी तरह का इंजेक्शन नहीं है, सिर्फ आपको मशीनों के द्वारा और एक्सरसाइज के थ्रू मैनुअल थेरेपी देकर ट्रीटमेंट दिया जाता है।
1: जी डॉक्टर साहिबा, ये बात तो रही महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की समस्याओं को लेकर, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार दुर्घटना होने पर या खेलते वक्त कोई इंजरी अगर हो जाए तो ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल रहता है?
0: जी बिल्कुल, बाय चांस कोई दुर्घटना हो गई है, उसमें क्या होता है, ऑपरेशन हो जाता है
1: जी,
0: किसी जॉइंट को हमें रिप्लेस करना पड़ता है, तो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में भी फिजियोथेरेपी लाभकारी होती है। ऑपरेशन के बाद, तो जैसे अगर दुर्घटना के टाइम पर किसी को ज्यादा चोट लगी है और उसका ऑपरेशन हुआ है, तो पोस्ट ऑपरेटिव भी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, वो उसको ट्रीट कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में जैसे कि किसी जोड़ में ऑपरेशन हुआ है तो उनके जोड़ के खुलने की, मांसपेशियों के खुलने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है।
1: जी
0: ऑपरेशन के बाद क्योंकि एक ही पोजीशन में वो हाथ रखा है या पैर रखा है, जो भी उसका अंग है वो एक ही पोजीशन में है, तो उससे क्या होता है, वो जकड़न शुरू हो जाती है उसके आसपास की मांसपेशियों में, तो
1: जी
0: उस जकड़न को खोलने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट उसमें अपने मैनुअल थेरेपी के थ्रू और अदर और भी मशीन्स होती हैं, जैसे कि वैक्स बाथ थेरेपी होती है, उसके थ्रू हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो उसका जॉइंट का पूरा रेंज ऑफ मोशन जितना भी होता है वो पूरा नहीं आ पाता है ऑपरेशन के बाद में, तो हम क्या करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट कि उसको ऑपरेशन के बाद जो उसका रेंज ऑफ मोशन बहुत डिक्रीज हो चुका है उसको प्रॉपर इम्प्रूव करने के लिए, उसकी अपनी प्रॉपर पहले की कंडीशन में लाने के लिए उसको मैनुअल थेरेपी देते हैं और वैक्स बाथ थेरेपी हम देते हैं। वैक्स बाथ थेरेपी के बाद में हम उसको एक्सरसाइजेस कराते हैं जिसके थ्रू उनका पूरा रेंज ऑफ मोशन आ जाता है, तो इस तरह से ये लाभकारी है। और बात करना चाहेंगे कि जैसे दुर्घटना के टाइम पर हल्की फुल्की चोट आई है
1: जी,
0: किसी की, जैसे लिगामेंट टियर हो जाता है, टेंडन टियर हो जाता है, या फिर मांसपेशी में थोड़ी

0: आ जाती है तो स्ट्रेस उसका शोल्डर्स के ऊपर आता है,
1: जी
0: शोल्डर्स के ऊपर की सारी मसल्स जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, उससे उनकी नेक में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो डिप्रेशन में भी हम फिजियोथेरेपी सजेस्ट कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, वो उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट सेट करके उनको फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। इसमें बिना दवाई के, बिना किसी सर्जरी के उनका उपचार किया जा सकता है।
1: मानसिक बीमारी में फिजियोथेरेपी कहाँ तक लाभकारी है?
0: मानसिक बीमारी में आप बात कर सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है,
1: जी
0: उसको कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसको नहीं पता होता है कि उसको किस तरह से चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसमें भी हम फिजियोथेरेपी की हेल्प ले सकते हैं। मानसिक बीमारी में आप बात कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक,
1: जी
0: स्ट्रोक में ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, उसमें भी पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत हेल्पफुल है। अनकॉन्शियस पेशेंट्स को वो एक ही पोजीशन में, सेम कंडीशन में महीनों तक पड़े रहते हैं,
1: जी
0: तो उसमें हम क्या करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट उनको एक्सरसाइज के थ्रू, फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है पेशेंट्स को ट्रीट करता है, उनको डेली एक्सरसाइज कराएंगे तो उनके जॉइंट्स जो होते हैं, जो उनकी बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो एकदम से स्टिफ नहीं होते हैं। नहीं तो एक सेम कंडीशन में पड़ा हुआ अनकॉन्शियस व्यक्ति क्या होता है, वो स्टिफ हो जाती है पूरी बॉडी। तो उसके लिए हम मैनुअल थेरेपी देते हैं, हम हाथ से एक्सरसाइज कराते हैं उनकी, फिर उनको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ मशीनों के थ्रू उनकी एक्सरसाइज की जाती है। इसी तरह से हम स्ट्रोक वाले पेशेंट को भी ट्रीट कर सकते हैं। स्ट्रोक में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो जाती है,
1: जी
0: अनकॉन्शियस कंडीशन से उठ के पेशेंट आया है, उसको नहीं पता है किस तरह से चलना है, कभी कभी पेशेंट चलते चलते गिर जाता है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए भी हमारे पास एक्सरसाइजेस होती हैं।
1: तो देखा जाए तो डॉक्टर साहिबा, फिजियोथेरेपी तो हर कंडीशन में ही बड़ी लाभकारी है।
0: जी बिल्कुल, फिजियोथेरेपी बहुत लाभकारी है।
1: डॉक्टर साहिबा, कई बार ऐसा होता है कि किसी ने फिजियोथेरेपी स्टार्ट की और उन्होंने 4 या 5 दिन का कोर्स किया और उसके बाद फिर वो छोड़ दिया, किसको आगे कंटिन्यू करके क्या ही फायदा, कुछ भ्रम भी रहते हैं, गलत फहमियां भी रहती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनके माइंड में क्या होता है कि दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, मशीनें लगानी है बस,
1: जी
0: तो इसमें किस तरह से आराम हो सकता है, लेकिन उनको विश्वास अपना बना के रखना चाहिए।
1: जी
0: जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, सबसे पहले वो आपकी समस्याएं सुनता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो पेशेंट्स क्या करते हैं, 3-4 दिन आते हैं रेगुलर बेसिस पर, उनको थोड़ा आराम लगना शुरू हो जाता है तो वो सोचते हैं कि बस इतना काफी है, फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपका ट्रीटमेंट ब्रेक हो जाता है, आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और जैसे कि उनके डॉक्टर ने पेपर में लिख के दिया है कि बस 5 दिन के लिए फिजियोथेरेपी कराना है, 5 दिन में तो वो आपकी स्वेलिंग भी रिड्यूस नहीं कर पाते हैं,
1: जी
0: जो आपके एरिया में स्वेलिंग हो जाती है, किसी कंडीशन में स्वेलिंग भी हो जाती है, किसी कंडीशन में पेन भी रहता है। फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट में एकदम से रिलीफ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके उसको अगर जड़ से खत्म करना है तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात करके उनके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहिबा, चलते चलते अब आपसे ये और जानना चाहेंगे, महिलाओं के लिए आप छोटे छोटे से क्या हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो स्वस्थ रह सके?
0: महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले वो अपने हेक्टिक शेड्यूल के साथ साथ अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें, फैमिली को देखते देखते वो अपने ऊपर ध्यान जरूर दें, जब वो फिट रहेंगी तभी वो फैमिली को फिट रख सकती हैं। तो उसके लिए आपको सुबह ही एक तो डेली एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, नॉर्मल एक्सरसाइजेस जो होती है, वार्म अप एक्सरसाइजेस नॉर्मली वो करना चाहिए, प्लस आपको अपने वेट का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हेल्थी ज्यादा होते जा रहे हैं, मीन्स आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ज्यादा वेट गेन कर रहे हैं,
1: जी
0: तो इसके लिए आपको जागरूक होना चाहिए, टाइम टू टाइम आपको अपने टेस्ट कराते रहना चाहिए। आप डायबिटिक तो नहीं है, आपके हार्मोन्स तो डिसबैलेंस नहीं हो रहे हैं, उसी की वजह से भी आप मोटे हो जाते हैं, प्लस आपको अगर जरा सा भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या आपके बैक में पेन होना शुरू हो रहा है, तो स्टार्टिंग में आप गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, उसके बाद अगर दर्द नहीं ठीक होता है तो आप किसी अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको अच्छी राय देंगे और आपका ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे।
1: डॉक्टर साहिबा, आज आपसे बहुत उपयोगी जानकारी मिली। जो जानकारी आपने दी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें जरूर ध्यान रखेंगी। आप आज हमारे स्टूडियो में आई, हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज क्रम के अंतर्गत महिलाओं के लिए फिजियोथेरेपी विषय पर जानकारी दे रही थी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पूजा सिंह। और बहनों, उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी हमारी बहनों के लिए लाभकारी होगी कि फिजियोथेरेपी केवल उपचार ही नहीं बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और बहनों, कार्यक्रम में अब चलते हैं हमारे क्रम आधी आबादी की ओर, जो कि महिलाओं के दृढ़ संकल्प, हिम्मत, साहस और उनकी योग्यता को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाता है। ऐसी ही है एक साहसी, दृढ़ निश्चयी महिला के हौसलों की कहानी हमारे क्रम आधी आबादी में। बहनों, वो कौन है, जानने के लिए

0: हमारा क्रम आधी आबादी। सपनों ने बूट पहने, इरादों ने खाकी वर्दी ओढ़ी और हरियाणा के एक छोटे से गांव बेलरखा से निकलकर वह अपने परिवार और गांव की पहली महिला भारतीय सेना अधिकारी बनी। बहनों, हम बात कर रहे हैं आधी आबादी की नायिका कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह की, जो कि सिर्फ एक सेना अधिकारी ही नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड महिला है। हालांकि बहनों, अब वो सेना से सेवानिवृत्त हो चुकी है, लेकिन उसके बाद आज भी वो एक लाइफ कोच, प्रशिक्षक, SSB यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की मेंटर और खेल मनोवैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। बहनों, सुनने में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन इतना सब कुछ करने के लिए निश्चित ही मन में लगन, साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सफलता तक पहुँचने की राह बहुत कठिन होती है। इन्होंने देश सेवा के लिए कदम बढ़ाने की राह चुनी तो लोगों ने उनके पिता को ताने दिए कि लड़की को अफसर बनाओगे, लेकिन उन्होंने अपने दादाजी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उनके शब्द कि देश के लिए कुछ करना है, ये सुनकर उनसे प्रेरणा लेकर भारतीय सेना में भर्ती होकर 10 वर्षों तक देश सेवा में अहम योगदान दिया। सेना से सेवानिवृत्त लेने के बाद कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह ने साइकोलॉजी में PhD की और आज वो एक शिक्षिका, मनोवैज्ञानिक, मोटिवेशनल स्पीकर और करियर मार्गदर्शक के रूप में युवाओं का मार्गदर्शन कर रही हैं। बहनों, SSB मेंटर के रूप में भूमिका निभाते हुए डॉक्टर सुनैना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों, युवाओं, बेटियों का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। कैप्टन सुनैना ने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए मिशन ज्वाइन इंडियन आर्मी की शुरुआत की। क्या था उनका सपना, उनके इस अहम कार्य की शुरुआत कैसे हुई, जानते हैं उन्हीं से।
1: सो आई थिंक 2019 में मैंने अपना ये सपना देखा था छोटा सा, और मैंने उस सपने को नाम दिया मिशन ज्वाइन इंडियन आर्मी। ये शुरुआत होती है बिकॉज आई बिलोंग टू अ प्लेस कैथल, तो कैथल में इतना ज्यादा फौज का एक्सपीरियंस में ना, तो जब मैं स्कूल में गई और मैंने बच्चों से पूछा आप इनसे कौन फौज में जाना चाहता है, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी कि बहुत ज्यादा बच्चों ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो तब मुझे ऐसे लगा, यू नो, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर। हर कोई फौज को इतना इज्जत देता है, इतनी प्यार कर देता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा अवेयरनेस की कमी है। तो ठीक है, तो मैंने एक अवेयरनेस के ढंग से किया। मेन मैंने शुरू किया देहात के बच्चों के लिए, गाँव के बच्चों के लिए। मुझे ऐसे लगता है कि यू नो बिकॉज मेरे रूट्स वहां पे हैं अभी भी, तो मुझे बहुत लगता है कि उन बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत हुनर है। कहीं ना कहीं सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कहीं ना कहीं सही गाइडेंस नहीं मिलती, और उस वजह से वो बच्चे रह जाते हैं। सो आई स्टार्टेड विद दिस मिशन।
0: बहनों, कैप्टन सुनैना ने मिशन ज्वाइन इंडियन आर्मी किस उद्देश्य से शुरू किया, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो बच्चों का माइंडसेट कैसे किया जाए, बता रही है कैप्टन सुनैना।
1: और ये मिशन सिर्फ अवेयरनेस और रिक्रूटमेंट मिशन नहीं है। आई थिंक मैंने जिस पर्पस से स्टार्ट किया, इसमें माइंडसेट बिल्डिंग पे भी मैंने काम करना शुरू किया। यू नो इट्स माय इनिशिएटिव, जहां पे हम बात करते हैं कि सही माइंडसेट की क्या जरूरत है। इस मिशन ज्वाइन इंडियन आर्मी के थ्रू मैं डिफरेंट स्कूल्स के अंदर जाती हूँ, कॉलेजेस के अंदर जाती हूँ, बच्चों को फौज के बारे में बताती हूँ, और मैं उनको एक प्लेटफॉर्म देती हूँ जहां पे उनको सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आर्मी मिल सकती है। एंड मोर देन दैट आई एम ट्रेनिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि फौज में जाने के लिए आपको एक माइंडसेट की जरूरत है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग देम इज, देखो अगर फौज में हो गया तो बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि हर बच्चा फौजी बनेगा, लेकिन उन क्वालिटीज के साथ, तो जिसको हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बोलते हैं, वो जिंदगी जीना आसान कर देती है। सो इन देयर आई टॉक अबाउट उन बच्चों के साथ, यू नो, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है, विनिंग माइंडसेट का मतलब क्या है, उन फेलियर्स को किस तरीके से हैंडल करना है, बिकॉज अच्छा लीडर बनने के लिए रेजिलियंस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। टाइम मैनेजमेंट स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, अगर हम इन सब चीजों की बात करती हूँ, एक अच्छा सिटीजन बनने की जरूरत है। तो आप चाहे किसी भी फील्ड में जाइए, आज चाहे मैंने फौज छोड़ दिया, एज अ टीचर ऑल्सो आई हैव मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क फॉर दिस नेशन। तो वो उस तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाने की, कि वो कहीं भी जाए, किसी भी फील्ड में जाए, जो भी काम करे अच्छा काम करे। दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन।
0: सच में बहनों, एक मनोवैज्ञानिक शिक्षिका के रूप में कैप्टन सुनैना स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं, जिससे वो अपने जीवन में सफलता हासिल करें। मैंने कैप्टन सुनैना एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं और खेल मनोवैज्ञानिक भी हैं। वो कैसे इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं, सुनते हैं।
1: जब मैं बच्चों को देखती हूँ स्टिल एट ग्राउंड लेवल देहात में एवरीबॉडी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है चीजें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा धीरे धीरे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई एरिया वेर आई वर्क अपॉन। आई विल बी बिल्डिंग अ मॉड्यूल ऑन हाउ टू डेवलप दैट विनिंग माइंड सेट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा 6 से 7 घंटे आजकल अगर आप एवरेज देखें, जो बच्चे प्रोफेशनली स्पोर्ट्स को फॉलो अप कर रहे हैं, अभी मैं पीछे बैडमिंटन अकेडमी देख रही थी, टेनिस में बच्चों को खेलते हुए देखती हूँ, मेरा बेटा खुद टेनिस खेलता है, सो इन अ डे दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर 6 to 7 hours, बट इफ आई आस्क देम आप कितने घंटे मेंटल ट्रेनिंग कर रहे हो, तभी हमारे जितने भी आप इंडियन एथलीट्स को देखेंगे जूनियर लेवल तक बहुत अच्छा करते हैं। उसके बाद जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, प्रेशर बढ़ता है बहुत सारी चीजों का चारों तरफ अवेयरनेस बढ़ती है, तो हमारी परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाती है। तो हमें शुरू से काम करने की जरूरत है एक यंग बच्चे के साथ, बिकॉज यंग एज के अंदर मेंटल ट्रेनिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी एज वी स्टार्ट डूइंग एट द लेटर इन द स्टेजेस, दैट बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आई रियली वांट टू वर्क हियर आल्सो अ बिट।
0: बहनों, ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह का क्या संदेश है, जो बेटियां बड़े सपने देखना और उन्हें साकार करना चाहती हैं, सुनते हैं।
1: सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी, मेरे बच्चों तुम्हारा जो भी सपना है वो वैलिड है। तुम्हारी बैकग्राउंड बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगी कि तुम्हारा सपना पूरा होगा या नहीं, मार्क माय वर्ड। गांव के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो गाइडेंस नहीं है, आई अग्री, बट उससे कहीं बड़ी चीज आपके पास है, अभाव। अभाव के कारण जो अंदर आग है, और उस आग को हम अंग्रेजी में शायद ग्रिट बोलते हैं। सो जो गांव के देहात के बच्चों के पास वो ग्रिट है, दैट इज गोइंग टू मेक डिफरेंस। तो प्लीज सपने बड़े देखिए। मैं हमेशा बोलती हूँ उन बच्चों को, यू नो, एम फॉर द मून, इवन इफ यू फॉल यू विल फॉल अमंग्स द स्टार। और मैं आप लोगों की ही जगह से गई हूँ, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि मेरे पास सपोर्ट सिस्टम अच्छा था, तो मैं थोड़ा बहुत जिंदगी में कुछ कर पाई, बट अगर मैं कुछ कर पाई तो मार्क माई वर्ड्स आप भी कर पाएंगी। तो सपने थोड़ा बड़ा देखो, कहीं गाइडेंस और कहीं थोड़ी सी अगर आपको अपॉर्चुनिटीज की कमी लग रही है, आई एम देयर टू गाइड यू।
0: सच में बहनों, कैप्टन डॉक्टर सुनैना ने साबित कर दिखाया है कि देश सेवा सिर्फ वर्दी पहनने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज में हर संभव तरीके से सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी। पहनुक्रम आदि आबादी में अभी हम सुन रहे थे कैप्टन डॉक्टर सुनैना की सफलता की यात्रा, जो कि मजबूत इच्छा शक्ति और देश प्रेम का जीता जागता उदाहरण है और प्रेरणा है आधी आबादी के लिए। अब बहनों देखिए, बातें तो बहुत है, लेकिन अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, लेकिन जाने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको हमारा महिला जगत कार्यक्रम कैसा लगता है। बहनों, यदि आप हमारे साथ अपने कोई भी सुझाव या विचार साझा करना चाहती हैं, तो पत्रों के साथ साथ आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकती हैं। और बहनों, हमें मैसेज करने के लिए नोट करें हमारा मोबाइल नंबर, हमारा नंबर है 9457078288। और बहनों, पत्र लिखने के लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। और बहनों, इसी के साथ आज का महिला जगत कार्यक्रम संपन्न करने की प्रियंका त्यागी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 1:45 हो रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत लीजिए, अब सुनिए दीपा चौहान के गाए गढ़वाली लोकगीत।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं दीपा चौहान के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: दीपा चौहान के गाए इस गढ़वाली लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2 बजने को हैं। कुछ क्षणों में आप समाचार सुनेंगे, पहले अंग्रेजी में और उसके बाद हिंदी में।
1: Afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Center to set up fast track courts to ensure swift and stringent punishment for persons

0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for persons involved in paper leaks. Prime Minister Narendra Modi assures that protecting students' future remains government's top priority. Government ready to discuss any issue, including NEET, in Parliament, says Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. India calls for zero tolerance against terrorism at ASEAN ministerial meeting in Manila. India rejects Pakistan's remarks on the Indus Waters Treaty at UNSC, says treaty to stay in abeyance until cross-border terror ends. And Glasgow Commonwealth Games set to begin this evening, 125 Indian athletes to participate. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
2: आप जिस हिसाब से सदन में सरसास आते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, सदन ऐसे बाधित करेंगे ये ठीक नहीं है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
3: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी अपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा चर्चा हो सकता है क्या। आज तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
3: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
1: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
1: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
5: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित

0: कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
1: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजोर डान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश

0: कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एक ही संगीतकार में। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा में संगीतकार तो बहुत आए, लेकिन एक ऐसा नाम भी आया जिसने फिल्मी संगीत को शास्त्रीय संगीत की चाशनी में डुबोकर अमर बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीत के जादूगर लखनऊ की सरजमी से आए नौशाद अली साहब की। आइए आज के सफर में डूब जाते हैं नौशाद साहब की सुरीली दुनिया में और शुरुआत करते हैं साल 1952 की फिल्म बैजू बावरा के इस क्लासिकल सॉन्ग से जिसे राग दरबारी में पिरोया था नौशाद साहब ने।

वाह क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ और नौशाद साहब का संगीत जहाँ वाकई रोंगटे खड़े कर देता है श्रोताओं। दोस्तों, नौशाद साहब को बचपन से ही संगीत का ऐसा जुनून था कि वे फिल्मों के पीछे बजने वाले लाइव हारमोनियम को सुनने के लिए घर से भाग जाया करते थे, और जब वो मुंबई आए तो उन्हें फुटपाथ पर भी सोना पड़ा। लेकिन फिल्म रतन, जो कि 1944 में आई, उसी के साथ उनका भाग्य भी बदला, जहाँ इस फिल्म के गानों ने पूरे देश में धूम मचा दी थी। चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का वो गाना जिसने नौशाद साहब को रातों रात स्टार बना दिया।

वो रफ़ी साहब से इतनी मेहनत करवाया करते थे कि कई कई बार गानों की रिहर्सल हफ्तों चला करती थी। फिल्म कोहिनूर का एक गाना है जिसे गाने के लिए रफ़ी साहब ने और पर्दे पर अभिनय करने के लिए दिलीप कुमार साहब ने शास्त्रीय संगीत की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। आइए सुनते हैं राग हमीर पर आधारित ये बेहतरीन गीत जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया नौशाद ने।

मोहम्मद रफ़ी साहब को भी आपने सुना फिल्म कोहिनूर में। शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया नौशाद ने। श्रोताओं, नौशाद साहब की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने क्लासिकल रागों को आम जनता तक पहुंचाया। और जब बात नौशाद साहब की हो तो फिल्म मुगले आजम का जिक्र भला कैसे ना हो। इस फिल्म का संगीत तो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। संगीत प्रेमियों, आइए सुनते हैं मधुबाला पर फिल्माया और लता मंगेशकर की आवाज़ में सजा ये अमर गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म मुगले आजम में लता मंगेशकर को, शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया नौशाद साहब ने। श्रोताओं, सुरों के सुल्तान नौशाद साहब की यादों का सफ़र अभी जारी है, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashvaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।

इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम एक ही संगीतकार में। और हमारे आज के संगीतकार हैं नौशाद साहब। तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम के अंत में नौशाद साहब के जीवन से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा हम आपके साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे। साल 1944 में नौशाद साहब की फ़िल्म रतन आई थी, जिसका जिक्र अभी हमने किया भी था, और इस फिल्म का संगीत इतना ज़बरदस्त हिट हुआ था कि पूरे देश में इसके गाने गूंज रहे थे। इसी दौरान नौशाद साहब के पिताजी ने लखनऊ में उनकी शादी तय कर दी। क्योंकि उन दिनों फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए नौशाद साहब के पिता ने लड़की वालों से झूठ बोल दिया कि उनका बेटा मुंबई में दर्जी यानी टेलर का काम करता है और उनकी अपनी एक बड़ी दुकान है। नौशाद साहब को भी सख्त हिदायत दी गई कि वे वहाँ जाकर कोई भी ऐसी बात ना बताएं कि किसी को पता चले कि आप फिल्मों में म्यूजिक देते हैं। और जब नौशाद साहब दूल्हा बनकर अपनी बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुँचे तो वहाँ माहौल एकदम जादुई था। जी हाँ, लड़की वालों ने बैंड बाजे का शानदार इंतज़ाम किया था। जैसे ही बारात दरवाजे पर रुकी, बैंड वालों ने पूरे जोश के साथ धुन बजानी शुरू कर दी। और धुन कौन सी थी? अखियां मिला के, जिया भरमा के, चले नहीं जाना। और ये गाना किसी और का नहीं बल्कि खुद नौशाद साहब की सुपरहिट फिल्म रतन का था, जिसे जोहराबाई अंबाले वाली ने गाया था। अब नौशाद साहब सेहरा बांधे घोड़े पर बैठे थे, अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रहे थे और घबरा भी रहे थे। एक तरफ बैंड वाले उन्हीं की बनाई हुई जो है धुन वो बजा रहे थे और ससुर जी और साले साहब उस धुन पर खूब झूम रहे थे, और दूसरी तरफ नौशाद साहब को चुपचाप दर्जी बनकर बैठना पड़ रहा था। उनके ससुर तारीफ करते हुए कह रहे थे, वाह क्या गाना है, मुंबई की किसी फिल्म का है, आजकल बहुत चल रहा है। अब नौशाद साहब ने बाद में एक इंटरव्यू में हंसते हुए बताया भी था कि मैं अपनी ही शादी में सेहरे के पीछे मुंह छिपाए बैठा था, मेरा खुद का ससुर मेरी ही बनाई धुन पर नाच रहा था, मेरी तारीफ कर रहा था, लेकिन मुझे दर्जी समझ रहा था। अगर उस वक्त मैं सच बता देता कि ये गाना मैंने ही बनाया है तो शायद मेरी शादी उस वक्त टूट जाती और बारात वापस लौट आती। तो क्या ज़माना था, क्या बात थी नौशाद साहब की। और श्रोताओं, नौशाद साहब को दादा साहेब फाल्के और पद्म भूषण से भी नवाजा गया, लेकिन उनका असली अवार्ड वो मोहब्बत है जो आज भी उनके गानों को मिल रही है। साल 2006 में भले ही नौशाद साहब इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी धुनें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। अब इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आपको ले चलते हैं एक ऐसे म्यूजिकल ट्रैक पर जो आपको भावुक भी कर देगा। फिल्म का नाम है मदर इंडिया। आवाज़ लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और साथियों की है।

लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और साथियों के गाए फिल्म मदर इंडिया के इस गीत के साथ ही आज का यह कार्यक्रम एक ही संगीतकार अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 3 बज रहे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न हो रहे हैं। हमारी अगली प्रसारण सभा में शाम 4 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 4 बज रहे हैं। अगला कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आज हम एक और नए दिन की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। आज भारत के लिए एक और नया दिन, आज इस विश्व के लिए एक और नया दिन। नई उम्मीदें, नए ख्वाब या फिर नई चिंताएं, नए लक्ष्य, नई आवाज, नई पहचान, नया दिन, नई रात, नए लोग, नए विचार, और इन सब के पीछे भारत की वो नींव जो सदियों से कई करोड़ लोगों ने रखी। संदेश टू सोल्जर्स में हम बात करते हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के उन जवानों की, उन अफसरों की, जिन्होंने अपने शौर्य की गाथा गाने पर मजबूर कर दिया, देश के प्रति अपना योगदान, अपना समर्पण देने के लिए वो पीछे नहीं हटे। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम पर, महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 के वॉर हीरो, इंडियन एयरफोर्स के लेट विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम। कैनबरा की फ्लाइंग स्क्वाड्रन का हिस्सा थे, अफ्रीका के देश कांगो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा रहे। 1965 और 1971 की जंग में हमारे लड़ाकू विमान को उन्होंने दुश्मन की उस चालाकी, उस चुनौती के सामने ला खड़ा कर दिया और भारत के लिए विजयी परचम लहराया। आज हम फिर से गाथा गाएंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स की, जिसके साथ न जाने कितने टेक्निशियंस, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ और जामास पायलट इसका हिस्सा है। द इंडियन एयरफोर्स।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हम बात कर रहे हैं लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की महावीर चक्र से जो सम्मानित किए गए। इसके साथ साथ उन्हें वायुसेना मेडल भी दिया गया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, वक्त है अपने वॉर हीरो से अपने देशवासियों को मिलाने का, इसीलिए संदेश टू सोल्जर्स में हम लेकर आए हैं कहानी नहीं बल्कि हकीकत विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। इनका जन्म 23 जुलाई 1933 को इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी थी इनकी फैमिली, इनका परिवार। आपके पिता श्री नीलकंठ पद्मनाभ एक जाने माने फिजिसिस्ट थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे और अहिल्याबाई होलकर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके थे। माँ भी एक अकम्प्लिश एजुकेटर थी और एजुकेशन की फील्ड में काफी देर तक जुड़ी नहीं और रिटायर हुई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऐसी एक समृद्ध पढ़े लिखे परिवार से पद्मनाभ गौतम आगे निकल कर आए और फिर इंडियन एयरफोर्स की 16 स्क्वाड्रन के साथ जा जुड़े। इनकी कहानी अगर वॉर की बात की जाए तो शुरू होती है 1965 की लड़ाई के साथ, लेकिन हम इनके साथ सबसे पहले 1961 की कहानी बताना चाहेंगे जहां उन्हें एक अहम इंटरनेशनल मिशन के लिए चुना गया, कांगो में यूनाइटेड नेशंस का पहला भारतीय संचालित शांति रक्षा अभियान। 6 दिसंबर 1961 को उन्हें काटंगा में कोल वेजी एयरफील्ड पर हमला करने के लिए कहा गया, जो एक बहुत ही जरूरी और जोखिम भरा मिशन था। ये एक अहम रणनीतिक बेस था जिस पर काटंगा की सेनाओं का कब्जा था। इस एयरफील्ड का इस्तेमाल यूएन की जमीनी टुकड़ियों पर हवाई हमले करने के लिए किया जा रहा था। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स शांति बनाए रखने के लिए चल रहे अभियानों की सफलता पर गंभीर रूप से इसे देख रही थी और जो पीस मिशन चल रहा था वहां पे यह खतरा मंडरा रहा था। ये टास्क इंडियन एयरफोर्स की उस टुकड़ी को दिया गया जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के साथ कांगो में डेप्यूटेशन पर थे। उस दिन जिस दिन हमला होना था, बेहद खराब मौसम और दुश्मन की जबरदस्त गोलीबारी का सामना करने के बावजूद, तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहे गौतम पद्मनाभ गौतम ने असाधारण साहस और उड़ान कौशल का प्रदर्शन देते हुए भारी सुरक्षा वाले एयरफील्ड पर बहुत सारी बमबारी की और ये था लो फ्लाई मिशन। हमले के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक एक फोगा विमान को भी नष्ट कर दिया एयर टू एयर कॉम्बैट में।

एयर टू एयर कॉम्बैट के बाद लो फ्लाइंग मिशन था, जहां पर बहुत सारे कैनन जो हैं वो दागे जा रहे थे। जो जहाज पद्मनाभ गौतम उड़ा रहे थे वो था कैनबरा, और भारी गोलाबारी के बीच में लो फ्लाई करते हुए उन्होंने टारगेट अचीव करना था।

एक फौगा विमान जो यूनाइटेड नेशंस की जमीनी सेनाओं को लगातार परेशान कर रहा था, उसको शांत करना बहुत जरूरी था। फौगा विमान को बेकार करने के अलावा तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने जमीन पर खड़े कटंगा के तीन अन्य विमानों को भी बेकार कर दिया और एयरफील्ड पर अब निशाना साधने लगे।

दुश्मन के एयरफील्ड पर इस तरह का हमला करना, जाहिर सी बात है कि नुकसान बहुत भारी। इससे दुश्मन के ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त झटका लगा और फिर जो होना था वो हुआ, यानी दुश्मनों के हौसले जो थे वो परास्त कर दिए गए। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम को एलिजाबेथ विले के ऊपर कई और सफल उड़ानें भरने के लिए कहा गया और कटंगा की सेनाओं के साथ भीषण लड़ाई में उलझी यूनाइटेड नेशंस की जमीनी टुकड़ियों को करीबी हवाई सहायता प्रदान करने के लिए और मिशंस दिए गए। उनके सटीक और समय पर किए गए हवाई हमलों ने जमीनी अभियानों को सफल बनाने और दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इन अभियानों के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने असाधारण बहादुरी, पेशेवर उत्कृष्टता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया और अक्सर विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया। उनके कार्यों ने यूएन सेनाओं की ऑपरेशनल सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय वायुसेना का मान बढ़ाया। दुश्मन की कार्रवाई का सामना करते हुए उनकी असाधारण बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के सम्मान में तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम को वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर और उसके बाद विंग कमांडर बनने की कहानी और उसके बाद आने वाली बड़ी चुनौतियां, क्योंकि 1961 के बाद जब भारत के लिए लड़ने के लिए उन्हें अपने मिग फाइटर्स और कैनबरा फाइटर्स उड़ाने पड़े तो वो भीषण युद्ध था। पाकिस्तान और भारत का भीषण युद्ध, 1965 वॉर, जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स तब भी तैयार थी। क्या हुआ विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के साथ?

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में, महावीर चक्र से सम्मानित। 1965-1971 जंग के जांबाज इंडियन एयरफोर्स के पायलट। इससे पहले कि हम उनकी शौर्य गाथा आगे आपको सुनाएं, एक नजर डालते हैं अपने वॉर हीरो के बचपन की। पद्मनाभ गौतम वो तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे और अपने दो छोटे भाइयों अशोक और अजीत के साथ उनका गहरा लगाव था। कम उम्र से ही विंग कमांडर गौतम में एक मकसद और सेवा भाव की भावना दिखाई देती थी। इसी कर्तव्य भावना के कारण वो जॉइंट सर्विसेज विंग, जो आज की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसका एक शुरुआती रूप था और तब देहरादून में स्थित थी। इस एकेडमी के तीसरे कोर्स में वो शामिल हुए। उन्होंने बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर 60वें पायलट कोर्स के हिस्से के तौर पर अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की और 1 अप्रैल 1953 को भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। अपनी शुरुआती ऑपरेशनल पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से उस दौर के कुछ सबसे मशहूर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे स्पिटफायर और वैम्पायर, ऐसे जहाज उड़ाए। बाद में वो डिसॉल्ट तूफानी एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले स्क्वाड्रन में चले गए, जिससे कई तरह के एयरक्राफ्ट पर उनके लंबे और शानदार फ्लाइंग करियर की शुरुआत हुई। उनके

नेतृत्व और सिखाने की क्षमता को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 1956 में उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में ट्रेनिंग के लिए चुना। 1957 और 1958 के बीच उन्होंने जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने युवा कैडेट्स को हार्वर्ड एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग दी और अपनी सिखाने की कला और तकनीकी दक्षता को और बेहतर बनाया। 1958 में आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट यानी JBCU में खास ट्रेनिंग लेने के बाद वो कैनबरा जेट बॉम्बर पर चले गए। यहीं से बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में उनकी विशेषज्ञता की शुरुआत हुई। उनके बढ़ते अनुभव के कारण उन्हें एक इंटरनेशनल असाइनमेंट भी मिला और उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर इराक भेजा गया, जहां उन्होंने MiG-15 और MiG-17 एयरक्राफ्ट उड़ाए और इराकी वायुसेना की ट्रेनिंग और क्षमता बढ़ाने में अहम योगदान दिया। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में।

कहते हैं अगर एयरफोर्स में आना हो तो एक जज्बा होना चाहिए। कुछ देर पहले हमने बताया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम, और कांगो में स्थित यूएन पीस कीपिंग फोर्स को उन्होंने किस तरह से वायुसेना के वो मदद प्रदान की जिससे मिशंस सक्सेसफुल हुए। ट्रेनिंग, फाइटर क्राफ्ट्स, और उसके बाद 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग। पाकिस्तान ने विदेशी एयरक्राफ्ट्स लेकर, टैंक्स लेकर एक चुनौती पेश करनी चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ। इंडियन एयरफोर्स के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे पायलट्स रात दिन रैनक मिशन्स में जाने

एक समय था जब भारत दोस्ती का हाथ विश्व भर में हर देश के साथ दोस्ती का वो प्रस्ताव लेकर जाता था। कई जगह ये सोचा गया कि भारत कमजोर देश है, इसलिए शायद दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन जिसने भी भारत से दोस्ती की, भारत का हाथ पकड़ के, उस देश को मालूम पड़ा कि इस हाथ में बहुत ताकत है और केवल ताकतवर इंसान ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर वो दोस्ती वाला हाथ मुट्ठी में बदल गया तो देश की ताकत, देश की असली ताकत वो सबके सामने आ जाएगी। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की बात हम कर रहे हैं और उनके शौर्य की गाथा गाते हुए हम 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई की तरफ चलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर वो आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट में वापस आ गए थे। जब लड़ाई शुरू होने के आसार थे तब वो कमांडिंग ऑफिसर थे और उनकी शानदार लीडरशिप में JBCU यानी जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट ने, जो असल में ट्रेनिंग यूनिट थी, लड़ाई में एक फ्रंट लाइन ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की तरह जोश और प्रोफेशनलिज्म के साथ हिस्सा लिया। यूनिट ने डीप पेनिट्रेशन बॉम्बिंग मिशन और सटीक टारगेट मार्किंग जैसे कामों में खुद को साबित किया। पाकिस्तान के पास उस समय सेबर जेट्स थे जिसके गुणगान वो गाया करता था, लेकिन विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम ने और उनकी टीम ने ऐसे काम किए जो बहुत ज्यादा हुनर और हिम्मत की जरूरत मांगते थे। उन्होंने खुद

गौतम ने ऐसे मिशंस किए जो बहुत असरदार थे। कहते हैं कि उनके मिशन इतने असरदार थे कि पाकिस्तान के मिलिट्री इतिहासकार भी उनकी बहादुरी और असरदार काम को अनमने ढंग से ही सही लेकिन सम्मान के साथ मानते थे। 1965 वॉर के ऑपरेशन के दौरान उनकी निडर लीडरशिप और जबरदस्त बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

एक ऐसा मिशन जो सिर्फ कैनबरा के जहाज ही कर सकते थे। कहते हैं भारत के पास उस समय कैनबरा के जहाज थे जो एक बहुत ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के ठिकानों की रिकॉनसा मिशन में फोटोग्राफी करके यहां अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी मददगार साबित होते थे। मिशन्स तो लो फ्लाइंग बॉम्बिंग के लिए भी पद्मनाभ गौतम ने किए हैं।

भारत के बहुत सारे अटैक्स रात में किए जाते थे, और रात में अटैक करना प्रिसिजन यानी सटीकता मांगते थे। सेबर जेट सुपरसोनिक जहाज थे जिनका सामना इंडियन एयरफोर्स को करना था, और हर बार कोई ना कोई नया प्लान बनाकर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को चौंका रही थी। और उसी के बीच में पेशावर पे अटैक करके पद्मनाभन गौतम और उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की।

1965 और वो एक ऐसा दौर जहां हम में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे। पैटन टैंक और सेबर जेट का डर दिखाकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश नाकाम रही। इंडियन एयरफोर्स के नैट फाइटर्स सुपरसोनिक साबर को चुनौती देने के लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड में रात के अंधेरे में घूमते रहते थे, और जब भी सेबर जेट सरहद पार करके हमारे देश की तरफ आते थे तो उस हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे उतरते हुए एक एक्स्ट्रा स्पीड गेन करते हुए वो फायर करते थे। और वैसे ही कैनबरा और मिंग्स इस सुपरसोनिक जहाज का सामना करके उसे नष्ट कर रहे थे। ग्राउंड पर वॉर चल रही थी जहां इंडियन आर्मी एक बहुत घातक युद्ध लड़ रही थी। असल उत्तर का वो बैटलफील्ड जहां की रिकॉनसॉम मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी पोजीशन

सही ब्यौरा दिया। एक ऐसा बाटू जहां खून की होली खेली गई। ये खून की होली जमीन पर खेली गई थी, जहां हमारे बहुत सारे जाबाज सिपाही डटे रहे। गोलियां चलती रहीं और वो गोलियों को सीने पर लेते रहे। लेकिन मजाल है कि एक इंच भी उनका पैर पीछे पड़ा हो। वो दौर भीषण युद्ध का दौर था। भारत ने उस चुनौती को सामना किया और इंडियन एयरफोर्स ने जहां जहां हो सका वहां मदद पहुंचाई।

आज हम संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 की लड़ाई के इंडियन एयरफोर्स के हीरो, साथ ही साथ 1965 में शहीद हुए उन सैनिकों को भी याद करते हैं आज यहीं पर। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की जन्मतिथि है, इसलिए विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में उनको समर्पित है।

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम याद कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को, महावीर चक्र से सम्मानित। और हमने बताया कि किस तरीके से 1965 के युद्ध में भी जेट बॉम्बर कन्वर्शन यूनिट को कमांड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर। लेकिन आगे चल के उनका इंतजार कर रही थी 1971 की भारत पाकिस्तान की एक और जंग। उस समय वो विंग कमांडर गोरखपुर से ऑपरेट करने वाले 16 स्क्वाड्रन की कमान संभाल रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम बन गए। स्क्वाड्रन ने पूर्वी मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई, जहां भारतीय सेना ने बहुत तेजी से और निर्णायक जीत हासिल की। उनकी लीडरशिप में 16 स्क्वाड्रन ने दुश्मन के इलाके में बहुत जोखिम वाले बॉम्बिंग मिशन पूरे किए, जिससे पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। रणनीतिक सटीकता और हिम्मत के साथ किए गए इन साहसी ऑपरेशन ने युद्ध में भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। 1971 की लड़ाई के दौरान उनकी बेहतरीन सेवा और बेमिसाल बहादुरी के लिए विंग कमांडर गौतम को उनके महावीर चक्र के साथ बार से सम्मानित किया गया। वे भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह दुर्लभ सम्मान पाने वाले केवल 2 अधिकारियों में से एक बने। युद्ध के बाद 1972 की शुरुआत में विंग कमांडर गौतम को एयरफोर्स स्टेशन पूना, जो अब लोहेगांव के नाम से जाना जाता है, ऑफिसर इंचार्ज फ्लाइंग के तौर पर तैनात किया गया। 25 नवंबर 1972 को MiG-21 में एक रूटीन उड़ान के दौरान एक दुखद घटना घटी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान में फ्लेम आउट हुआ, यानी उड़ान के दौरान इंजन का फेल होना, जिससे उनके पास इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग की कोशिश करने के अलावा और कोई चारा न बचा। विमान और खुद को बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद जबरदस्ती लैंडिंग के दौरान उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और कुछ ही देर बाद वो शहीद हो गए। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक रहे हैं। उनका करियर असाधारण साहस, अटूट समर्पण और देश सेवा के प्रति पक्के संकल्प से भरा रहा। 1965 और 1971 दोनों युद्ध के दौरान उन्होंने बमबारी के अहम मिशनों को नेतृत्व किया, जिन्होंने दुश्मन के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया और भारत के पक्ष में निर्णायक बढ़त दिलाई। उनके निडर कारनामे, खासकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर किए गए ऑपरेशन, आज भी हमारे जांबाज पायलट्स को बहुत इंस्पायर करते हैं। वो लड़ाई हो 1965 की, 71 की, कारगिल युद्ध हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन एयरफोर्स खड़ी है डटकर उस तिरंगे के लिए, आपके लिए, हमारे लिए।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हमने आप सबको रूबरू कराया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, महावीर चक्र से सम्मानित भारत के जांबाज पायलट से 16 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की, और आज उनकी जन्मतिथि है, इसीलिए आज का संदेश टू सोल्जर्स समर्पित किया हमने विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को। आशा करते हैं आकाशवाणी की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। ये कहानी हमने इसलिए सुनाई क्योंकि याद है ना वो अल्फाज, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त जसवंत सिंह। श्रोताओं इस कार्यक्रम में हम हर दिन अलग अलग जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं जिससे आप लाभान्वित होते हैं और इसी क्रम में आज हम बातें करेंगे पशुपालकों के लिए सरकार की 2 अहम योजनाओं के विषय में। जी हाँ श्रोताओं, एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन और दूसरी है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। इन दोनों विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। श्रोताओं RGM यानी राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत दिसंबर 2014 में हुई थी। इस योजना को शुरू किया गया था भारत सरकार के मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। श्रोताओं इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना, किसानों को संपन्न करना, देश को सशक्त करना और विकसित करना। इसके लिए अच्छी प्रजातियों की गाय और भैंसों को पालने का कार्य किया जाता है, विशेष रूप से जो स्वदेशी नस्ल के दुधारू पशु हैं उनका संवर्धन किया जाना और उनका संरक्षण किया जाना, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। श्रोताओं इसके माध्यम से देश का दुग्ध उत्पादन बढ़ रहा है, किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि हो रही है। इसी मिशन के तहत जगह जगह पर गोकुल ग्राम यानी नस्ल संवर्धन केंद्रों की स्थापना भी की जानी है। इसके कारण अच्छी गाय और भैंस की स्वदेशी नस्लों का विकास होगा और उनका वैज्ञानिक संरक्षण भी होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देसी मवेशियों की अनुवांशिक

में भी सुधार किया जा रहा है। इतना ही नहीं श्रोताओं, आरजीएम के तहत जो पशुपालक नस्ल संवर्धन फॉर्म खोलते हैं उन्हें पूंजीगत लागत पर सब्सिडी भी मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है। पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे देसी प्रजाति के मवेशियों का संवर्धन और संरक्षण करें। जो किसान या पशुपालक राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सराहनीय कार्य कर रहे हैं उन्हें व्यवसायिक लाभ तो हो ही रहा है, साथ ही ऐसे किसानों और पशुपालकों को सरकार द्वारा गोपाल रत्न और कामधेनु जैसे सम्मान से भी सम्मानित किया जा रहा है। तो श्रोताओं, वास्तव में राष्ट्रीय गोकुल मिशन छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को भी आजीविका के आधार पर सशक्त कर रहे हैं। श्रोताओं, ये तो बात हुई राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, और आइए अब जान लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के विषय में। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी वर्ष 2014 में ही हुई थी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा संचालित ये प्रोग्राम वास्तव में एक केंद्रीय योजना है। वर्ष 2021 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसका उद्देश्य भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है, किसानों और पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। एनपीडीडी यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, इससे लघु एवं सीमांत किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ पहुंचता है। उनकी आय बढ़ती है, उनका परिवार खुशहाल होता है, उनके घर में दूध की मात्रा बढ़ जाती है और दूध की गुणवत्ता सुधार के लिए भी इस योजना के कई घटक हैं श्रोताओं। जैसे घटक एक में डेयरी का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है और घटक बी में सहकारिता के माध्यम से दुग्ध डेयरी का विकास किया जाता है। और वैसे भी श्रोताओं, सहकारिता के भाव से किसी भी कार्य को किया जाए तो निश्चित ही उसके परिणाम सुखद होते हैं। श्रोताओं, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक डेयरी उपकरणों और प्रयोगशालाओं के माध्यम से गुणवत्ता को सुधारा जाता है। इतना ही नहीं, बाजारों तक किसानों की पहुंच को सरल बनाया जाता है। दूध उत्पादक किसानों का या पशुपालकों को संगठित बाजारों से जोड़कर दूध की बिक्री को बढ़ाने के लिए ये योजना बहुत ही कारगर है। तो श्रोताओं, जो किसान इस योजना के तहत डेयरी खोलना चाहते हैं उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन और व्यय धनराशि पर सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। श्रोताओं, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम आम जन के लिए भी लाभप्रद है। इससे उन्हें भी लाभ मिलता है जो सामान्य पशुपालन करते हैं, मतलब जो पशुपालक एक या दो गाय या भैंस पालते हैं उन्हें भी अच्छी नस्ल की दुधारू गायें और भैंस पालकर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के माध्यम से लाभ पहुंच रहा है। इसका अधिक और अधिक जानकारी लेने के लिए श्रोताओं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की वेबसाइट का भी अवलोकन किया जा सकता है। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई आज के जो सरकारी योजनाओं के विषय में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हुए हैं। अब सुनिए जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, आज रात 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा। रात 9:30 पर कार्यक्रम कंट्री वाइड और इनसाइट्स। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत आज के क्रम होंगे, बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, नॉन फिल्मी चार्ट और गुफ्तगू बस यूं ही। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शगुन की सना से बातचीत। किसान श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर चर्चा का विषय होगा, बरसात में पशुओं का आवास प्रबंधन। साथ ही कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे एक नाटक चकबंदी, आलेख अंकित कुमार का, निर्देशक होंगे अंकित सैनी और प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रीपाल सांगवान की वार्ता। इस वार्ता का विषय रहेगा लोक संस्कृति के प्रसार में आकाशवाणी। शाम 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे साकिब अक्कासी और साथियों की आवाज में कव्वालियां। रात 10:00 आप सुनेंगे उपेंद्र नाथ अश्क का लिखा नाटक लक्ष्मण रेखा, निर्देशक सत्येंद्र शरत और प्रस्तुति सहयोग होगा सुदर्शन कुमार का। फिल्मी गीतों का आनंद

आज ले सकते हैं शाम 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत में, रात 8:15 पर कार्यक्रम गीत संध्या के अंतर्गत, रात 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और रात 10:30 पर पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइश कार्यक्रम आप सुनेंगे, आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, आइए आपको बता दें, कल यानी 24 जुलाई 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में कल रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, और कल रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कल सुबह 9:15 पर हमारे लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की हलचल। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी कथा आप सुनेंगे कल प्रातः 6:45 पर। हमारे दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में कल सवेरे 7:31 पर जानकारी के विषय होंगे अर्थ ओवरशूट डे, आयकर दिवस का इतिहास और महत्व, और सही करियर का चुनाव कैसे करें। कल सवेरे 10:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता आप सुनेंगे, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल विषय रहेगा बाढ़ से पहले और बाद की तैयारी। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे कल दोपहर 11:30 पर। एक और प्रायोजित कार्यक्रम दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे हमारी बेड़िया। कल दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे कृषि निर्यात लाइव चौपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। सुवेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह के संयुक्त संचालन में आप सुनेंगे ग्राम पंचायत फफूंदा ब्लॉक व तहसील मेरठ में आयोजित कृषि निर्यात लाइव चौपाल की बातचीत। कल दोपहर 12:15 पर हम आपको सुनाएंगे कार्यक्रम घर संसार। इसके अंतर्गत चर्चा का विषय होगा स्वस्थ आहार और संतुलित जीवन, और साथ ही जानकारी देंगे समय का सदुपयोग विषय पर। तो श्रोताओं, ये थी आज और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग लिसनर्स,
1: स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में।
0: मैं हूँ आपकी सगी दोस्त और आज की वन ऑफ द होस्ट नंदिनी, और मेरे साथ हैं बिल्कुल चहकती सी आवाज वाली साथी।
1: बिल्कुल हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सना सिद्दीकी, और आज बात है एहसास की।
0: आह, पर ये तो बताओ कौन से एहसास की?
1: मोहब्बत के एहसास की नंदू।
0: ओके, मतलब लव स्टोरी का अनाउंसमेंट कर रही हो तुम, है ना? हाँ, तो दोस्तों आज होगा फोर्थ।
1: नहीं रे, लव स्टोरी तो जाएगी पर थोड़ी देर में। तुम फिलहाल मोहब्बत की चादर से बाहर तो आओ।
0: हाँ, तो तुम भी तो फिर साफ साफ बताओ।
1: बात है एहसास की, लिसनर्स के प्यार की, रेडियो के कार्यकाल की और प्रसारण के इतिहास की।
0: इतिहास को करीब 100 साल हो जाएंगे 2027 तक। जी, आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे।
1: दोस्तों आज के दिन यानी 23 जुलाई 1927 को मुंबई से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने देश का पहला संगठित रेडियो प्रसारण शुरू किया।
0: कई कटाई छटाइयों के बाद आधिकारिक तौर पर नाम बना आकाशवाणी,
1: विच लिटरली ट्रांसलेट टू वॉइस ऑफ स्काई। हाँ, क्योंकि लोगों की आवाज रही है, लोगों के लिए रही है, नारा ही है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
0: रेडियो ने आजादी के दौर में ज्वलंत हथियार बनकर सबके हक को ख्वाहिश से हाथ

0: तक उसके सफर में साथ दिया और आज भी जनहित सबसे ऊपर है।
1: टू एजुकेट, टू इन्फॉर्मेट एंड टू इंटरटेन।
0: एंड टू इंक्लूड ऑल ऑफ यू, आज हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं, यानी कि आपको हमारे साथ कार्यक्रम में लाइव शामिल कर रहे हैं। जी, आप हमें रेडियो से जुड़ी अपनी यादें, कुछ किस्सा या कोई भी एक प्यारी सी दुआ भी आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर। साथ ही आप हमारी फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो आपके मैसेजेस का, आपके प्यार का और आपकी रेडियो से जुड़ी यादों का रहेगा हमें इंतजार।
1: बिल्कुल,
0: कीजिए आप मैसेज और हम करते हैं वो जो हमेशा रूटीन रहा है प्रोग्राम की शुरुआत का,
1: यानी दोस्तों अब वक्त है बूझो तो जाने के सवाल का।
0: सवाल रहेगा, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है?
1: इसका सही जवाब आपको देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद पर जाकर।
0: अब हम करते हैं एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी पूरी विद सम म्यूजिक नॉन फिल्मी, यानी कि शाम का पहला खूबसूरत गीत आपके लिए हाजिर है।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे भाई, तेरा बीवी से जो झगड़ा चल रहा था वो खत्म हुआ या नहीं?
4: अरे जलवा है तेरे भाई का।
3: अच्छा जी, ऐसा क्या कर दिया?
4: अबे घुटनों पे चल के आई थी मेरे पास, घुटनों पे।
3: क्या बात कर रहा है, हमें भी सिखा दे यार थोड़ी बहुत ट्रिक।
4: ए, शेरों की बात है, यूं ही समझ में नहीं आती, देखा।
3: चल बताना फिर क्या बोली।
4: बोल रही थी पलंग से बाहर आ जाओ, अब नहीं मारूंगी।
1: जी हाँ, मजा आ गया।

0: संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। साथ बनी हूँ मैं नंदिनी और मेरे साथ हैं सना।
7: इतना डिटेल में दोबारा इंट्रो नंदिनी, हमारे दोस्त पहचानते हैं हमें।
6: पहचानते तो हैं, पर सना हमेशा खुद को बेहतर बनाना चाहिए और बेहतर बनाना चाहिए ताकि पहचान परफेक्शन की छाप बन जाए।
7: क्या बात है, जरा मैं भी तो खुद की जान बढ़ा दूं। दोस्तों हर दिन खास होता है, बस उस खासियत को महसूस करने की जरूरत है। कभी ये खासियत बड़ी उपलब्धियों में नजर आती है, कभी छोटे छोटे लम्हों के सुकून में। आज हम भी करेंगे कुछ नई खास, क्यों नंदिनी?
6: क्या कहने, परफेक्शन की नानी बुला ली तुमने तो।
7: नानी को छोड़ो, नंदिनी क्या कहती है?
6: आप ही की बात बढ़ा लेते हैं मैडम, और हमारे लिसनर्स को भी। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बेहतरी पर, आप खुद को कैसे बेटर कर सकते हैं।
7: इसका तो एक ही तरीका है नंदू, अपने फ्लॉज, अपनी कमियों को एनालाइज करें और सुधार लाएं। हाँ, अब सुधार के टूल्स अलग हो सकते हैं।
6: हो सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल एक गोल सेट करें कि अगर मैं पूरा महीना सुबह 7 बजे 6:30 बजे उठकर जॉगिंग पर जा पाया तो मंथ एंड में एक छोटी सी हॉलिडे पर जाऊं, किसी हिल स्टेशन के पास जाऊंगा, कोई कॉफी पीऊंगा, इससे वो रिवॉर्ड वाली जो आदत है वो परमानेंट हो जाएगी।
7: या फिर दोस्तों आप

0: सी ऐसी बात है जिसके कारण वो ना ट्रिगर हो जाती है, बात जिस पे डांट पड़ जाती है, तो उस टॉपिक को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होकर ध्यान रखिए कि मेरे से फाइल गिर जाती हैं या मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाता हूँ, या फिर अगर आपको सोल्यूशन नहीं भी मिल रहा है तो अपने हेड से बात कीजिए कि भाई मेरे साथ ये परेशानी है, इसलिए अक्सर हमारी डांट पड़ती है या हमारी तू-तू मैं-मैं होती है। हो सकता है वो भी अपने रवैयों में कोई सुधार लाए, आपका टीचर या आपका बॉस।
1: बिल्कुल, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो किसी ना किसी तरह से सॉल्यूशन मिल ही जाता है, कोशिश की बात है, खुद को बेहतर बनाने की बात है।
0: और ये ना हेल्दी भी है, फिर इसमें जेलेसी वाली भावना नहीं आती कि अपने आप से कम्पीट करें तो अपने आप को ही बेटर बनाएंगे, अपने आप को ही देखेंगे, और कंपटीशन खुद से होगा तो खामियों पे नजर होगी और दूसरों की चीजों पर नहीं।
1: बिल्कुल नंदू, वैसे अब हमने इतनी गुफ्तगू कर ही ली है, तो क्यों ना थोड़ी सी गुफ्तगू और कर ली जाए।
0: मैंने तो यार बहुत कुछ कह दिया है, अब मैं चाहूंगी कि तुम हमारी किसी स्पेशल साथी से बात करो। देखो स्पेशल तो सारे लोग होते हैं, लेकिन आज जो जिनसे शायद तुम गुफ्तगू करने के मूड में हो वो कुछ ज्यादा स्पेशल है,
1: बिल्कुल नन्नी,
0: तो कराते हैं सना की गुफ्तगू हम।
1: कुछ बातें दिल की, कुछ यादें पुरानी, कुछ हंसी के पल, कुछ शामें सुहानी, इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर हम आ गए हैं आपके बीच, हमारे प्यारे से सेगमेंट गुफ्तगू बस यूं ही में। दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बातें अक्सर किसी किताब में नहीं बल्कि लोगों के अनुभवों में मिलती हैं, और आज हमारे साथ एक ऐसी ही प्यारी श्रोता जो अपनी बातें, अपने एहसास और कुछ यादगार लम्हे हमारे साथ शेयर करने आई हैं। तो आइए स्वागत करते हैं उनका और जान लेते हैं उनसे उनका नाम।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शगुन वर्मा।
1: तो शगुन, कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप हमारे इस सेगमेंट गुफ्तगू बस यूं ही में हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आपको कैसा लग रहा है?
2: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके।
1: शगुन, आप स्टडी में क्या कर रही हैं अभी?
2: दी, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ BA।
1: BA,
2: जी, रमा जैन इंटर कॉलेज से।
1: और आपकी 12th कहाँ से हुई है?
2: MDKV इंटर कॉलेज।
1: तो आपका क्या एम है, मतलब आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहती हैं?
2: दीदी, मैं प्रोफेसर टीचर बनना चाहती हूँ।
1: टीचर बनना चाहती हैं? यू मीन
2: जी
1: आप आगे चलकर बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं?
2: जी
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप टीचर बनना चाहती हैं। तो आपके माइंड में आइडियाज हैं कि आप बच्चों को आगे चलकर किस हिसाब से पढ़ाई करा सकती हैं, मतलब फन वे में कराएंगी या फिर स्ट्रिक्ट वाली टीचर बनेंगी या कैसे?
2: नहीं, फन वे में कराऊंगी, क्योंकि जब माइंड आपका अच्छा होगा तो आप पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और अगर आप हम स्ट्रिक्ट से पढ़ाएंगे बच्चों को तो ना तो वो पढ़ पाएंगे और ना ही कुछ समझ पाएंगे।
1: हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उन्हें प्यार ज्यादा समझ आता है। तो आप ये बताइए कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं?
2: मेरी हॉबीज सिंगिंग, आर्ट, डांसिंग।
1: डांसिंग? तो कह सकते हैं कि फिर तो आपने अपने स्कूल में काफी प्रोग्राम्स किए होंगे।
2: जी, बहुत सारे किए हैं और जिसमें मुझे प्राइज भी मिले हैं।
1: तो अपना कोई ऐसा प्रोग्राम बताइए कि जिसको आपका मन ना हो या फिर बहुत इंसिस्ट करके करा हो आपने।
2: हाँ, मतलब बचपन में फर्स्ट टाइम जब किया था, वैसे तो कई मतलब एक्टिविटी वगैरह बहुत सारी की हैं, पर जो सबसे पहले मैंने डांस किया था वो आई थिंक 3rd या 4th क्लास में किया था, जिसमें मतलब मैम ने भी बोला था कि तुमने बहुत अच्छा किया है और हमारा ग्रुप भी सब फर्स्ट आया था।
1: गुड। तो इसी के साथ आपने बताया था हमें शगुन कि आपकी जो हॉबीज हैं उसमें एक सिंगिंग भी है,
2: जी
1: तो आप सिंगिंग करती हैं या?
2: जी दीदी, करती हूँ, जिसमें कि मुझे प्राइज भी मिला है कई बार।
1: तो क्या आप हमें और हमारे लिसनर्स को कुछ सुनाना चाहेंगी?
2: जी बिल्कुल।
1: ठीक है।
2: अच्छा।

0: मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। शगुन, आप हमें ये बताइए कि कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आप अपना पूरा दिन बहुत आराम से गुजार सकती हैं?
1: हाँ, मेरी दीदी हैं जिनके साथ मैं पूरा दिन बिता सकती हूँ अपना, क्योंकि उनके साथ मस्ती मजाक करके, थोड़ा लड़ झगड़ के, उनसे अपनी बातें शेयर करके मन हल्का हो जाता है अपना। मतलब
0: मतलब आप अपने पूरे दिन की बात अपने दीदी से शेयर करती हैं?
1: हाँ,
0: वेरी गुड। वैसे शेयर करना अच्छा होता है। तो शगुन, आप ये बताओ कि अगर आपको एक दिन के लिए अपनी कहीं मनपसंद जगह जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाओगी?
1: मैं दीदी वृंदावन जाना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरा सबसे मनपसंद प्लेस है।
0: आपकी ऐसी कौन सी छोटी सी खुशी है जो आपको पूरा दिन अच्छा कर सकती है?
1: मेरे मम्मी पापा की एक स्माइल जो कि वो मेरी वजह से आई हो।
0: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने शगुन, के मम्मी पापा के फेस पर स्माइल देखना, वो भी हमारी वजह से आई हो, तो वो बहुत एक कह सकते हैं दिल को छू जाने वाली और दिल को सुकून
1: जी
0: देने
1: दीदी,
0: वाली बात
1: बिल्कुल।
0: होती है। तो आप मम्मी के हाथ का खाना ज्यादा पसंद करती हो या फिर जैसे आजकल के बच्चे हैं जंक फूड ज्यादा पसंद करते हैं, स्ट्रीट फूड पसंद करते हैं, तो आप कौन सी फूडी हो, घर की या फिर बाहर वाली,
1: दोनों
0: दोनों? ज्यादा क्या खाती हो?
1: मतलब बाहर का तो ज्यादा पसंद है, पर मम्मी बोलती है कि तबीयत खराब हो जाएगी तो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तो बाहर का भी और मम्मी के हाथ का भी।
0: तो आपको कौन सा मौसम पसंद है, जैसे अभी ये गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा ये वाला, या फिर ठंडी ठंडी हवाएं जो सर्दियों में चलती हैं वो?
1: ठंडी ठंडी हवाएं, क्योंकि गर्मी में चिपचिप बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको मोबाइल के बिना एक दिन रहना पड़े शगुन, तो क्या आप रह पाएंगी?
1: जी बिल्कुल,
0: मतलब आप फोन नहीं चलाती?
1: बहुत कम। पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाना, फिर आना, पढ़ाई करना, थोड़ा मम्मी के साथ हाथ बटाना।
0: मतलब आप घर के काम भी करती हैं,
1: हाँ जी
0: तो
1: बिल्कुल,
0: आपको कुकिंग भी आती होगी? क्या
1: हाँ बिल्कुल।
0: क्या बना लेती हैं?
1: मैं घर का खाना भी बना लेती हूँ, और ढोकला है, इडली सांभर हो गया, और डोसा, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो कर लेती हूँ अच्छी।
0: तो ये बताइए शगुन कि आप हमें कब खिला रही हैं?
1: आप जब भी कहें आप मुझे बता दीजिएगा।
0: तो आपको जो आप बनाती हैं, जो आपने बताया जैसे कि ढोकला हुआ, इडली सांभर हुआ, तो आपको कौन सा पसंद है अपने हाथ का?
1: मुझे सबसे ज़्यादा ढोकला अच्छा लगता है अपने हाथ का, और मेरे मतलब कजिन्स को, सभी को, मेरे मामा जी को भी, मैं जब भी जाती हूँ अपने मामा के यहाँ पे तो वो ज़रूर बनवाते हैं कि तू मुझे शगुन बना के खिला।
0: तो शगुन, आप हमसे और हमारे लिसनर्स से चलते चलते क्या कहना चाहती हैं?
1: सबसे पहले तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पल मैं भूल भी गई थी, तो उनको भी मैंने आपको बताया और मैंने खुद वो यादें ताज़ा करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
0: तो दोस्तों, आज की गुफ्तगू बस यूं ही यहीं तक। शगुन, आपका हमारे साथ जुड़ने और अपनी बातें इतनी खूबसूरत अंदाज में हमारे साथ शेयर करने के लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे आसास कर लोट कोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: मैडम मैडम, मैं आपको कैसा लगता हूँ?
3: बहुत प्यारे लगते हो, सो स्वीट।
4: तो मैडम, मैं अपनी मम्मी पापा को कब भेजूँ आपके घर?
3: क्यों,
4: बात आगे बढ़ाने के लिए?
3: ये क्या बकवास है?
4: ट्यूशन के लिए मैडम।
3: ओ, ट्यूशन के लिए?
4: कसम से मैडम, आप भी ना व्हाट्सएप पढ़ पढ़ के बिगड़ गई हो।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
5: जी हाँ, मजा आपको आ रहा होगा दोस्तों, और हमारे पास आपके ढेर सारे मैसेजेस हैं और हमें भी बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
3: बिल्कुल नंदी,
5: आपका जो इतना प्यार है रेडियो के लिए, हमारे प्रसारण दिवस पर आपने इतने प्यार भरे मैसेजेस भेजे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देरी नहीं करते हैं, क्योंकि आपने मैसेज फटाफट भेज दिए हैं हमको, तो हम भी आपके मैसेज फटाफट पढ़ देते हैं। तो हमारे पास मैसेज आया है उमेश कुमार गौड़ का। ये कहते हैं, आकाशवाणी नजीबाबाद को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां। रेडियो मैं 12 साल की उम्र से सुनते सुनते अब 72 पहुंच गया हूं, मतलब 60 साल के ऊपर हो गया हूं हमें रेडियो सुनते सुनते। आज भी हम बेड के साथ रेडियो के सेट पर वॉल्यूम खोलना होता है, और बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़। कितनी प्यार भरी बात है, मतलब साइड में रेडियो है इनके पास परमानेंट, और उसको ऑन किया, और हम जो इतने सारे प्यार से लिसनर्स से बात करते हैं, हम उनके कानों तक ऐसे ही पहुंच जाती है।
3: बिल्कुल नन्नी, और देखने वाली बात ये भी है कि 60 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है जो कि उन्होंने बरकरार रखा है हमारे साथ,
5: मतलब हमारे साथ जिंदगी जी है, है ना।
3: बिल्कुल नन्नी। इसी के साथ दोस्तों, हमें अगला मैसेज लिखा है प्रवीण चौहान ने, और ये लिखते हैं, दिल की धड़कन बनकर आकाशवाणी हमारे दिल के बहुत करीब रहता है, तन्हाई में दोस्त बनकर साथ निभाता, मनोरंजन के साथ देश की दुनिया की खबरों से हमें अवगत कराता।
5: और जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण चौहान जी हमें मैसेज करने के लिए। आपका जो प्यार है आकाशवाणी के लिए वो अपार है, और हम बिल्कुल कृतज्ञ हो गए हैं। धन्यवाद आपको मैसेज करने के लिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है मसरूर हसन का। ये कहते हैं, आकाशवाणी नजीबाबाद परिवार को प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। जी, आपको भी हमारी तरफ से बधाई, क्योंकि आप लोग हमारे रेगुलर लिसनर हैं। और एड्रेस है इनका जहां से हमारे पास ये मैसेज आया है, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। और जो बताओ सना, कहां से आया मैसेज?
3: अगला मैसेज हमें भेजा है दत्ता घोड़के ने, और इन्होंने लिखा है, पहले नंदी इन्होंने थोड़ी सी विशेषताएं बताई हैं हमारे रेडियो के बारे में। ये लिखते हैं, देश दुनिया की ताजा खबरें सुनने का सरल माध्यम, बिल्कुल मनपसंद गीत गजलें भजन और मनोरंजक कार्यक्रम, शिक्षा कृषि स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम, यात्रा के दौरान भी आसानी से सुने जा सकते हैं, इंटरनेट ना होने पर भी कई स्थानों पर उपयोगी और सुलभ। इसके बाद अभी कहते हैं रेडियो की कुछ खास बातें, रेडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा एक साथी है, इसकी मधुर आवाज, पसंदीदा आरजे और श्रोताओं की फरमाइशें इसे आज भी उतना ही लोकप्रिय बनाती हैं। रेडियो सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि यादों, संगीत और अपनों से जुड़ने का सबसे प्यारा एहसास है।
5: जी, और सबसे प्यारा एहसास ये है कि आप लोग जुड़े हुए रहते हैं, आप हमें मैसेज लगातार करते हैं, आपके इतने प्यारे मैसेज का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो हमारे पास मैसेज आया है गांव जवेरा से, वीरेंद्र भयान, सुरेश, सुरेंद्र, शमशेर और मनोज भयान का। ये कहते हैं कि आज ही के दिन 23 जुलाई 1927 को मुंबई से भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक प्रसारण माध्यम से सूचना, शिक्षा, संस्कृति, जागरूकता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की। कितनी इन्होंने जो विशेषताएं बताई वो सारी बहुत प्यारी है, लेकिन जो लास्ट लाइन है, देश को एक सूत्र में पिरोने की, हमारी तो इंडिया की खूबसूरती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना।
3: बिल्कुल,
5: तो आकाशवाणी का एक रोल कि सबको एक धागे में बांधकर अपने साथ रखना, एक साथ जोड़कर रखना, ये अपने आप में एक खूबसूरत एहसास है कि हम इससे जुड़े हुए हैं, हमारे लिसनर्स इससे जुड़े हुए हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी।
3: नंदनी, एक बहुत खूबसूरत मैसेज हमें मिला है और ये लिखा है दर्शत सेन ने, और इन्होंने जो लाइन सबसे पहले लिखी है वो काबिले तारीफ है। ये कहते हैं, जहां ना पहुंचे प्राणी वहां पहुंचे आकाशवाणी।
4: क्या बात है।
3: फिर ये हमें शुभकामनाएं देते हैं और लिखते हैं, आकाशवाणी का प्रसारण हम तक निरंतर पहुंच रहा है मोबाइल ऐप के जरिए, और हमें आकाशवाणी सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है। हम हेयर सलून चलाते हैं, पूरा दिन आकाशवाणी का प्रसारण होता है और हमारे साथ जो कस्टमर लोग आते हैं उनका भी हम मनोरंजन करते हैं। 1990 से आकाशवाणी चल रही है, जिस टाइम 4 सेल का रेडियो हुआ करता था।
5: बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम नाम पढ़ देते हैं, दशरथ सेन, सीता मऊ रोड, नाटाराम, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से। अब देखो कितनी सारी प्यारी प्यारी बातें कही हैं इन्होंने। एक तो इनके सलून में लगातार रेडियो लगा रहता है, तो ये मतलब हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं। खुद तो सुनते हैं और जो इनके साथ अपने
3: कस्टमर से उनको भी सुनाते हैं,
5: और हमारी जो रीच भी बढ़ाते हैं और बाकी लोगों को एंटरटेन भी करते हैं। कई बार होता है ना, लोगों का मूड ठीक नहीं होता और हम कोशिश करते हैं सबका मूड अपलिफ्ट करने के लिए।
3: खुशियां लो और खुशियां बांटो, वो वाला काम है नंदनी।
5: और सना, तुमने सुबह मुझे बताया था कि तुम्हारे दादाजी के पास 2 सेल का रेडियो।
3: बिल्कुल
5: नंदनी, ये और पीछे की बात है। मतलब धीरे धीरे गाड़ी पीछे जाती जा रही है, जो हमें नहीं पता वो चीज इनके एक्सपीरियंस के थ्रू हम फील कर रहे हैं।
3: जब मैंने कभी अपने छोटे बचपन में रेडियो देखा था मेरे दादू के पास, तो 2 सेल वाला देखा था, लेकिन ये बात इन्होंने बताई है कि इनके पास 4 सेल का रेडियो हुआ करता था। तो ये बहुत पुरानी बात है और बहुत लंबे समय से ये साथी, ये लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
5: सेल सेल की बात है,
3: बिल्कुल।
5: चलते हैं हमारे अगले मैसेज की तरफ। भेजा है नगीना से अनिल विनोचा जी ने, ये कह रहे हैं, नेशनल प्रसारण दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं। रेडियो सबसे अच्छा व सबसे सस्ता है, सूचना ज्ञान मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साधन है। अब इसे पॉकेट में भी रखा जा सकता है न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए। ये हमारा ऐप तो सबसे कमाल की चीज है, पूरे रेडियो को, ट्रांजिस्टर को बिल्कुल माइनस करके सारी वो फीलिंग मोबाइल ऐप के थ्रू कर दी, जो सारे म्यूजिक ऐप है या कोई भी ऐप है उसकी तरह से हमारे फोन में डाउनलोड हो जाता है और किसी भी स्टेशन पर हम इसको सुन सकते हैं आराम से, कहीं भी बैठकर। तो धन्यवाद आप लोगों का मैसेज करने के लिए। आपके मैसेजेस तो हम लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन अब बारी है एक प्यारे से ब्रेक की।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन।

0: का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर। दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
2: दोस्तों, हर प्यार की एक कहानी होती है। किसी की मुस्कुराहट से शुरू होती है तो किसी की दोस्ती से। कुछ कहानियां अपनी मंजिल तक पहुंच जाती हैं और कुछ यादों के हसीन हिस्से में बस दब कर रह जाती हैं। तो तैयार हो जाइए एक आज की हसीन लव स्टोरी के लिए,
3: जिसका टाइटल है अनकहा रिश्ता और प्रेजेंट किया है शिवानी ने। आज सुनेंगे आप उसकी चौथी कड़ी।
2: नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है अनकहा रिश्ता, जिसका आज आप सुनेंगे एपिसोड नंबर 4। दोस्तों, कल हमने सुना था कि नैना ने आरजे आर्यन को एक मैसेज टाइप किया था। उसमें लिखा था, कभी कभी एक आवाज़ भी दिल में ऐसी जगह बना लेती है जहां कोई और पहुंच ही नहीं पाता। ये मैसेज जब आरजे आर्यन के पास पहुंचा और आरजे आर्यन ने इस मैसेज को पढ़ा तो वो भी कुछ सेकेंड के लिए रुक गए और बस इतना कहा कि ये सिर्फ मैसेज नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी है जो हर रात बिना नाम के इतना कुछ कह जाती है। और दोस्तों, अब आरजे आर्यन भी उस अनजान श्रोता के मैसेज का इंतज़ार करता है, जिसमें ना कोई नाम होता है ना कोई पहचान, बस होती है तो सच्ची बातें जो दिल से कही गई हों। एक आरजे को हज़ारों लोग सुनते हैं, लेकिन किसी एक अजनबी श्रोता का इंतज़ार अब हर पल महसूस हो रहा था। और उधर नैना की ज़िंदगी में भी कुछ बदल रहा था। अब वो सिर्फ सुन नहीं रही थी बल्कि हर लाइन को महसूस कर रही थी। वो हर रात 10 बजे का इंतज़ार करती और जैसे ही आरजे आर्यन की आवाज़ सुनाई देती, उसे लगता कि जैसे कोई अब उसकी खामोशी को भी समझ लेता है। नेक्स्ट डे आरजे आर्यन के प्रोग्राम में एक बदलाव आया। वो हर मैसेज पढ़ने से पहले एक सेकेंड के लिए रुकता था, जैसे किसी एक नाम का इंतज़ार कर रहा हो। और फिर वो मैसेज आया जिसमें लिखा, आज मैं बस थक गई हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ अब भी मुझे संभाल लेती है। आरजे आर्यन कुछ पल चुप रहा और फिर उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन इतना ज़रूर है तुम अकेले नहीं हो। उस पल नैना के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई। लेकिन कहानी अब सिर्फ एक श्रोता और आरजे की नहीं रही थी, अब ये एक ऐसे अनकहे रिश्ते की तरफ बढ़ रही थी जिसमें दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे लेकिन महसूस करने लगे थे। वैसे दोस्तों, क्या कोई रिश्ता बिना नाम के भी बन सकता है, या सिर्फ ये एक एहसास है जो आवाज़ और दिल के बीच कहीं खो जाता है? दोस्तों, ये जानेंगे हम कल। जी हाँ, इसके लिए आपको सुनना होगा हमारा कल का अनकहा रिश्ता का एपिसोड नंबर 5।
3: अनकहा रिश्ता, एक आरजे और एक प्यारी सी कहानी उसकी साथी की। ये भी देखो, प्रसारण दिवस को हमारे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कहीं कहीं प्यार मोहब्बत जैसे एहसास भी रेडियो के थ्रू चले जाते हैं।
2: बिल्कुल नन्नी,
3: तो अब हम बात पे वापस आ जाते हैं।
2: बिल्कुल, वैसे इस प्यार के एहसास के साथ हमारे काफी सारे लिसनर्स ने हमें बहुत सारी बधाइयां दी हैं। और ये है कटरा चांद खां मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से, अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति और पूरा मौर्य परिवार। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, सुरेश खुराना, अर्चना हीरामन प्रयण, गुरमीत सिंह मिता साउथ दिल्ली से, और झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथवाद, जाकिर

0: मंसूरी, रिहाना खान, नानक खन्ना, मोहम्मद सईद हसन।
1: और एक मैसेज हमें आया है राजा राम अहिरवार का, बोलते हैं कि मेरे जीवन में रेडियो किसी प्रिय साथी से कम नहीं है। बचपन की कई मधुर स्मृतियां रेडियो से जुड़ी है। पढ़ाई करते हुए धीमी धीमी आवाज में ट्रांजिस्टर से गाने सुनना, सुबह के भक्ति गीत, दोपहर के मनोरंजक कार्यक्रम, शाम की समाचार बुलेटिन और रात को पुराने फिल्मी गीत, इन सब ने मेरे जीवन को संगीत और संस्कारों से भर दिया है। रेडियो ने मुझे केवल सुनना नहीं सिखाया, बल्कि शब्दों की गरिमा, भाषा की मिठास और धैर्य का महत्व समझाया। आज भी रेडियो पर पुराने गीतों को सुनते हुए बचपन की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे समय फिर उसी सुनहरे दौर में चला गया हो। और हमें प्यारा सा मैसेज करने वाले हैं ग्राम पिड़पा, पोस्ट कलानी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से श्रोतागण राजा राम अहिरवार, कौशल्या, मोहिनी, शिवा अहिरवार जी। आपका बहुत धन्यवाद। आपने जो डिटेल में अपना पूरा दिन का रूटीन समझाया कि बचपन में आप कैसे धीमी धीमी आवाज में पढ़ते हुए ट्रांजिस्टर सुनते थे, ये आदत ना मैंने बहुत लोगों में देखी है कि साइड में छोटा सा म्यूजिक चला करके वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, मतलब एक अलग ही एनर्जी आती है उस समय,
0: बिल्कुल
1: डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो आपकी जो यादें हैं हम भी रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि टाइम चाहे कोई भी हो, रेडियो सबको एक ही एहसास देता है, एक ही फीलिंग देता है। तो धन्यवाद आपका मैसेज करने के लिए।
0: और भी साथी हैं नंदनी, जिन्होंने हमें बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। और यह है देगांव से सदीप शिव योथार, भाटापारा से हीरामणि वर्मा, गुरमीत सिंह तंगोरी, पांजीलाल नहावकर, एमडी यासीन अंजान, उत्तम कुमार, अब्दुल गफ्फार, राजकुमार डूडी।
1: और मैसेज हमें आया है भाई रफत साहब का, ये कहते हैं हमारी ओर से भी आकाशवाणी के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस तरह से हर साल हम तक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए आप कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह कार्यक्रम पहुंचाते रहेंगे। उत्कर्ष अपनी मेहनत कर हम तक सभी कार्यक्रम हो जाएंगे अच्छे रूप से। क्या बात है, मतलब एक अलग ही इन्होंने फीलिंग दे दी कि उत्कर्ष अपनी मेहनत कर हम तक कार्यक्रम सभी सफल हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे।
0: नंदनी, जो हम कार्यक्रम उनको सुनवाते हैं वो तो उसको सुनते ही हैं, साथ में आगे की भी हमसे उम्मीद रख रहे हैं कि आगे के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो उन तक पहुंचे और अच्छे पहुंचे और उनको पसंद भी आए।
1: जी हम तो कोशिश करते हैं कोई कमी ना हो, लेकिन आप भी कमी गिनाया कीजिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा अच्छा होता है ताकि बेहतर हो सके। और मैसेज हमें किया है सुरेश गगनेजा ने, ये दे रहे हैं हमें बधाई, और है राम कुमार रिवार सादुल शहर राजस्थान से, ये भी हमें बधाई दे रहे हैं, तो धन्यवाद।
0: भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार ये लिखते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सही और सटीक तथा सच्चाई के साथ पुख्ता जानकारी, मनोरंजन, सतर्कता और सुरक्षा की सटीक जानकारी का अद्भुत साधन और संचार के माध्यम से खुशियों की सौगात, रेडियो बेहतर होते हुए आज भी एक दूसरे के दिलों को दोस्ती के तार से तार जोड़ता है।
1: जी बिल्कुल, हमारे तार भी आपके दिल के तार से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमें मैसेज किया है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर ने, रत्नमाला सुरलकर ने। तो सना और कोई मैसेज हमारे
0: हाँ,
1: पास?
0: दो साथी और हैं राजेश कुमार रमन और संजय ढिगनिया।
1: जी तो आपने हमें मैसेज किया, अपना फर्ज पूरा किया, अपना प्यार अदा किया, तो अब हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने आपसे पूछा था बूझो तो जाने का सवाल, और सवाल था भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, जिसका सही जवाब है अहमदाबाद।
1: और सही जवाब देने वाले हमारे साथी हैं बीआई धाकर, लाल मोहम्मद अंसारी, उमेश कुमार गौर, और है जॉन डिकेस्ट्रो, सुरेश गगनेजा, मुकेश कश्यप, अंकित चौधरी, धर्मेंद्र छिपा, महेंद्र मोदी, राजेश वर्मा, फागू राम यादव, मोहम्मद यासीन अंजान, मोहम्मद हसनैन पवार, प्रवीण चौहान, हीरा मानी वर्मा, नवाबुद्दीन, और हैं सुदर्शन झा, भाई रफत साहब, मिसबा शमसी, सुरेश खुराना। जी, लिस्ट अभी लंबी है। नाम है संजय ढिंगिया, मोहम्मद सईद अब्बासी, भागवत चौबे लाडला जी, विजय सुरलकर, मोहम्मद रफीक पवार, दिनेश वर्मा, और हैं ये मोहम्मद हफीजुर रहमान, नानक खन्ना, जाकिर मंसूरी। जी, आपका बहुत धन्यवाद। और सवाल का जवाब और सवाल एक बार फिर सुन लीजिए कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, ये हमने आपसे पूछा था, और इसका सही जवाब है अहमदाबाद।
0: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं और कैसे लग रहे हैं, आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी, अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आपने अभी अभी मैसेज भी किए, आप नोट कर लीजिए, 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारे सारे जो प्रोग्राम्स हैं, मोस्टली उनकी अपडेट्स और प्रोग्राम्स खुद भी हमारे चैनल्स पर होते हैं, तो एक ही आईडी है, आकाशवाणी नजीबाबाद, इंस्टाग्राम की भी, फेसबुक की भी और यूट्यूब की भी, ताकि आप जाएं और आराम से देखें और साथ साथ अपडेट्स भी हमारी लेते रहें। हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और इसके साथ दीजिए अपनी साथी नंदिनी
0: और सना को ये कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रोग्राम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47।

0: छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के निर्णय की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया है।
1: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में डॉक्टर सिंह ने कहा कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता के 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती हुई घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 5 विकेट पर 108 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया अंकित कुमार की राम राम। और सुनाओ किसान भाइयों, कैसे हाल चाल है थारे? खैर देखो भैया, हाल चाल जो हमारे किसान भाई के भैया बढ़िया ही होंगे, और भैया जो हमारे किसान भाई की खेती बाड़ी है वो भी ठीक ठाक चल रही होगी, और भैया हमारे जो किसान भाई हैं वो अपना काम भैया सही से और समय पर निपटा रहे होंगे इस टाइम। क्योंकि भैया देखो, अगर इस समय की बात करें तो भैया बरसात का समय चल रहा है, और भैया पता ना बारिश कब हो जाब, तो भैया ऐसे में भैया सही समय पर काम करना ठीक रहे हो। और भैया देखो मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा, भैया गर्मी भी अच्छी खासी हो रही, ऐसा लग रहा भैया जैसे बरसात का टाइम ना चल रहा, गर्मी का मौसम चल रहा। तो भैया मौसम को देखते हुए अपने भैया खेती का जो खेती के काम वो निपटाते रहें। और देखो भैया इसके साथ साथ भैया हम जल्दी से जल्दी भैया जिनकी किसान भाई की धान की रोपाई रह गई हो तो भैया वो धान की रोपाई कर लें, क्योंकि भैया हम जितने दिन लेट कर रहे हैं भैया हमारी फसल जो उतने दिन पछेती होती जा रही है। तो भैया हमारे किसान भाई जल्दी से जो धान की रोपाई कर लें। और उसके भैया जिन किसान भाइयों ने मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, उड़द, मूंग और तिल की बुआई कर रखी हो वो भैया अपने खेतों में इस समय निराई गुड़ाई जरूर कर लें। और भैया जिन किसान भाई ने धान हो, मक्का हो, दलहनी फसलें हैं तो भैया उसमें खरपतवार का ध्यान रखो और भैया उनका समय पर नियंत्रण करते रहो, क्योंकि भैया बरसात के समय में जो खरपतवार एकदम से बढ़ते हैं। और भैया इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं भैया खेती में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखो, क्योंकि भैया जब हमारी खेत में जल भर जाता है तो हमारी जो फसल की जड़ भैया वो सड़ने लगती है, गलने लगती है। तो भैया उसके लिए जल निकासी की व्यवस्था रखो, मेड़बंदी जरूर करो। और भैया जैसे सब्जियों की बात करो तो जैसे भैया हमारे किसान भाई ने भिंडी लगा रखी है, लौकी लगा रखी है, तुरई लगा रखी है, करेला लगा रखा है, मिर्च लगा रखी है और टमाटर लगा रखी है, भैया जैसे ये बेल वाली फसलें हैं तो भैया उसमें सहारा दे देमो और भैया उसमें जल निकासी करते रहमो, क्योंकि भैया कभी कभी ऐसा होता है कि जल भरने से उनकी जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं और भैया हमारा पौधा सूख जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखो। और भैया इसके साथ साथ भैया जैसे फलदार पौधों के बाग हों हमारे किसान भाई ने लगा रखे हैं तो भैया उसमें जल भराव ना होने दें, और भैया पौधों के आसपास भैया साफ सफाई रखो और खरपतवार जो हों सो अपने पौधे के पास से भी हटा दें। और भैया इसके साथ साथ देखो बरसात का समय है तो भैया हमारे किसान भाई खाद और उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करो, और भैया वर्षा के कारण जैसे होने वाले कीट और रोग हो भैया उसकी नियमित निगरानी करो। और भैया अगर हमारी फसल में कोई रोग लगता है या कोई कीट लगता है भैया कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार दवाओं का छिड़काव करो। और भैया साथ साथ भैया मिट्टी का कटाव ना हो तो भैया उसके लिए हमारे किसान भाई पेड़ जरूर लगाओ और भैया जल संरक्षण जरूर करो। देखो भैया बात तो हम तुमसे बहुत सारी करेंगे और भैया थारा मनोरंजन भी करवाएंगे, पर भैया आज दिन है गुरुवार, वो भी माह का चौथा, और भैया इस दिन हमारे किसान भाई सुनते हैं हमारा मासिक कार्यक्रम नाटक। तो भैया ज़्यादा देर ना करते हुए सुनते हैं प्यारा सा नाटक जिसका नाम है चकबंदी।
1: अरे मोहन
0: हाँ पिताजी।
1: भैया, आज फिर दूसरे खेत तक पहुंच तो आधा घंटा लग गया।
2: एक खेत पूरब में, दूसरा पश्चिम में और तीसरा नहर के उस पार।
1: अरे भैया, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? कुछ कर लो।
0: पिताजी यही तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी है, आधा समय खेत में आने जाने में निकल जाता और ऊपर से ये बैल बेचारे थक जाते हैं।
2: बेटा, हमारे दादा के समय से बंटवारा होता गया। हर पीढ़ी में खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते चले गए। अब खेती से ज्यादा समय रास्ते नापने में निकल जाए भैया, कुछ तो करना ही पड़ेगा।
3: अरे राम राम भाई साहब, राम राम राम स्वरूप जी।
2: राम राम राम राम भैया। आओ भैया आओ, सब ठीक ठाक हैं?
3: हाँ भैया, हम तो ठीक है, तुम बताओ।
2: हाँ भैया, सब ठीक ठाक है।
3: भैया क्या बताऊँ, हाल तो भैया जो तुम्हारा, सुबह से तीन खेत देख कर आया हूँ, कहीं मेड़ टूटी पड़ी, कहीं पानी ना पहुंच दिया, और अगर सारे खेत एक जगह होते तो कितना बढ़िया होता भैया।
2: अरे यही रोना रो रहा मैं अपने इस लौंडे से, यही तो कह रहा भैया, तू बिल्कुल ठीक कह रहा। देख भैया, समय बच जाता और खेती बाड़ी भी ठीक ठाक होती रहती, और ऊपर से जो बैलों को बार बार लाना ले जाना पड़े ना, वो भी बच जाता अगर हमारी खेती कहीं एक जगह होती।
3: सही कह रहे हो भैया। अच्छा भैया चलो आपको देखूं।
2: हाँ ठीक है भैया,
3: उधर और डाउन एयर पार।
2: हाँ तेरे खेत भी दूर है भैया, देख
3: हाँ
2: ले।
3: भैया ठीक।
0: पिताजी।
2: हाँ बेटे।
0: पिताजी अब घर को चलो, देखो दोपहर हो गई।
2: चल भाई, थकान सी भी हो ही गई, चलो घर को चलो अब जा।
0: ठीक है पिताजी, बैठो बुग्गी बकू।
2: चल भैया, हाँक बुग्गी हाँक।
0: ठीक है पिताजी।
4: मोहन के पिताजी आ गए क्या?
2: हाँ आ गए, खड़े तो तेरे सामने ही हैं।
4: ओहो बूझी लिया तो क्या बुरा कर दिया मैंने। सुनिए जी पानी लाऊं क्या?
2: ले, यू भी पूछने की बात है? एक तो तेरे खेत इतने दूर दूर में हो गए, उसमें चलतो चलतो ही पैर टूट जाए, ऊपर से पूछ रही पानी लाऊं क्या। लिया भगवान जल्दी से लिया।
4: अजी ला रही, भला पानी गुना बूझूंगी मैं? तुम तो ऐसी बात करो। हो
2: लिया जल्दी से लिया।
4: अरे खेत की बात सही कह रहे हैं जी, सिंचाई भी ठीक टाइम पे ना होती, पिछले साल तो इसी वजह से फसल भी कम हुई थी। बस क्या करें,
2: यही तो बात है, यही चिंता तो मुझे भी खाई जा रही। और तुझे तो पता ही है, अब तो मोहन की फीस भी भरनी, कैसे कैसे भरी जाएगी।
0: पिताजी।
2: हाँ बेटे।
0: पिताजी हमारे पड़ोस वाले गांव में ना कुछ अधिकारी जमीन की नपाई कर रहे थे, और गांव वाले भी खड़े थे। जब मैं कल स्कूल से आ रहा था मैंने देखा।
2: अच्छा सारे गांव वाले खड़े थे? हूँ।
0: हाँ पिताजी।
5: सभी गांव वाले पंचायत में इकट्ठा हो।
2: अरे मोहन बेटे देखिए कैसा हल्ला सा हो रहा, घर के बाहर को जाकर देख ढोल सा बज रहा।
0: अरे पिताजी प्रधान जी ने पंचायत बुलाई है, सबको बुलाया, सब चलो चलकर देखते हैं क्या बात है। चौपाल पगू।
2: चौपाल बुलाई है?
0: हाँ।
2: अच्छा जी चलो भैया देखो लें क्या हो रहा चौपाल पगू।
0: चलो चलो सब चलो।
2: चलो भाई चलो भैया
0: चलो चलो चलो।
6: सभी शांत बैठ जाओ और ध्यान से सुनो भाइयों, सरकार की चकबंदी की टीम अब हमारे गांव में ही आने वाली है। तहसील से मेरे पास फोन आया है, तो सब आराम से सुनो।
2: चकबंदी वाले पंडित, चकबंदी वाले।
7: अरे प्रधान जी चकबंदी मतलब कहीं हमारी जमीन तो ना छिन जाएगी? हम तो ऐसे ही ठीक हैं।
6: नहीं नहीं किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी, केवल किसानों के खेतों को व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे किसानों को एक या कम स्थानों पर खेत मिल सके।
7: अच्छा अगर ऐसा हो जाए तो प्रधान जी हमारे तो दिन न बदल जाए।
8: अगर हमारी उपजाऊ जमीन की जगह कम उपजाऊ जमीन दे दी गई तो क्या होगा प्रधान जी?
7: बात तो रामलाल ठीक है भैया। और मेरा नहर वाला खेत चला गया तो पानी भी ना मिलेगा फसल को, इससे तो हमें नुकसान हो जाएगा बेटे, इस बात को मेरे सोचता।
8: अरे प्रधान जी मैं तो अपनी उपजाऊ वाली जमीन देने का ना हूँ, चाहे कुछ भी हो जाओ।
7: हटिए बेटे हटिए, और मैं भी ना देने का नहर वाला खेत बेटे, वही काम का फसल तो हो जाओ उसमें, और खेत बदल गए तो मेन की लड़ाई करनी पड़ो। यही रह जाएगी भैया टाल काटी, हम ना देते किसी न ले भैया ना दे।
6: अरे तुम दोनों लड़ो मत, कुछ नहीं होगा, इसीलिए अधिकारी आएंगे, सबको समझाएंगे और नियम के अनुसार ही काम होगा।
2: ऐसे डरना ठीक ना, पूरी बात सुनो पहले।
7: अरे पिताजी ठीक कह रहे हैं हमारे, हम ना देने हमें तद्दा पटद्दा खेत है ये। चलो पिताजी तुम
2: आ जाओ भैया, सुनो तो सही, आ जाओ रामलाल।
7: अरे बैठो बैठो बैठो।
0: प्रधान जी हम भी यही चाहते हैं कि अधिकारी आए और खुलकर सब बात बताएं।
9: सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
10: नमस्कार
11: नमस्कार जी नमस्कार, नमस्कार।
12: राम राम जी राम राम।
6: लेखपाल और चकबंदी अधिकारियों को हमारा नमस्कार।
9: नमस्कार नमस्कार।
6: सभी गांव वाले यहां पर उपस्थित हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं।
9: ठीक है
13: हम तहसील से आए हैं और आपके गांव में चकबंदी होनी है, तो आपके मन में जो भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं।
0: सर जी नमस्कार।
9: नमस्कार
0: सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चकबंदी क्या है और यह कब शुरू हुई और इसका उद्देश्य क्या है।
9: देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है भाइयों और बहनों, सरकार किसानों की सुविधा के लिए चकबंदी का कार्यक्रम चलाती है और इसका उद्देश्य ये होता है कि जो बिखरी हुई जोत हैं उनको एक स्थान पर व्यवस्थित कर दिया जाए। आई समझ में आपकी बात?
13: मान लीजिए किसी किसान भाई के चार पांच छोटे छोटे खेत अलग अलग जगह हैं, चकबंदी में उन सबका मूल्यांकन करके उसे एक या दो बड़े खेत एक ही स्थान पर दिए जाते हैं, इससे खेती आसान हो जाती है।
2: ये तो अच्छी बात है भैया।
7: और क्या लेखपाल जी हमारी जमीन छीन ली जाएगी हमारी बिना मर्जी के और वो जमीन किसी और को दे देंगे? अजी नाना हमारा ऐसा पसंद ना रहे हो।
9: अरे नहीं सुनिए, बिल्कुल नहीं, जमीन आपकी ही रहेगी, केवल उसके स्थान का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन किया जाएगा। और इसके साथ आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी का कानूनी अधिकार उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 है और यह कानून 8 मार्च 1954 से लागू हुआ और इसका जो उद्देश्य है वो किसानों को बेहतर खेती, सिंचाई और रास्ते उपलब्ध करवाना है, विवाद कराना बिल्कुल नहीं है।
2: अजी साहब मेरा तो एक खेत सड़क के पास कूजी, और वो खेत अगर तुमने किसी और को दे दिया तो मेरा तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा साहब।
9: अरे नहीं नहीं नहीं, हर खेत का मूल्य उसकी गुणवत्ता, सिंचाई, रास्ते और स्थिति के आधार पर तय किया जाता है। उसके मूल्य के आधार पर ही किसान को उसके समकक्ष भूमि दे दी जाती है। भेदभाव किसी के साथ नहीं होता।
2: इसका मतलब कि बिना नाप जोक के कोई भी फैसला नहीं होने का, फिर तो ठीक है साहब।
13: बिल्कुल नहीं, पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार होगी। पहले सभी खेतों की पैमाइश होगी, फिर नक्शा तैयार किया जाएगा और हर खेत का मूल्यांकन किया जाएगा।
3: अरे साहब, जिनके खेतों पर पहुंचने के लिए चक्रोड भी ना, उनका क्या होगा? अब देखो मेरा एक खेत ऐसा कि उस पर रास्ता ही नहीं पहुंचने का। गन्ना भी भरूं तो बहुत दूर बुग्गी खड़ी करके भरूं, कंधे पर ढो ढो को पुली ले जाऊं। अजी सो से शाम हो जाए एक बुग्गी गन्ना भरतो भरतो, इसका भी कुछ रास्ता निकलेगा नहीं।
9: अरे हरिराम जी, मैं बताता हूँ आपको, चकबंदी के दौरान खेतों तक पहुँचने के लिए रास्ते का प्रावधान भी किया जाता है, और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ नालियों और सिंचाई की भी व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। समझ गए आप?
3: हाँ जी हाँ जी, समझ रहे।
2: भैया हरिराम और रामलाल, तुमने सुन ली सारी बात?
10: सब सुन ली।
2: चकबंदी वैसे है तो अच्छी चीज, जैसे ये बता रहे हैं।
6: अरे भैया, अच्छी चीज है। और अब मैं आपको बता दूं, आज की चौपाल हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर से लेखपाल और चकबंदी अधिकारी हमारे गांव में आएंगे और आगे की नापतोल की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
3: चलो भैया घर चलो अपने, अब कल देखेंगे क्या होगा।
2: चलो भैया चलो चलो चलो घर
3: चलो चलो।
4: आ गए?
2: हाँ आ गए जी आ गए।
4: आज की पंचायत कैसी रही? क्या क्या बताया उन्होंने?
2: देख, आज की जो ये पंचायत थी ना, यू थी चकबंदी के संबंध में, और अब तो हमारी समझ में सब आ गया। चकबंदी खेत बदलने का नाम ना है, जैसे हम पहले डर रहे थे।
4: अच्छा,
2: बल्कि चकबंदी से तो खेती करनी बहुत आसान हो जाएगी। अगर चकबंदी होगी तो बहुत मजा आ जाएगा।
4: अच्छा जी, अगर खेत तक आने जाने में समय बचेगा और सिंचाई भी आसान होगी तो इसका लाभ तो पूरे परिवार को ही मिलेगा। बड़ा फायदा हो जाएगा फिर तो।
2: वही तो बात है, चकबंदी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा।
4: हाँ।
2: अरे मोहन जल्दी उठ जा बेटे, तू सोता ही रहेगा क्या?
11: अरे पिताजी उठू हूँ।
2: अरे जल्दी उठ, देखे खेतों में कुछ चल चारा भी लाना, फिर वे तहसील वाले आ जाएंगे, खेतों की नपाई के काम को शुरू कर देंगे, फिर कुछ ना काम होने का। जल्दी उठ।
11: चलो पिताजी, ट्रैक्टर स्टार्ट करके ला रहा हूँ।
2: चल ठीक है बेटे, लिया।
11: जल्दी से बैठो।
2: मोहन। हाँ पिताजी। देख ये गन्ना तो बहुत अच्छा हो रहा है हमारा।
11: हाँ पिताजी, लग तो रहा है आपको फसल अच्छी सी हो जाएगी।
2: आपके फसल अच्छी होने की बहुत उम्मीद है बेटे।
11: पिताजी।
2: हाँ बेटे।
11: अब एक काम करो, जल्दी से गोद काट लो, वरना वो तहसील वाले आ जाएंगे तो फिर काम धंधा बीच में रह जाएगा।
2: अरे बेटे चारा तो काट लिया, देखे ये जो गड्डी ना, इन्हें ट्रैक्टर पर को रख के जल्दी से घर को आ जाइए। मैं जा रहा हूँ घर को।
11: ठीक है पिताजी, आ जाऊंगा।
2: ठीक है।
4: आ गए जी?
2: तुझे तो बस यो ही पूछने की लगी रहे, आ गए जी? अरे तेरे सामने खड़े आ गए, तू जल्दी से पानी पूनी चाय वाय की बात तो पूछ ले।
4: ओहो, आदत हो गई मेरी, क्या करूं।
2: चल इस आदत को सुधार ले और पानी का गिलास लिया जल्दी से।
4: लो जी लियो खड़ी, मैं तो पकड़ो तो सही, चाय बना लूं, पियोगे?
2: अरे तो चाचू को तो छोड़, देखे गिलास पानी पी के कलेजे को ठंडक सी पहुंची, कुछ छाछू छो तो लिया?
4: हाँ हाँ धरी चाछ भी, मैंने बतेरी देर से रख रखी थी, बर्फ रूप तो ना डाला।
2: अरे तू लिया जल्दी, देखे मुझे चौपाल पे को भी जाना।
4: हाँ अब मैं तो भूल ही गई थारे से बताना, प्रधान जी भी तो आए थे और वो क्या क्या गए थे, चौपाल पे आ जाइयो।
2: अच्छा,
4: तहसील की टीम आने ही वाली हैगी,
2: तो तू मुझे देखे जल्दी से छाछ दे, मैं चलूं और उसे मोहन को भी भेज दियो हूँ कोई।
4: अरे लाई जी लाई, बस लो लो लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो,
2: ला। वाह भाई वाह।
6: सभी किसान भाई जल्दी से बैठ जाओ, और देखो टीम आने ही वाली है, और वो देखो सामने गाड़ी भी आ रही है।
13: सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम।
12: राम राम
14: राम राम जी, राम राम
13: जी। अब सभी गांव वाले खेत पर चलें, अपने अपने खेतों की नपाई शुरू करते हैं, और आज यो काम निपटाना है।
3: ठीक है जी,
2: ठीक है जी, ठीक है, चलो खेत पर कोई चलो जी।
3: चलो जी।
11: लेखपाल साहब, काम सही तरीके से करना, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए।
13: मोहन भाई, काम पूरी पारदर्शिता से हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं होगा।
3: नापो जी नापो जी, आज तो भाई पूरा दिन नाप तोल में निकल गया, सभी के खेत तो नप गए, अब ये बताएंगे भैया आगे क्या होगा। अरे ही तो भैया लाला की माँ भी ना आ, वो भी गांव को गई, डंगरो ढोरों का भी मुझे देखना जाकर है भैया राम स्वरूप।
2: हाँ भैया रामलाल, कह तो तू ठीक रहा, अरे हमारे धोरों को आ जाइए भैया, दो रोटी तो खागा।
3: चल भैया
2: आ जाइए भैया, हमारे धोरों को आ जाइए।
3: और क्या, छाछ से दो रोटी।
9: भाइयों बहनों थोड़ी हमारी बात भी सुन लो। देखिए नपाई का काम पूरा हो गया है और कल ही प्रारंभिक चक्की सूची तैयार करके हम पंचायत घर में लगा देंगे, और किसी को उस पर आपत्ति हो तो वो निर्धारित समय पर आवेदन दे सकते हैं और हमारी टीम इसकी सुनवाई करेगी। समझ गए आप?
10: जी समझ गए।
3: जी जी
6: ठीक है भाई गांव वालों, कल सूची लगा दी जाएगी, आप सभी जो है अब यहाँ से चले जाओ।
3: चलो जी कल को देखेंगे सूची में क्या लगेगा।
2: चलो भैया चलो चलो।
13: ठीक है भाइयों अब हम भी चलते हैं।
2: ठीक है लेखपाल साहब जी, राम राम
3: राम राम राम।
4: अजी बड़ी देर कर दी आने में, क्या हुआ आज पंचायत में?
2: अरे देख ये तो चकबंदी, इसमें तो टाइम लग गई है, आज नपाई का काम तो पूरा हो गया और नक्शा भी बन गया हमारे खेत का, कल को लिस्ट लग जाएगी, उसमें देखेंगे किसे कौन सा खेत मिला।
4: तो हमारे खेत भी बदल जाएंगे फिर?
2: हाँ चकबंदी में सारे खेत एक जगह आ जाएंगे।
4: अच्छा आज तो लिस्ट लगेगी, हे भगवान राम जी, पता ना कहाँ को नंबर आवा हमारे खेत का, जाने कैसे खेत मिलेंगे।
2: अरे तू क्यों परेशान हो रही, ज्यादा ना सोचे करते, सब ठीक होगा। देख थोड़ी बहुत देर में लिस्ट लग जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि किसको कौन सा खेत मिला, किसका चक कहाँ को कटा।
4: लो जी फिर तो तुम चले जाओगे, अब चाय पानी पी लो, जरा मेरा नाश्ता कर लो, अब फिर चारा भी ले आइयो डंगरों के पास, फिर चले जाइयो लिस्ट देखन, फिर तो सारा दिन ही लगेगी वो।
2: अरे ठीक है तू तो बात बहुत बनावे, काम कम करे, तू चाय तो दे जल्दी से, मैं चलूं फिर।
4: अजी वो धरा नाश्ता भी और चाय भी
2: लिया ला। ओह भैया पेट तो भर गया, बड़ा टाइम लगेगा भाई। चलू हूँ मैं खेत पे, को मोहन को भी भेज दिए?
4: ठीक भेजू हूँ, बुग्गी जोड़ लागा, तुम चलो इतना चारा तो काट लो।
2: हाँ मैं जा रहा।
11: मम्मी।
4: अरे हाँ लाला क्या कहे?
11: मम्मी मैं भी जा रहा हूँ खेत पे, को जल्दी से अपना काम निपटा लूंगा, फिर लिस्ट देखने चलेंगे दोनों।
4: हाँ हाँ चला जा, तेरे पिताजी तो बड़ी देर के चले गए।
11: ठीक है तो।
2: अरे बेटे मोहन कहाँ रह गया था तू, चल अब जल्दी से ये चारे की गड्डी बुग्गी पकू रख ले और फिर घर को चल।
11: ठीक है पिताजी रखवाओ तो बुग्गी पकू।
2: ठीक है भैया काटी भी मैंने तो, ले रखवा भी दूंगा, चल ए ले भैया यो रखी।
11: लो तो लो बैठो, ट्रैक्टर स्टार्ट करूं मैं, चलो घर को।
2: चल भाई चल जल्दी चल, लिस्ट भी देखनी।
11: चलो।
2: अरे भैया लाला देखे जल्दी से इन गड्डियों को उतार ले और कुट्टी भी काट ले। देख यो बाहर को शोर कैसा सा हो रहा, सब लोग भी जा रहे हैं चौपाल पे को, मैं भी चलू हूँ और तू भी आ जाइए बेटे, चारा चूरा तो काटते रहेंगे फिर।
11: ठीक है पिताजी आ रहा हूँ, काम तो निपटा लू घर का पहले थोड़ा सा।
2: हाँ हाँ तो निपटा कर आ जाइए जल्दी।

0: तो वो अपनी बात हमारे सामने रख सकता है।
1: जी मुझे समस्या है।
0: बताइए।
1: मुझे श्यामलाल के पास खेत मिला है और वो मुझे लेना नहीं है इसके पास।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: इससे तो मेरी पहले से ही लड़ाई है। यो तो डॉल काटता रहे मेरी।
0: अच्छा।
1: और 4 बीघे का खेत इसने मेरा छोटा कर दिया डॉल काट काट के।
0: ठीक है।
2: अच्छा मिजो कह रिया, तू काम हो क्या? तू भी तो काटता हो डॉल। यो बता, सारी फसल डॉल में हो रही इसकी तो।
0: अरे भाई लड़ो मत।
1: अरे देख लो जी, अब भी वो आपके सामने ऐसी बात कर रहा।
2: हम डॉल काट रहे हैं इसके।
0: अरे सुनिए श्यामलाल जी सुनिए,
2: खेत में अपने कुछ होता नहीं। ताश खेलो
1: भाई, तू अपने खेत में करना जो करना।
3: अरे भाई सुन जाओ, हमारे पास अधिकारी बैठे हैं, वो बताएंगे आप। सुनो।
2: बताओ जी।
0: अरे भाई लड़ो मत, अपनी आपत्ति मुझे लिख कर दीजिए और उसका निस्तारण हम आराम से करेंगे।
2: लिख दो जा।
0: इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है।
1: हाँ जी हाँ, मैं लिख कर दूंगा जरूरी।
0: प्रधान जी जरा समझाइए इनको।
2: समझ को दरवाजा दिखा।
3: अरे रामलाल श्यामलाल रुक जाओ भाई, ठीक है दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारी समस्या का भी समाधान हो जाएगा।
2: करवाओ जी प्रधान जी।
3: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: आप सुनिए, देखिए भैया चकबंदी का उद्देश्य किसी को लाभ या हानि पहुँचाना नहीं है। कोशिश यही रहती है कि प्रत्येक किसान को उसके अधिकार के अनुरूप समतुल्य भूमि मिल जाए और किसी को कोई आपत्ति हो तो वो हमें बता दे।
4: जी हमें कोई आपत्ति नहीं है, सारे खेत मिलकर एक हो गए, इससे अच्छा और क्या होगा।
0: ठीक है रामस्वरूप जी आप बताइए।
5: देखो साहब हमें तो कोई आपत्ति है ना, बड़ी खुशी की बात है जी, अब तो सारे खेत एक साथ हो गए और खेती करनी आसान हो जाएगी जी हमारी तो।
6: पिताजी अब हमारा टाइम भी बचेगा और खेती से लाभ भी मिलेगा।
5: हाँ बेटे अब सही राढ़ंग अब लगेगा।
7: मोहन के बापू।
5: हाँ जी।
7: अब तो उम्मीद लग रही है आने वाले टाइम में ना, खेतों तक पहुँचना, सिंचाई करना, खेती करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा।
5: ठीक कह रही तू, पहले तो देखो 4 गुनी मेहनत करनी पड़ रही थी और अब तो कम मेहनत में ज्यादा फसल मिलेगी ज्यादा।
7: हाँ जब हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो फायदा भी ज्यादा ही होगा। मैं
5: अब तो तू भी आ जाए करिए खेतों पर घूमने के लिए।
7: हाँ यो काम और दे तो, घर का थोड़ा है मेरे पास।
0: देखिए किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं उन्हें एक एक करके बुलाया जाएगा और उनकी समस्या का भी समाधान कल या परसों तक हो जाएगा और अंतिम सूची कल ही हम जारी कर दें।
8: ठीक है भाइयों अब हम चलते हैं, कल जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपके गांव में आ जाएंगे।
3: ठीक है साहब, इन दोनों का समाधान तो कर देना। चलो चलो भाई सब अपने अपने खेतों में चलो और काम में लग जाओ।
5: चलो भैया।
7: अरे मोहन।
6: हाँ मम्मी।
7: आज तो मैं भी आई थी खेत पे, अरे बड़ा बढ़िया हो गया, सारे खेत एक हो गए हमारे, अब तो भाग दौड़ की जरूरत ही ना बची, अब तो पूरे मन से खेती करेंगे सब मिलके।
6: हाँ मम्मी बिल्कुल, अब तो आना जाना में टाइम बचेगा।
7: हाँ बेटे।
5: भाई मारी तो ये औलाद जाने कितनी देर तक सोवेगी। ले अब खेत धोरे को आए तो यो मारा मोहन ये भी तक सोता है ना उठा। अरे मोहन उठ जा भाई, सुबह हो गई, खेत पर कुचल कुछ काम धाम कर लेंगे, अब तो दूर भी ना जाना पास ही जाना, उठ जा भाई जल्दी उठ जा।
6: अरे पिताजी अब तो तुम मेरे पीछे ही पड़े रहो, अब तो योरिया खेत गांव के पास को।
5: हाँ तो धोरो को आ गया खेत तो हूँ तो काम ही ना होने का, बगैर जाओ काम कर लेंगे हम तो।
6: ठीक है पिताजी तुम चलो, मैं आया अभी बस एक मिनट में।
5: जल्दी आ जाइए देख।
3: अरे रामस्वरूप भाई क्या हाल चाल है, अब कैसी चल रही है आपकी खेती बाड़ी, अब तो आपका खेत एक जगह हो गए।
5: राम राम प्रधान जी राम राम। देखो जी अब तो सब ठीक हो गया, खेत घूमने का चक्कर ही खत्म हो गया प्रधान जी।
3: अरे रामस्वरूप भैया आज फिर टीम आएगी।
5: अच्छा।
3: और उन दोनों की समस्या का समाधान करके जाएगी, वो जो परसों लड़ रहे थे दोनों।
5: चलो ठीक है प्रधान जी सब ठीक हो जाएगा, उनको भी अपनी अपनी पसंद के खेत मिल जाएंगे।
4: क्या बात मोहन बेटा, फसल बड़ी अच्छी लहरा रही इस बार तुम्हारी।
6: अरे हरिराम चाचा सब सही हो गया, अब देखो खेत धोरे को आ गए, टाइम मिल रहा तो टाइम से खेत में को आ जा।
4: बहुत बढ़िया हो गया भैया, हमारा चेक भी जो नहर पार कट गया। नहर से लेकर उधर रास्ते तक और इधर दो जो पक्की सड़क जा रही इस पर मिल रहा।
5: अरे अब तो हरिराम भैया थारी खेती भी बढ़िया हो रही।
4: बढ़िया होगी भैया, पक्की सड़क पा गया जा।
5: भैया चकबंदी के बड़े फायदे हैं। हाँ अब देखिये अब दोपहर भी हो गई, कहाँ खेत तो घूम रहा है। चल बेटे मोहन तू भी चल घर को चल रहे हैं, अब जब दोपहर हो गई।
4: चलो भैया वो अल्लाह की माँ आई ना अभी बता कहाँ से।
5: आ जाइए।
4: हाँ ठीक है भैया
5: घर आ जाइए, तेरा ही तो सब कुछ।
4: अच्छा भैया राम राम
6: राम राम
5: राम राम।
6: ठीक है पिताजी मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करूँ, चलो बैठो तुम इस पर को।
5: हाँ चल भैया घर को चल रहे हैं।
7: आ गए जी, पानी वानी ले आऊं?
5: अरे पानी पूनी तो ठीक है, रोटी उट्टी भी बन गई है ना?
7: हाँ जी तैयार है।
5: और वो हरिराम के लिए भी बनाई ना, वो भी आवेगा?

0: क्या फिर आ जाएगा? तुमने तो मेरा डबल ड्यूटी लगा दियो।
1: क्या बात कर रही?
0: तेरे रोज का ही बला, उसकी घरवाली ना है क्या घर पे?
1: अरे देखे कोई बात ना, दो रोटी खाई लेगा तो कुछ ना कमी आया करती। आ जाएगा, रोटी सेक ले उसके लिए भी।
0: अच्छा बना रही।
2: पिताजी।
1: हाँ बेटे।
2: तुम खाना खा कर चलो, सभी गांव वाले जा रहे हैं और मैं भी आता हूँ काम निपटा कर।
1: ठीक है, जल्दी आ जाइए, मैं चल रहा।
3: आओ भाइयों, अब सब बैठ जाओ, तहसील की टीम आ गई है और आज यो काम फाइनल हो जाएगा।
4: सभी गांव वालों को मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार जी, नमस्कार।
5: राम राम, राम राम जी।
1: तो नमस्कार किसान भाइयों, और सब शांत होकर हमारी बात सुन लीजिएगा।
5: हाँ जी, सुनाओ जी, सुनाओ।
1: देखिए, हमारे पास एक समस्या आई थी और हमने उन दोनों किसान भाइयों की समस्या का समाधान कर दिया है। दोनों के खेत के बीच में नाली की व्यवस्था कर दी गई है, अब कोई लड़ाई नहीं होगी ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, और लिस्ट फाइनल करके हमने लगा दी और अब आपके खेत व्यवस्थित हो गए हैं। तो आप नई तकनीक अपनाएं, जैसे संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करें और भैया समय पर अपनी बुआई करें, जल संरक्षण करें, उन्नत बीजों के माध्यम से खेती करिएगा और लाभ कमाइएगा, और अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझिए, सही जानकारी लीजिए, अभिलेखों का सम्मान कीजिए और किसी भी विवाद का समाधान कानूनी प्रक्रिया से कीजिए। उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे।
6: ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है।
3: अरे भैया राम स्वरूप।
6: हाँ प्रधान जी।
3: अरे ये जो आपके भाई हैं रामलाल और श्यामलाल, भाई इनसे पूछो तो सही, अब तो खुश हैं ये।
6: प्रधान जी अब ये दोनों भैया बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि अब तो इन दोनों के चक्के बीच में कोई नाली निकल गई पानी की।
3: हाँ, और भैया जो भी डोल काटेगा उसके खेत में ही पानी टूट जाएगा।
6: बिल्कुल, क्यों भैया तुम दोनों खुश हो ना?
5: हाँ जी खुश
7: है। अजी प्रधान जी, हम तो खुश हैं।
6: प्रधान जी सब ठीक हो जाएगा, अब इनका कोई विवाद ना रहा। तुम्हें कुछ बात कहनी हो तो तुम कहो।
3: हाँ, कि भाइयों बहनों, चकबंदी की सफलता केवल सरकार या अधिकारियों से नहीं बल्कि किसानों के सहयोग से ही संपन्न होती है।
6: कह तो तुम ठीक रहे।
3: तो सभी किसान भाई एक साथ मिलकर बोलें, एकजुट
8: किसान समृद्ध किसान,
3: सही चकबंदी खुशहाल किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान।

अभी हमारे किसान भाई ने सुना ये प्यारा सा नाटक जिसका नाम था चकबंदी। इसमें आलेख था अंकित कुमार का, प्रतिभागी कलाकार आलोक कुमार, सुविंदर सिंह, प्रमोद सिंह, नरेश पाल, अंकित कुमार, सुरेंद्र कुमार, सोहन शर्मा और कुमुद सिंगल। निर्देशक अंकित सैनी और प्रस्तुतकर्ता थे सोवी शर्मा। देखो कितना अच्छा नाटक यो चकबंदी पर हमारे किसान भाई ने सुना। और भैया अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, पर भैया उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देखो संदेश तो भैया हमारे किसान भाई ने सुन लिया, और भैया आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भैया खेती किसानी की। देखो भैया हमारे जो किसान भाई हैं खेती करते हैं और उसके साथ साथ भैया पशुपालन भी करते हैं और भैया लाभ भी कमाते हैं। पर भैया लाभ कमाने के लिए पशुओं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात का जो मौसम होता है पशुपालन के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भैया इस मौसम में अधिक नमी, कीचड़, जलभराव और भैया मक्खी मच्छरों की संख्या बढ़ जाने से पशुओं में संक्रमण रोग होने का खतरा बना रहता है। तो भैया इसके लिए बरसात के मौसम में भैया पशुओं को आवास का भैया सही प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, जिस समय पर जो हमारे पशु हैं वो स्वस्थ रहें और भैया दूध का उत्पादन जो हो वो बढ़ता रहे। और भैया उसके लिए हमारे किसान भाई कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। एक तो भैया सबसे पहले जो हमारी पशुशाला है वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बारिश का पानी जमा ना हो। दूसरा भैया फर्श को जो अपने आसपास की ज़मीन है भैया उसे थोड़ा सा ऊंचा बनाना चाहिए, जिससे भैया पानी आसानी से बाहर निकल जावो और भैया पशुशाला के चारों ओर उचित जल निकासी की व्यवस्था हमारे किसान भाई को करनी चाहिए। और भैया एक बात का ध्यान रखना कि फर्श हमारा फिसलन भरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पशु होते हैं वो फिसलने से चोट लग जाती है और उससे पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो इस बातों का ध्यान रखना। और भैया देखो कभी कभी बरसात में पशुशाला की हम पानी भरा हो जाता है या गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो भैया हमें पशुशाला की नियमित साफ़ सफाई जरूर करनी चाहिए। गोबर और गंदगी को रोज़ भैया हटाकर उसे भैया एक स्थान पर इकट्ठा कर लेना चाहिए, जिससे भैया पशुओं को आराम मिले, क्योंकि भैया जो हमारे पशु होते हैं वो गंदगी में बैठ नहीं पाते हैं, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना। और भैया पशुशाला में पर्याप्त हवा, मतलब भैया वेंटिलेशन की और भैया प्रकाश का प्रबंध होना चाहिए। और भैया छत जो है वो मजबूत होनी चाहिए, उसमें भैया पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया हमारे गांव में जैसे आसपास भैया या ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ किसान भाइयों की छत भैया कच्ची होती है, तो भैया उसमें भैया पानी का रिसाव ना हो। अगर ऐसी कोई समस्या हो तो भैया हमारे किसान भाई उसकी मरम्मत कर सकते हैं और भैया उसे सही कर सकते हैं, तो इन बातों का ध्यान भी हमारे किसान भाई को रखना। और भैया एक बात का और ध्यान रखना, क्योंकि बरसात का समय चल रहा है और ऐसे में भैया मक्खी मच्छर और भैया अन्य जो कीट हो वो तेज़ी से बढ़ते हैं, और भैया उसके नियंत्रण के लिए समय समय पर कीटनाशक दवाओं का हमें छिड़काव करना है। और भैया हमने घर के आसपास पशुशाला के आसपास पानी का जमाव बिल्कुल भी नहीं होने देना। और भैया बात आती है पशुओं के चारे की, तो भैया उसके साथ साथ भैया हमें पशुओं को चारा भी देखना देना है, जैसे भैया पशुओं को सूखा चारा और हरा चारा, और साथ भैया अपने पशुओं को स्वच्छ पानी जरूर देना है। भैया बरसात का समय और बरसात में क्या होता है कि बारिश के कारण भैया हमारा जो चारा वो भीग जाता है, तो भीगा हुआ चारा या फपून लगा हरा चारा हम अपने पशुओं को नहीं खिलाना, इससे भैया होता है कि जो हमारे पशु हैं उसकी पाचन जो संबंधित समस्या उसमें पैदा हो सकती है और पशु हमारा बीमार पड़ सकता है, तो इन बातों का भी भैया ध्यान रखना। और भैया हम हरे चारे को भैया जैसे हमारे हरा चारा हम घर से काट या खेत में से काट कर लाते हैं, तो भैया उन्हें साफ और सुरक्षित जगह में रखना है, खुले में नहीं रखना है। और भैया बरसात में पशुओं में भैया स्वास्थ्य जो उनके स्वास्थ्य है उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, तो उसके लिए भैया हमारे किसान भाई समय समय पर टीकाकरण जरूर कराएं। भैया यदि हमारे किसान भाई अपने पशु में देखते हैं कि उसे बुखार है या दस्त है भैया या भूख कम लग रही है, तो ऐसे कोई लक्षण अगर हमारे किसान भाई देखते हैं तो भैया वो पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं और अपने पशु का इलाज करा सकते हैं। तो भैया कुल मिलाकर बात यूँ निकल कर आती है कि बरसात के मौसम में पशुओं का आवास साफ सूखा और हवादार और भैया जलभराव मुक्त होना चाहिए, भैया उसकी नियमित साफ सफाई, उचित जल निकासी, कीट नियंत्रण और स्वच्छ चारा पानी समय समय पर देखभाल अपनाकर जो हमारे पशु हों भैया उन्हें रोगों से मुक्त और सुरक्षित रख सकते हैं। और भैया देखो आवास प्रबंधन पशुओं के भैया स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करता, बल्कि भैया पशुओं के दूध उत्पादन बढ़ाता है, पशुपालक की आय बढ़ाने में भैया मदद करता है और भैया एक अच्छा आय का स्रोत भी बनता है, जिससे पशुपालकों को लाभ मिलता है। और भैया जब लाभ की बात आती है तो भैया लाभ एक और चीज़ से भी मिलता है, वो है भैया मनोरंजन से। तो भैया ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये प्यारी सी रागनी।

ओ घननाथ ने अलग जगह के, अभी हमारे किसान भाइयों ने भुवनेश्वर की आवाज़ में प्यारी सी रागनी सुनी। और देखो भैया, हमारे किसान भाइयों का मनोरंजन भी हो गया होगा और भैया किसान भाइयों की जो थकान है वो भी मिट गई होगी। और भैया देखो, अब समय आ गया है मौसम की चिट्ठी का। और भैया ये मौसम की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। और भैया इस चिट्ठी के अनुसार अब भैया आने वाले 1-2 दिन भैया बादल छाए रहेंगे और भैया कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। तो हमारे किसान भाई भैया कृषि कार्य मौसम को देखकर करते रहें। और देखो, बात करो अब घड़ी की, तो भैया घड़ी बिल्कुल भी आपसे बातचीत करने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो भैया चलते चलते अपने किसान भाई को अपना पता जरूर बता दें, क्योंकि भैया हमारे किसान भाइयों को हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, कार्यक्रम में क्या सुधार चाहते हैं। तो भैया इसके लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारा पिन कोड है 2467663 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457072888। तो किसान भाइयों, इस पते पर हमें आपकी चिट्ठी पत्रिका रहेगा इंतजार। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भाई अंकित कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीपाल सांगवान की वार्ता, लोक संस्कृति के प्रसार में आकाशवाणी।
1: बहुत दिनों पहले की बात है जबकि आकाशवाणी यानी कि रेडियो के उदय भविष्य के गर्भ में था। हमारी लोक संस्कृति तब भी समृद्ध थी, लेकिन उसका प्रसार प्रचार मंदर गति से था। नव

पहली दुल्हन उस संस्कृति का प्रसार क्या करती थी। जब मायके से दूर अपने ससुराल जाती थी तो वहाँ की बालाएं उससे संवाद क्या करती थी, उससे लोक कथाएं, लोक संगीत और उसके क्षेत्र की अनेक लोक पद्धतियों का हाल सुना करती थी। प्रत्येक घर में खूंटियों पर ढोलक टंगी रहती थी। वो अवैज्ञानिक युग का एक सुनहरा युग था। बारह बारह कोस पर दिया जलता था, दूर दूर गांव थे और पालतू कुत्ते की भौंक से ही उन गांव की आबादी या गांव का पता चलता था। जब विज्ञान आम आदमी के जीवन से मैं दस्तक नहीं दी थी, बड़े बड़े शहरों तक में केरोसिन लैंप रात को जला करते थे और वही अंधेरे को दूर करते थे। भूमिका बांधने का मकसद केवल यह है कि हमारी नई पीढ़ी को पता चल जाए कि हमारी पुरानी पीढ़ी कितनी जागृत थी। वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लोक संस्कृति को जीवित रखने की यही उसके मनोविज्ञान का साधन था और मनोरंजन भी उससे ही किया करता था। बहुत बड़े लोक कवि हुए, बहुत बड़े बड़े लोक गायक हुए जो क्षेत्र की लोक संस्कृति का प्रसार किया करते थे। शिक्षा का प्रसार करने के लिए बराबर का धंधा था। किसी किसी गांव में एक आध घर में आदमी ही पढ़ा लिखा हुआ करता था। एक गांव में भी एक दो लोग पढ़े लिखे होते थे, वही लोगों को पढ़ पढ़ कर किस्से कहानियां सुना करता था। भीड़ लग जाया करती थी। भिखारी ठाकुर, राधे श्याम कथावाचक की मनोरंजक किस्सों को पढ़ पढ़ कर सुनाया करते थे। क्या गरीब युग था। वो सन 1900 के आसपास में सांगों की रचना हो चुकी थी। कुछ किस्तों पर सांगों की रचना हुई, कमर ने हाल दे, हीरांझा, लल्लू चौहान आदि सांगों की अनेक रचनाएं हुई जिन्हें लोग बड़े चाव से सुना करते थे। प्रीत सिंह बेधड़क ऐसे ऐसे रेडियो हुए, हमारे लोग गायक हुए जो हमारी लोक संस्कृति को दूर दूर तक पहुँचाया करते थे। यूं तो रेडियो का आगाज सन 1934 में ही हो चुका था, परंतु ब्रिटिश हुक्मरानों ने ये उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो हमारी संस्कृति पर नहीं ध्यान नहीं दिया करते थे कि उसका प्रचार प्रसार हो। उनकी तो और धंधे थे, वो तो उन चीज पर ध्यान देते थे ताकि वो माल जो कमावे और दूसरे मुल्कों में पहुंच जाए। तो मुगलों ने हमारी संस्कृति को तरजीह दी तो वो 400 वर्ष तक राज करते गए। ब्रिटिश हुकूमत 100 साल में से भी कम जीवन में चले गए। तहजीब एक इकाई होती है, इसका सम्मान उतना आवश्यक है जितना कि घर में किसी बुजुर्ग आदमी का। इतिहास के पालने में कौम जिंदा रहती है। भले ही आज वैज्ञानिक युग में हमारी पुरातन संस्कृति की पहचान धूमिल हो गई हो, लेकिन हमारे आकाशवाणी केंद्र उसे जीवित रखे हैं। और यही नहीं है, हमारी केंद्रीय प्रादेशिक सरकारें पूरी तरह जागरूक हैं। ये सांस्कृतिक विरासत कभी मिटती नहीं, चाहे वो आदिवासी क्षेत्रों में हो या पुरातन समाजी में सुटक्षी हो, लेकिन हर सूरत में जिंदा रहती है। हमारी पुरातन संस्कृति को विज्ञान का यह चमत्कार रेडियो आज जिंदा रखे हुए है। भले ही हमारी वर्तमान पीढ़ी अपने पुरातन युग से भटक गई हो, परंतु गाये बगाये आकाशवाणी की आवाज उनको परिचित कराई जाती है। यही नहीं, आकाशवाणी के सिद्धत मनीषी अपनी सूझबूझ से समस्त पीढ़ियों का अवगत कराने के लिए तत्पर रहते हैं। आकाशवाणी ने ही बड़ी बड़ी शक्तियों को जन्म दिया है जिनकी संस्कृतियों को दूर दूर तक पहुँचाया है। हरियाणा के कोहनर ग्राम के वासी स्वर्गीय पंडित हृदयराम शर्मा आकाशवाणी के ऐसे ही एक प्रसारक थे। वो कोरवी भाषा के महान एंकर थे। दिल्ली में उन्होंने रेडियो के अलावा भी ग्रामफोन कंपनी में बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया है। दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी देशों में क्षेत्र के भागों में उन्हें संस्कृत को सार्थक पहुँचाया है। इस 53 वर्षीय व्यक्तियों के निर्वाचक को उन्हें सहयोग देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो लंबे समय तक उनकी छत्र छाया में रहा है। कोरवी बोली का बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें दक्षिण उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और समस्त हरियाणा के अतिरिक्त हरियाणा के अलावा भी देश का बहुत बड़े क्षेत्र की संस्कृति एक सी ही है। आज हमारी नजेबाद की आकाशवाणी केंद्र भी इस श्रेणी में आता है जो इस भूभाग के विस्तृत क्षेत्र में कार्यक्रम को प्रसारित करता है। यहाँ के मनीषी भी गहनता से संस्कृतियों की गतिविधियों का पालन करते हैं।
संस्कृति ही किसी

0: समाज की पहचान होती है। यूं तो देखा जाए तो संस्कृति में बहुत ही बात आती है, जिनमें पहनावा, बोलचाल, भाषा, संगीत, नृत्य आदि, परंतु आमोद प्रमोद की गतिविधियों में इसको शामिल किया गया है। लेकिन मनोरंजन के साधन में ही इसी पहचान को तरजीह दी गई है। इससे कुछ वर्ष पहले यूनानी अकलांता सिकंदर जिस झेलम दरिया के किनारे उसको इस क्षेत्र के संति और अनेक उतार चढ़ाव देखे, उसकी बोली के आने के शब्दों का उन्हें पहचान कराई और लोक संगीत और वाद्यों का यही से संस्कृति में विलय हुआ। आज भी बहुत से हमारे वाद्य यंत्र ईरान से आए हैं। हमारी संस्कृति ईरान के सिकंदर के साथ साथ ईरान में भी गई है, क्योंकि हमारी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, बड़ी स्वस्थ है और उनके सैनिकों की सिंध प्रदेश में ही उनकी बहुत सी जो आबादी थी ना किसानों की, वो सिंध प्रदेश में रह गई थी। अधिकतर वो सब किसान थे। उन्हें यहाँ की आबहवा, रहन सहन बहुत पसंद आया। वो दरिया पार कर निकट के राजस्थानी क्षेत्र में बसकर खेती करने लगे। वो इस संस्कृति में रच मच गए। आहिस्ता आहिस्ता रोटी बेची का भी आपस में आदान प्रदान होने लगा। हालांकि अब यूनान आदि संस्कृतियां उथल पुथल के भीषण दौर में चली गई हैं, परंतु संस्कृतियां आज भी जिंदा हैं। कई शताब्दियों गुजर गई लेकिन तहजीब आज भी जिंदा है। संस्कृतियां का भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि हमारे आकर्षणीय केंद्र इसको जीवित रखे हैं। रोजाना उनका घंटे का प्रोग्राम इसी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए होता है। इसकी वजह से कि हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं किंवदंतियां नहीं हुई, जबकि सुधार समिति के अनुसार ही बहुत ही हुआ है, क्योंकि परिवर्तन शास्त्रिक सत्य है और परिवर्तन हर क्षेत्र में अनिवार्य है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति पर समय समय पर अलग अलग रंग चढ़े हैं, लेकिन मूल तत्व वही है। क्षमा करना कि हम अपने विषय में बहुत बढ़ चढ़ कर मुखातिब हो रहे हैं। विषय वही सांस्कृतिक संसाधनों का है। विषय गंभीरता के महादेव नजर आती है। उन प्रसंग को समावेश करना आज हमको आवश्यक मालूम देता है जो हमारी संस्कृति को अस्तम है और आज ही तहजीब के पहरेदार है। भारत नामक विश्व युद्ध के बाद पवित्र नदी जमुना नदी के पूर्व का क्षेत्र भयानक जंगलों से आम तब्दील हो गया था, क्योंकि महाभारत के बाद में तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं अपने दादा परदादा से सुना करता था कि हमारा जो पश्चिमी भाग है जमुना का, पूरी भाग है जमुना का, वो सारा का सारा ही वो वनों में तब्दील हो गया था, आबादी नहीं रही थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति जिंदा है। लेकिन इस विषय में हमारी संस्कृति को जिंदा रखने में भी हमारी जो रिकॉर्ड कंपनियां हैं उन्होंने बड़ा भी काम किया है। सन 1852 की गंग नहर और रेल की लाइन के निर्माण से पूरी भाग का रूप ही बदल गया। अनेक नदियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। गांव और शहर उजड़ गए, लेकिन हमारी संस्कृति का अस्तित्व जो का तो है। कहना का तात्पर्य है कि संस्कृतियां न मिटती हैं और न कभी तब्दील होती हैं, क्योंकि पुरातन संस्कृतियां जहन में रची बची रहती हैं। जैसा कि वाचक ने सुधी कृताओं से रूबरू था किया था कि महाभारत विश्व युद्ध के बाद काफी भौगोलिक परिवर्तन होते हुए है। हाँ, नई पीढ़ी अपनी संस्कृति विरासत को भूली बिस्ती रहती है, वो विमुख हो गई है, क्योंकि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से तालमेल रखना पसंद नहीं करती। बहुत पुरानी कहावत है कि ज्ञान का विकास होता है घर कुंबे में बैठ के और संस्कार बनते हैं मित्र मंडली में बैठ के। आज नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का तरजीह नहीं देती। केंद्रीय व राज्यों के तथा प्रशासन समग्र केंद्र सुदृढ़ता से हमारी संस्कृति के अलावा कृषि क्षेत्रीय गतिविधियों का पूरा कार्यक्रम बनाकर प्रसार करती है। देश प्रदेश की संस्कृतियां धरोहर की आज भी रक्षा करती है हमारी आकाशवाणी। लेकिन बखूबी अभी हम जो बात सोचते हैं वो अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे युवाओं ने अपनी बोली खत्म कर दी है। आज वो भाषा के जानकार हो गए हैं, जिसकी हमारे युवा पीढ़ी को अपनी पुरातन धरोहर के प्रति जागरूक और उसको बढ़ावा दिया सके। हमारी आकाशवाणी का प्रसार मनोरंजक के साथ साथ हमारी संस्कृति विरासत को भी प्रोत्साहन कर रही है।
1: अभी आप सुन रहे थे विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीपाल सांगवान की वार्ता, जिसका विषय था लोक संस्कृति के प्रसार में आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:55 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, छाया गीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं मुकेश की आवाज के इस गीत के साथ। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है यहूदी।

मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना यहूदी फिल्म का गीत, और आइए इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार को फिल्म 9-2-11 से। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है SD बर्मन ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में भी आपने सुना 9-2-11 फिल्म का ये गीत। छाया गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब हम आपको सुनवाते हैं एक फूल दो माली फिल्म का ये गीत आशा भोंसले की आवाज़ में। गीत लिखा है इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और संगीत दिया है रवि ने।

छाया गीत कार्यक्रम में आइए। अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनाते हैं, राजा और रंक फिल्म से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

राजा और रंक फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 हुए हैं। अब सुनिए देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशगान एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:15 हुए हैं। अब सुनिए आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा। रात 9:30 पर कार्यक्रम कंट्री वाइड और इनसाइट्स। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 7:32 पर

सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे साकिब अक्कासी और साथियों की आवाज में कव्वालियां। रात 10 बजे आप सुनेंगे उपेंद्र नाथ अश्क का लिखा नाटक लक्ष्मण रेखा। निर्देशक सत्येंद्र शरत और प्रसारण सहयोग रहेगा सुदर्शन कुमार का। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात 8:15 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत, रात 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से और रात 10:30 पर आपकी फरमाइश के अंतर्गत। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। और आज आपको बता दें कल की प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। कल यानी 24 जुलाई 2026 की रात को 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, और कल रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कल सुबह 9:15 पर आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम जिले की हलचल। कल प्रातः 9:25 पर लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे रामकुमार राठौर की आवाज में आल्हा। कल सवेरे 10:30 पर सजीव फोनिन कार्यक्रम जागरूक श्रोता के अंतर्गत बातचीत का विषय होगा बाढ़ से पहले और बाद की तैयारी। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे कल दिन में 11:30 पर। कल दोपहर 12 बजे एक और प्रायोजित कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे हमारी बेड़ियां। कल दोपहर 12:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर संसार, इसके अंतर्गत चर्चा का विषय होगा स्वस्थ आहार और संतुलित जीवन। कल दोपहर 1:15 पर हम आपको सुनवाएंगे कृषि निर्यात लाइव चौपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। सुरेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह के संयुक्त संचालन में आप सुनेंगे ग्राम पंचायत फपुंदा ब्लॉक व तहसील मेरठ में आयोजित कृषि निर्यात लाइव चौपाल की बातचीत। कल शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयासों के अंतर्गत जिन योजनाओं की जानकारी दी जाएगी वे होंगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वाधार घर योजना और वन स्टॉप सेंटर योजना। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक मामले में जिम्मेदारों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

0: देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। अयोध्या में आज विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की हुई अहम बैठक। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और व्यवस्थाओं में परिवर्तन का किया गया स्वागत। और प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा, शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आज प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के इस फैसले का विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। बाराबंकी के छात्र निहाल अग्रवाल ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने की सरकार की ये पहल सराहनीय है।
1: इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम सरकार अकाउंटेबिलिटी ले रही है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आगे चीजें ऐसी ना हो। इसके लिए मोदी जी ने ट्वीट किया है कि वो फास्टैग कोड बनाएंगे, जो जिम्मेदार हैं उन पे एक्शन लेंगे। हमारी यही मांग थी कि जो भी अकाउंटेबल लोग हैं, जिनसे गलती हुई है, जिन्होंने ऐसा काम किया है, उनको सजा मिले। हमारी सरकार से यही मांग थी, सरकार हमारी मांग पूरी कर दे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के पेपर लीक के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोड बनाने के फैसले को राष्ट्र की निर्णायक आवाज बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नए भारत में युवाओं का हित सर्वोपरि है। उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कानून शीघ्र और कठोर दंड देगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। विपक्ष सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करें ताकि छात्रों से जुड़ी चिंताओं का समाधान हो और भविष्य में उनके साथ ऐसी घटनाएं ना हो।
2: लोकतंत्र में चर्चा से ही समाधान निकलता है, और सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और सदन में हम उसको स्पष्ट भी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा देश का सबसे बड़ा हमारा भविष्य हो। प्रधानमंत्री जी हमेशा हर नौजवान को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, और हमारी सरकार तैयार है कि देश के नौजवानों के साथ कोई भी अन्याय ना हो।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जिले के पहले 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में सुदृढ़ हुई कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं विकसित भारत की संकल्पना को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आवागमन को आसान बनाने का माध्यम है, और आवागमन का माध्यम जितना अधिक तेज होगा उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी और समृद्धि भी आएगी।
3: ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी, और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी, फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है।
0: अयोध्या में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक के बाद आज विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की बैठक हुई। मणिरामदास छावनी में हुई इस बैठक में रामलला मंदिर की धार्मिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में संतों ने ट्रस्ट द्वारा धार्मिक समिति के पुनर्गठन का स्वागत किया। इससे पहले कल हुई ट्रस्ट की बैठक में मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की परंपरागत प्रमाणिकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया गया था। बैठक से

0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में साल 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती नवीनतम उपलब्ध तकनीकों का उपयोग करके देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। इस मौके पर अमरोहा के गजरौला स्थित रेडियो संग्रहालय के संस्थापक राम सिंह बौद्ध ने कहा कि मौजूदा दौर में भी आकाशवाणी ज्ञान और विज्ञान को फैलाने का सशक्त माध्यम बना हुआ है।
2: आपको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की और विशेषकर रेडियो सुनने वालों की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य को ज्ञान विज्ञान मनोरंजन की ओर सब लोगों को अपना विषय बताने के उसके अपने उद्देश्य के प्रति निरंतर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात रेडियो पर शुरू कर रेडियो पुनः लोगों के हाथों में आ गया है और इसके सुनने वालों की संख्या लगभग 50 करोड़ तक पहुंच चुकी है।
0: आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाले सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश के कई जनपदों में तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। इसी क्रम में हापुड़ में यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने 17 कांवड़ मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल बाइक पुलिसकर्मी कांवड़ मार्गों, प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर निरंतर पेट्रोलिंग करेंगे। वहीं वाराणसी में शिवभक्तों और कांवड़ यात्रियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा स्वच्छता के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में आज से गंगा नदी में इलेक्ट्रिक यात्री नौकाओं का संचालन शुरू हो गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण और गेल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट परियोजना के तहत ये शुरुआत की गई है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। इस बीच वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक मामले में जिम्मेदारों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। अयोध्या में आज विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की हुई अहम बैठक। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और व्यवस्थाओं में परिवर्तन का किया गया स्वागत। और प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा, शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने

0: कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:32 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं साकिब अक्कासी और साथियों की आवाज़ में कव्वालियाँ। आइए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं इस कव्वाली के साथ।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुगम संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं साकिब अक्कासी और साथियों की आवाज़ में कव्वालियाँ। आइए पेश है एक और कव्वाली।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र और इस कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं साकिब अक्कासी और साथियों की आवाज में कव्वालियां।

जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और डीजीए से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपने परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के

0: समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गीत फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

गीत फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, और श्रोताओं गीत संध्या कार्यक्रम का आखिरी नगमा हम आपको सुना रहे हैं रंग फिल्म से, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। ये गीत लिखा है समीर ने और संगीत

रंग फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए, इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शोले फिल्म के कुछ गीत। शोले, जिसका नाम सुनते ही आपको कई अभिनेताओं के कई संवाद याद आ जाते हैं, यानी इस फिल्म में हर किसी अभिनेता ने ऐसे अमर किरदार को निभाया जो आज भी लोग उनकी मिमिक्री करते हैं, और जैसे ही उनकी जैसी आवाज को कहीं सुन लेते हैं तो फिर बरबस ही शोले फिल्म के वो डायलॉग्स याद आ जाते हैं। और भी हम बात करेंगे इस फिल्म के विषय में, लेकिन यहां सुनते हैं शोले फिल्म का ही ये गीत किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज में। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में ये गीत है और लिखा है आनंद बख्शी ने।

एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शोले फिल्म के कुछ गीत। श्रोताओं, ये फिल्म रमेश शिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म थी और सलीम जावेद साहब ने इसके कई डायलॉग्स भी लिखे। इस फिल्म के लेखक के तौर पे उन्हें याद किया जाता है। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अमजद खान ने। ये फिल्म वैसे ही काफी लेंथी फिल्म यानी काफी समय की फिल्म थी और इसी वजह से इसके कुछ सीन्स को काट भी दिया गया था। आपको एक और बात याद दिला दें कि इस फिल्म में कव्वाली भी थी जो रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन अवधि अधिक बढ़ने के कारण कव्वाली को इसमें शामिल नहीं किया गया। और जहाँ तक बात करें इस फिल्म की उपलब्धियों के विषय में, तो इस फिल्म ने कई शानदार पुरस्कार जीते। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संपादक का पुरस्कार मिला था M.S. शिंदे साहब को शोले फिल्म के लिए, और अमजद खान ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार भी जीता, और द्वारिका द्वेचा ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन रंगीन बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार भी इस फिल्म के लिए जीता था। इस फिल्म में जहाँ तक सूरमा भोपाली की भूमिका की बात की जाए तो वो भी एक अमर भूमिका, और अंग्रेजों के जमाने के जेलर की भूमिका, मतलब जिस किरदार को याद किया जाए वो अपने अद्भुत अभिनय के रूप में हमें याद आता है। और भी बात करेंगे इस फिल्म की, सुन लेते हैं किशोर कुमार की आवाज़ का ये प्यारा सा नगमा।

एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शोले फिल्म के गीत। और ये फिल्म जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म सम्मान प्राप्त करने वाली फिल्म है, इसे 1999 में बीबीसी इंडिया द्वारा सहस्त्राब्द की फिल्म घोषित किया गया था। वर्ष 2002 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की 10 सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाली फिल्म थी शोले। श्रोताओं, इस फिल्म ने 2004 में स्काई डिजिटल के एक सर्वेक्षण में 10 लाख ब्रिटिश भारतीयों के मत से इसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म का दर्जा भी दिया था। और ये फिल्म अपने दृश्यों के लिए तो जानी ही जाती है, बल्कि अपने शानदार डायलॉग्स के लिए भी जानी जाती है। गब्बर सिंह का किरदार निभाने वाले अमजद खान के कई डायलॉग आज भी लोक प्रचलित हैं। श्रोताओं, ये वो अमर फिल्म है, इसे जब भी देखो तब पहले से ज्यादा आनंद देती है। आइए इस फिल्म का एक और गीत आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ के इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे शोले फिल्म के गीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के

0: पर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
2: At the level of the Prime Minister,
3: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह

0: विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक

0: के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
2: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा।

0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में, रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government invites students protesting over NEET paper leak issue for talks. Prime Minister Narendra Modi announces fast-track courts for paper leak cases. Deadlock continues in Parliament over NEET paper leak issue. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicușor Dan in Bucharest tonight. Normal life disrupted as heavy rainfall lashes several parts of Gujarat. Prime Minister Modi assures all possible help. 23rd Commonwealth Games set to begin at Glasgow tonight. And Vaibhav Suryavanshi steers India to 7-wicket victory in first T20 cricket match against Zimbabwe. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
3: वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डायलॉग। द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑलवेज ओपन एंड यू आर वेलकम टू एंगेज इन डिस्कशंस एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरी इशू इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मूवमेंट एज वेल एज एनी अदर मैटर्स ऑफ कंसर्न। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर श्री जेपी नड्डा विल होल्ड डिस्कशंस एंड आई विल आल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग।
2: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
1: अर्लियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट द सेंटर विल सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू एंश्योर स्विफ्ट एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व इन नीट पेपर लीक्स एंड असर्टिंग दैट प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर रिमेन्स द गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर of the youth of the country. His statement comes amid ongoing students' protest at Delhi's Jantar Mantar over NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following the opposition's protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion.
4: Today, I appealed on behalf of the entire NDA for a discussion on NEET. After meeting Mr. Kharge and some other opposition leaders, yesterday we were hopeful that a discussion on NEET would take place today. However, the Congress party imposed conditions. Imposing conditions suggests that your intentions are not right, as it appears that you want to prevent the discussion.
1: We have more from a correspondent.
5: For the fourth consecutive day of monsoon session, the

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा को बात करने के लिए मदऊ किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलात के लिए

0: उड़ान के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश के बायस मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। वजीर आजम मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। 23वीं नौरत मुश्तरका गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा से ये कहते हुए बात करने की अपील की है कि हुकूमत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जारी एहतजाज के तलबा नुमाइंदगान को पिछले 24 घंटों में बात करने की 4 मरतबा पेशकश की गई। उन्होंने एहतजाजी नौजवानों को बात करने के लिए दावत दी। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वजीर JP नड्डा मुजाकरात के दौरान मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि यह बातचीत मरकजी वजीर JP नड्डा की रिहायशगाह या उनके दफ्तर में खुले जहन के साथ की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि बातचीत के बगैर कोई हल नहीं निकलेगा।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री JP नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि हुकूमत खासतौर पर इम्तिहान के पेपर लीक होने के मामले पर तालिब इल्मों की तशवीश से बखूबी वाकिफ है। मीडिया के साथ बात करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके इस जिम्न में भरपूर कार्रवाई की है। उन्होंने मजीद कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान का मकसद तलबा और उनके कुनबों को इस बात की फिर यकीन दहानी कराना है कि जो लोग इम्तिहानात के वकार को मजरूह करने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज के मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में तआवुन करें। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजिशन मुत्तफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत की रजामंदी के बारे में पहले ही मुतला कर दिया है। जनाब रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी से यह कहते हुए अपील की कि वो शरायत ना रखे, क्योंकि इस तरह की शरायत को बहस से बचने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाएगा।
2: वो बहाना ढूंढ रहा आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में शुरू में जो बोलता है अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा।

आज नई दिल्ली में इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जदीद और काबिल तश्दीद तवानाई के मरकजी वजीर जनाब प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस चार रोजा कॉन्फ्रेंस में सरकारों, पॉलिसी साजों, सनती रहनुमाओं, सरमायाकारों, इख्तराकारों और स्टार्टअप्स और बैन अल्अक्वामी इदारों को माहौल के लिए साजगार तवानाई में मुंतकली को रफ्तार देने और बाहमी इश्तराक के फरोग में तआवुन के लिए यकजा होने का मौका फराहम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। जनाब जोशी ने कहा कि यह समिट मुतालिका फरीकों को दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाली, माहौल के लिए साजगार तवानाई के मार्केट्स और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मईशतों में से एक में शामिल होने का मुनफरिद मौका फराहम करेगी। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में भारत की गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत 300 गीगावाट से भी तजावुज कर जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 2014 में गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत महज 75 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 298 गीगावाट हो गई है। दिफाई तहकीक तरक्की के इदारे DRDO ने ओडिशा के साहिल से मुत्तसिल APJ अब्दुल कलाम जजीरे से लंबी दूरी के जमीन से फजा में वार करने वाले मिसाइल कुशा की परवाज का पहला आजमाइशी

आज नई दिल्ली में इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जदीद और काबिल तश्दीद तवानाई के मरकजी वजीर जनाब प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस चार रोजा कॉन्फ्रेंस में सरकारों, पॉलिसी साजों, सनती रहनुमाओं, सरमायाकारों, इख्तराकारों और स्टार्टअप्स और बैन अल्अक्वामी इदारों को माहौल के लिए साजगार तवानाई में मुंतकली को रफ्तार देने और बाहमी इश्तराक के फरोग में तआवुन के लिए यकजा होने का मौका फराहम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। जनाब जोशी ने कहा कि यह समिट मुतालिका फरीकों को दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाली, माहौल के लिए साजगार तवानाई के मार्केट्स और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मईशतों में से एक में शामिल होने का मुनफरिद मौका फराहम करेगी। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में भारत की गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत 300 गीगावाट से भी तजावुज कर जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 2014 में गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत महज 75 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 298 गीगावाट हो गई है। दिफाई तहकीक तरक्की के इदारे DRDO ने ओडिशा के साहिल से मुत्तसिल APJ अब्दुल कलाम जजीरे से लंबी दूरी के जमीन से फजा में वार करने वाले मिसाइल कुशा की परवाज का पहला आजमाइशी तजुर्बा कामयाबी से मुकम्मल किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO और दीगर मुतालिका फरीकों को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि यह हुसूलियाबी आ गया है। आज जम्मू कश्मीर में फलियन मंडल प्राबली के नजदीक दरियाए तवी में अचानक तुगयानी के सबब वहां फंसे दो अफराद जम्मू पुलिस और आफात से निपटने के रियासती दस्ते SDRF ने तेजी से और करीबी तालमेल के साथ बचाव कार्रवाई की और उन्हें बहिफाजत बचा लिया गया।

70 किलोग्राम के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कुरानदाजी में सिर्फ 5 खिलाड़ी होने की वजह से मुकाबला करने वाले 3 खिलाड़ी जिनमें लवलीना भी शामिल हैं को बराह रास्त आखिरी 4 सेमीफाइनल में पहुंचा दिया गया, जबकि बाकी 2 खिलाड़ी एक क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल्स में तफाकी के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेंगी, जहां जीतने वाली खिलाड़ी को सोने के तमगे के मुकाबले में जगह मिल जाएगी। दौलत मुश्तरक गेम्स 2026 में सिर्फ 10 खेल होंगे, जो बर्मिंघम 2022 के मुकाबले 9 कम है। ये मुकाबले 8 मील के दायरे में 4 मकामात पर खेले जाएंगे। इसमें एथलेटिक्स, तैराकी, 3x3, बास्केटबॉल, ट्रैक साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, बाउल्स, आर्टिस्टिक जिमनास्टिक, नेटबॉल, बॉक्सिंग और जूडो शामिल है। भारतीय दस्ता पैरा एथलेटिक्स समेत 125 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आज शाम हरारे में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अलावामी मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। सूर्यवंशी के 19 गेंदों में शानदार 50 रन ने भारत को सिर्फ 13 ओवर्स और 2 गेंदों में ही 126 रन का जीत का निशाना आसानी से हासिल करने की राह हमवार कर दी। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए थे। इस सीरीज का दूसरा मैच इतवार के रोज इसी मकाम पर खेला जाएगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा को बात करने के लिए मदद किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर तातुल जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के उनके हम मनसब निकोशोर डॉन के दरमियान बुखारेस्ट में वफ्द की सतह की बातचीत शुरू हो गई है। गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश के बायस मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। वजीर आजम मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। 23वें दौलत मुश्तरका गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आज शाम हरारे में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अलावामी मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। और इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Rewind. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: रिहान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हरित चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और हरित हाइड्रोजन की काफी बात हो रही है, तो एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि हरित हाइड्रोजन क्या है और इसमें हरित क्या है।
2: देखिए, हरित जो है ना, ये जितने भी आजकल डेवलपमेंट है और जो भी हमारी चिंता है वो पर्यावरण को लेकर, और पर्यावरण को लेकर सबसे बड़ी चिंता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। तो अभी जो आप हरित सुन रहे हैं, हरित का कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के होने और ना होने से, जैसे कि किसी एनर्जी को हम या किसी ऊर्जा को हम हरित ऊर्जा कह रहे हैं, वो उसका मतलब ये है कि जिस ऊर्जा को बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा वो हरित ऊर्जा है। इसी तरह से हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन एक बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाली गैस है इंडस्ट्री में। जो इसको बनाने का तरीका अभी तक चल रहा था उसमें CO2 एमिशन था, जो कि पर्यावरण, जैसे कि मैंने बताया, ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण का जो चैलेंज है। तो हरित हाइड्रोजन का मतलब ये है हाइड्रोजन ऐसे तरीके से बनाई जाए जिससे कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ना हो, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड का ना होना, ऐसी हाइड्रोजन जिसे बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकले हैं, वो हरित हाइड्रोजन कहलाएगी।
1: अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने की बात कही है, और देखा जाए तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एक बड़ा कदम भी सरकार की तरफ से लिया गया है। तो इन सारी

0: चीजों को अगर एक साथ रख कर कर देखें तो देश में इसकी जो अब तक की प्रगति हुई है, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, इसमें क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का चैलेंज है यानी ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बिजली सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जब हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली जो बनती थी वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्रोत थी, तो हम बिजली सेक्टर को ग्रीन कर रहे हैं, हरित कर रहे हैं, यानी सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, विंड इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये है कि बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे कि आप अगर उनको इलेक्ट्रीफाई कर दो, जो पहले बिजली से नहीं चलते थे, अब अगर बिजली से चलने लगे तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो जाएगा। जैसे कि सबसे आम एग्जाम्पल आपके सामने है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अगर हम अपनी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल से ईवी की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए कि ईवी से अगर वो चलेंगी तो एमिशन नहीं होगा या कम होगा। और अगर वो बिजली जिससे ईवी चार्ज हो रही है वो हरित है, ग्रीन है, जो सोलर विंड या हाइड्रो से बनी है, तो आपको डबल एडवांटेज हो गया कि आपने डीजल और पेट्रोल के एमिशन भी हटा दिए और इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रीन हुई। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको आप इलेक्ट्रीफाई नहीं कर सकते हो सीधे सीधे, जिनको हम लिटरेचर में हार्ड टू अबेट सेक्टर कहते हैं, जिनको मुश्किल है जिनके एमिशन इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कम करना। उनमें ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, सीमेंट है, स्टील है, फर्टिलाइजर है। तो हाइड्रोजन वहां जो इस्तेमाल होती है वो ग्रे हाइड्रोजन कहलाती है, क्योंकि उसको बनाने में फॉसिल फ्यूल जिन्हें हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन, उनका इस्तेमाल होता है। तो अगर हम उस हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो उन सेक्टर के कार्बन एमिशन भी कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। अब हरित हाइड्रोजन कैसे बनती है? हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें बिजली का इस्तेमाल करना होगा। आप पानी लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसमें, तो उससे हाइड्रोजन बनती है और निकलती सिर्फ ऑक्सीजन है, तो कोई पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं। तो हमारा जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन जो आपने कहा, ये असल में हमारे राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन का एक्सटेंशन है एक तरह से। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी हरित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रांसपोर्ट को भी हरित कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इंडस्ट्री जहां हाइड्रोजन इस्तेमाल होती थी उसको भी हरित हाइड्रोजन से हम रिप्लेस करना चाहते हैं।
0: जिस तरह से आपने तमाम चीजों को जोड़ा है, तो थोड़ा सा अगर पीछे अगर के बात करते हैं तो सरकार का सोलर एनर्जी पर भी काफी फोकस रहा है कि सौर ऊर्जा को अधिकतम देश में बढ़ावा दिया जाए, और कई सारी योजनाएं भी सरकार ने लागू की हैं। तो आपको लगता है कि ये दोनों ही पैरेलल चलने वाली चीजें हैं कि सौर ऊर्जा में भी देश काफी प्रगति कर रहा है और आगे भी करेगा, और हरित ऊर्जा का एक मिशन तो हम अब लेकर के चल ही रहे हैं?
1: नहीं, ये दोनों एक दूसरे को एक तरह से पूरक है, एक दूसरे को समर्थन करने वाली, एक दूसरे की सहायता करने वाली चीज। कैसे होंगी मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिये, हमने पिछले 10-12 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि हम सोलर विंड इनको मानते हैं, उसके अंदर बहुत काम किया है और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है हमारे ऊर्जा सिस्टम में। जो सोलर हमारे पास 10-12 साल पहले 1000 मेगावाट भी नहीं था, आज हम 180 हजार मेगावाट से ऊपर चले गए हैं, और हमारे सामने एक बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड लक्ष्य है, 2030 तक हम कितना करेंगे, 35 तक, 2047 तक और 2070 तक। तो हमारी इसमें बड़ी स्ट्रांग और कंसिस्टेंट पॉलिसी थी, और हमारे देश के जो इसमें लक्ष्य भी थे ना, वो बड़े एम्बिशियस रखे गए कि 175 2022 तक करना था, फिर 500 गीगावाट 2030 तक करना है, फिर 2047 का भी है। 2070 में आप जानते हो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत प्रॉमिस कहे हैं, उसमें से एक ये है कि 2070 तक हमें नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब है कि हम एमिशन कम करेंगे अपने, और अगर कुछ होंगे भी तो उनको एनवायरमेंट में जाने से पहले ही कैप्चर कर लिया जाएगा, तो ये भी टारगेट है। तो इसमें क्या है कि जो बिजली हम बना रहे हैं सोलर और विंड से, उसको इस्तेमाल करके अगर हम हाइड्रोजन भी बनाएंगे, एक तो हमने बिजली के एमिशंस को खत्म कर लिया, और दूसरे हमने जो हाइड्रोजन की वजह से एमिशंस हो सकते थे उन्हें खत्म किया। इसके अलावा सोलर के साथ क्या है कि वो दिन में है, जितनी देर सूरज की रोशनी होगी उतनी देर आप बिजली पैदा कर सकते हो उससे। तो हम इस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे पास दिन में बहुत सारी ऊर्जा होगी जो हम सोलर यानी सौर ऊर्जा से बिजली में बनाएंगे। तो अगर हम उसको, जो ऊर्जा हम उससे पैदा कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए, तो हम जो हमारा सिस्टम बढ़ा रहे हैं, हम और सौर ऊर्जा भी बनाते जाएंगे, उसके साथ लगाते जाएंगे, उसी को इस्तेमाल करके अगर और हम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे तो ये हमें डबल बेनिफिट हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ पर्यावरण की बात हुई, लेकिन हमें एक अपनी ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के मामले में हम मोस्टली डिपेंडेंट थे यानी आयात के ऊपर, अब सौर ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना है आपको,

0: वो हम खुद
1: पवन
0: करते
1: ऊर्जा
0: हैं
1: को कहीं से आयात नहीं करना, लेकिन उसके जो कंपोनेंट है पैनल जो इस्तेमाल होते हैं वो आपको बनाने, तो वो उसके ऊपर बड़ा काम हुआ है और पैनल में हम आत्मनिर्भर हो गए, आगे भी बढ़ रहे हैं उस सेल में और दूसरे कंपोनेंट में। इसी तरह से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी पार्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज होता है जो मैंने बताया
0: जी।
1: जो पानी को कन्वर्ट करेगा, उसको लेके के यही देश में बने, उसके ऊपर ये मिशन का कंपोनेंट है, उस पर भी मिशन काम कर रहा है। और दोनों ही सेक्टर जो है ये रोजगार देने वाले भी हैं,
0: जी
1: लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इनसे हो रहा है।
0: रेहन जी, अभी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन एक ऐसे समय पर हो रहा है जब देश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले ही हरित हाइड्रोजन ट्रेन को भी झंडी दिखाई थी। तो इस सम्मेलन को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये केवल एक उपलब्धियों का साझा करने का मंच है, या फिर भविष्य की योजनाएं हैं, जो रोड मैप है उनको साझा करने की दिशा ये प्रदान करेगा?
1: ये अवसर दोनों चीजों के लिए होगा। पहली बात तो ये कि जिस तरह से हमने अपने ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह का परिवर्तन हम लाए हैं, ये ऊर्जा क्षेत्र में एक मिसाली परिवर्तन है। ऐसा एक डेवलपिंग कंट्री जो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री भी है,
0: जी
1: जिसको अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी थी और साथ में ये पर्यावरण कह लीजिए, ऊर्जा सुरक्षा कह लीजिए, उन दोनों को देखते हुए जितनी तेजी से हमने ये बदलाव किया है, ये बहुत सारे देशों के लिए इससे क्या प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, सीखने का स्रोत हो सकता है, या वो इसको अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि इसमें बहुत काम हो चुका है, लेकिन आगे सालों, जैसे मैंने बताया, इसमें हमारे आगे के सारे टारगेट सेट हैं, जिसे कहना चाहिए हमारा जो विजन और पाथ है वो क्लियर है, तो ये उसके लिए भी मौका है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, किन चीजों को हम और मजबूती देंगे। और तीसरी बात ये कि ये कोई भी जो क्षेत्र है, वैसे भी ऊर्जा क्षेत्र, ग्लोबल वार्मिंग, नेट जीरो, ये सब बहुत बड़े काम है, इसमें अंतरदेशीय इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक दूसरे से सीखना समझना, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है।
0: आप जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो श्रोताओं को हम ये जरूर बता देंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक सदस्य देशों के रूप में काम करता है, और दुनिया के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में भी हमारा नाम शामिल है। तो ऐसे में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका क्या निभाई जा सकती भारत के द्वारा, खासतौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारत लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और सरकार ऐसे नीतिगत फैसले भी ले रही है कि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ें?
1: भारत ऑलरेडी इसमें कई सेक्टर में नेतृत्व की तरफ है, और जो आपने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें नेतृत्व भारत का ही है और ये भारत की ही पहल पर बना और बहुत अच्छी पहल है। उसमें अब तो 120 से ज्यादा देश उसमें जुड़े हुए हैं और जो हमारी लर्निंग्स हैं, जो हमने किया वो हम साझा करते हैं उनसे। उसके अलावा एक और भारत का इनिशिएटिव है, इसी से रिलेटेड, उसे कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वो भी भारतीय पहल है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसमें क्या है कि आइडिया ये है कि सूरज तो कभी नहीं ढलता है, आज यहाँ नहीं है तो दूसरे देश में चमक रहा है, नहीं तो तीसरे देश में चमक रहा है, तो कैसे हम एक दूसरे की मदद से उसका और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अब मैंने बताया, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग में भी, वो सोलर की मैन्युफैक्चरिंग हो या इलेक्ट्रोलाइजर्स की हो, ग्रीन हाइड्रोजन की, उसमें भी तेजी से बड़ा काम हो रहा है, तो इसमें भी हमारे सामने मौका है कि हम इसमें भी नेतृत्व प्रोवाइड कर सकते हैं।
0: रेहन जी, वापस अगर हरित हाइड्रोजन की हम बात करें, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि स्टील की बात है, फर्टिलाइजर की बात है, रिफाइनरी है, शिपिंग है, भारी परिवहन जैसा कि ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते, इन क्षेत्रों के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य देखा जा रहा है इस ईंधन का, कि ये ईंधन हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। लागत कम आएगी, रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, और आगे चल करके जैसा आपने बताया था कि डिपेंडेंसी वाली बात जो है वो उसमें काफी कमी आएगी। आज जो आप देख रहे हैं तमाम चीजें, तो आपको क्या लगता है कि हमारा आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है, और साथ ही हम कितना आगे तक जा सकते हैं?
1: देखिए, आवश्यकता की तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरह के हालात बने या बनते रहते हैं जियोपॉलिटिकल, उसमें ऊर्जा सुरक्षा तो सर्वोपरि है और ऊर्जा सुरक्षा पे जो काम हो रहा है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, और हमें जरूर इस पे आगे बढ़ना होगा, करना होगा। और मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 सालों में शुरुआती दौर में हम एक एक्सपेरिमेंट टाइप फेज में थे, जब हम ये देख रहे थे कि सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी और जो है वो कितना हम यूज कर सकते हैं, कैसे प्ले आउट करेगा। लेकिन उसके बाद फिर 2014 और 15 के बाद जो हमारा ना, वो एक तरह का एक्सपेंशन फेज था। आज आप देखें कि सोलर एनर्जी एक आम तौर पर एक्सेप्टेड सिस्टम है, लोग अपने आप ही लगा रहे हैं, सरकार की मदद है किसानों और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को जो घरों में लगा रहे हैं, और आप देखो 50 लाख के करीब तो रूफ टॉप सोलराइजेशन हो गए, किसान भी लगा रहा है। तो ये अब हम इस दौर में आ गए हैं कि सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा हमारे मेन सिस्टम रहेंगे और हमारे सिस्टम इसके इर्द गिर्द ही डेवलप होंगे। अब ग्रीन हाइड्रोजन भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे मैंने बताया कि ना सिर्फ ये कि ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की तरफ एक कदम है लेकिन पर्यावरण की तरफ भी कदम है, मगर साथ साथ ये हमारी नई ग्रिड जो हम बना रहे हैं ये जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा होगी मेनली, उसमें भी ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे।
0: सरकार जिस तरह से इन योजनाओं को बढ़ावा दे रही है तो ऐसे में सोलर मॉड्यूल, पैनल, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर, ये जो उपकरण हैं, इन्हें घरेलू स्तर पे अगर बढ़ावा मिलेगा तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव देखने को हमें मिल सकते हैं, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो स्वयं का कुछ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जो टेक्नोलॉजी है उसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी यानी आम लोगों में उसकी पूरी तरह पहुंच हो जाए, उसमें उसके पर्यावरण के एंगल के साथ साथ उसके पैसे का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। लोग ये भी देखते हैं, जैसे हमने सौर ऊर्जा को किया, आज वो सबसे इकोनॉमिक, सबसे कम कॉस्ट वाली ऊर्जा स्रोतों में से है, तो वो पिछले जो 10-12 सालों की जो डेवलपमेंट थे उसी से हुआ। इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन में क्या है कि अभी कोशिश ये है कि इसकी कॉस्ट ग्रे हाइड्रोजन के बराबर या उससे भी कम लाई जा सके। उसी की तरफ ये घरेलू उत्पादन जो आपने भी बताया, PLI और सब स्कीम्स से हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर को भी बनाया जाए जिससे कि उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो फिर वो उसकी वाइड एप्लीकेबिलिटी और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी तरह से एक स्टार्टअप स्कीम है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पार्ट है, MNRE की स्कीम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसमें छोटे स्टार्टअप्स, नए नए आइडियाज को भी समर्थन, ना कि तकनीकी सपोर्ट दिया जाएगा बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर एक बहुत हैपनिंग और एक्टिव सेक्टर है और इसमें बहुत काम हुआ है और आगे भी बहुत काम होता रहेगा और हम ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण बचाना और साथ साथ जॉब क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
0: रिहान जी, बिल्कुल अंत में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। हमेशा मन में होता है कि यदि कोई नई चीज आ रही है तो आम लोगों तक पहुंचे वो, जैसे हरित हाइड्रोजन, आपको लगता है कि बहुत ही जल्द ये सामान्य लोगों तक इसकी पहुंच हो जाएगी?
1: आम आदमी के लिए डायरेक्टली उसका इस्तेमाल कम है क्योंकि आप देखिए वो इंडस्ट्री में यूज होगा या बड़े ट्रांसपोर्ट में भी बड़े लेवल पर होगा आम आदमी के लिए, लेकिन कुछ जो कार है जैसे गाड़ी, उसके अंदर हाइड्रोजन के इस्तेमाल में भी काफी अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर सेक्टर में देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन वाइडर एक्सेप्टेंस की तरफ है और अच्छा इसका भविष्य है।
0: रेहान जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। कंट्रीवाइड।

0: नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मण रेखा नाटक। जी हाँ, ये नाटक लक्ष्मण रेखा, लिखा है उपेंद्र नाथ अश्क ने। इस नाटक के निर्देशक हैं सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति सहयोग है सुदर्शन कुमार का। नाटक में प्रतिभागी कलाकार हैं नंदलाल शर्मा, श्याम अरोड़ा, राम गोपाल, सुनीति कोहली और वीना होरा। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक लक्ष्मण रेखा।
1: लक्ष्मण रेखा आज प्रस्तुत है श्री उपेंद्र नाथ अश्क का लिखा हुआ नाटक। तो सुनिए नाटक लक्ष्मण रेखा।

0: कौन? दरवाजा खुला है, आ जाइए।
1: कहो कैसी हो मोना?
0: अरे प्रोफेसर दास, आप प्रणाम करती।
1: अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि ये चरण वरण छूने की औपचारिकता मत बरता करो। उम्र में तुम लोगों से मैं इतना बड़ा तो नहीं कि तुम हर बार मेरे पैर छू।
0: आप हेमेंद्र के गुरु हैं और।
1: लेकिन शादी से पहले जब दो एक बार तुम मिली तब तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया।
0: आपने मेरी शादी से पहले जिस तरह मेरा पक्ष लेकर हेम का मन बना दिया था, मुझे लगा जैसे मैं आपकी बेटी हूँ। और यही कारण है, जब मैं बंबई जाते हुए यहाँ से गुजरी थी ना, और आप स्टेशन पर आए थे, तो मैं डिब्बे से उतरकर आपके चरणों में झुक गई थी।
1: हाँ, उस क्षण मुझे लगा था तुम मेरे मित्र की पत्नी नहीं हो, मेरी बेटी हो।
0: लेकिन कभी कभी सोचती हूँ, अच्छा होता हेमेंद्र ने आपसे परामर्श न किया होता, आपने मेरी वकालत न की होती, हेम अपनी उसी चहेती से शादी कर लेते, मैं यूं तिल तिल तो न चलती।
1: मोना,
0: मैं भी क्या अपना रोना ले बैठी। अच्छा बताइए, चाय लेनी या कॉफी?
1: नहीं, मुझे चाय वाय की जरा भी इच्छा नहीं है। पहले तुम ये बताओ कि ये कमरे की क्या हालत बना रखी है
0: जी।
1: क्या बीत गया है पिछले 2 वर्षों में यहाँ? मुझे याद है विदेश जाने से पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो ये कमरा कितना खूबसूरत लगता था। इसे कोई झाड़ता बुहाड़ता नहीं आजकल? जिधर देखो जाले लटके हुए।
0: जब जिंदगी को ही जाले लग रहे हों तो कमरे की कौन कहे।
1: पर क्यों? अरे 4-5 बरस ही तो हुए हैं तुम लोगों को घर बसाए, क्या हो गया इस बीच? हेम कहाँ है?
0: बाहर गए हुए हैं।
1: और मोना, तुमने अपनी ये कैसी हालत बना रखी है? ये कैसी सुकड़ी मुचड़ी साड़ी पहने हो? है कनाडा में ही ये भनक मेरे कान में पड़ी थी कि तुम लोगों की जिंदगी कुछ ठीक से नहीं चल रही। क्यों?
0: नहीं, पहले कुछ वर्ष तो बहुत अच्छे गुजरे, बस रचना के जन्म के बाद ही जाने क्या हो गया।
1: अरे हाँ, कैसी है रचना? भाई आप तो बातें करने लगी होगी वो।
0: जी हाँ।
1: कहाँ है, सोई है क्या?
0: नहीं, बहन आई थी, अपने साथ बनारस ले गई है। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मुझे बनारस नौकरी मिल जाए तो मैं चली जाऊँ वहाँ, बहन से कह रखा है मैंने।
1: मैदान छोड़कर चली जाना चाहती हो?
0: भाई साहब, जब हेम आपसे मिलकर बंबई गए थे और इन्होंने हाँ कर दी थी, तो मुझे लगा था कि मेरी तपस्या सफल हुई है। लेकिन बंबई से यहाँ आने पर।
1: तो तुम लोग क्यों छोड़ आए बंबई? इतनी अच्छी नौकरी थी तुम्हारी।
0: मैं कहाँ छोड़ आई, ये चले आए। वो शहर इन्हें बेहद क्रूर और निर्मम लगता था, कभी कुछ लिख पाएंगे, शोध कर पाएंगे, इन्हें नहीं लगता था।
1: हाँ, यहाँ आकर बहुत शोध कर लिया ना।
0: आदमी अपने आप को जाने कैसे कैसे भुलावे देता है भाई साहब। मैंने तो कहा था, जो लोग काम करना चाहते हैं हर स्थिति में करते हैं। बंबई में क्या शोध नहीं होता, किताबें नहीं लिखी जाती? लेकिन ये नहीं माने। और तभी इनके एक सहपाठी ने लिखा कि यहाँ जगह खाली है, आपने भी मदद की।
1: भाई ये जगह पाने के लिए हेम ने मुझे जिस तरह के पत्र लिखे।
0: मैं जानती हूँ, लेकिन इनके आने के बाद मैं क्या करती वहां, त्याग पत्र देकर चली आई। 6 महीने बेकार कुंठित हुई, अब पिछले साल यहाँ नौकरी मिली है। लेकिन इस बीच जैसे कुछ भी पहले सा नहीं रहा।
1: तो क्या अभी हेम ने तृप्ति का पीछा नहीं छोड़ा?
0: या तृप्ति ने इनका? बिना आग के तो धुआं नहीं उठता भाई साहब।
1: तो ये महज बेपर की नहीं कि पिछली गर्मियों में हेम तृप्ति के साथ खजियार के डाक बंगले में 4 दिन रहा। लोग तो ये भी कहते हैं कि दोनों शादी रचाना चाहते हैं।
0: इन्होंने तो मुझसे कभी कुछ नहीं कहा।
1: हेम होता तो पूछता कि कमबख्त, अगर तेरे दिल में तृप्ति से इतना ही गहरा लगाव था तो बेचारी मोना को अपने हाल पर छोड़ देता, उसकी जिंदगी क्यों परेशान की? और अब तो बच्ची की जिंदगी का भी सवाल है। मोना, आखिर तुम्हें कोई तो भुलावा दिया होगा हेम ने जो तुम उसकी ओर झुकी? अगर तुम्हें पहले से पता होता कि वो तृप्ति के बिना नहीं रह सकता तो क्या तुम्हारा सिर फिराता कि तुम?
0: गुन्ने आदमी है वो, मैं उनके मन की तो नहीं जानती, लेकिन शायद वो तय नहीं कर पा रहे थे। इतने बरस लखनऊ रहे, इतना प्यार होता तो शादी ना कर लेते। भाई साहब, मुझे तो पहले पहल तृप्ति का पता ही नहीं चला। एक बार मैंने उसका पत्र पढ़ लिया तो हंसकर कहने लगे, इस लड़की को मैं पढ़ाता था, जान छुड़ाकर बंबई भाग आया हूं, अब भी पीछे पड़ी है। फिर जब हमें मिलते 2 बरस हो गए, मेरे घर वालों ने कहा कि रिश्ता किसी सुस्थिर नींव पर होना चाहिए, तो लंबी छुट्टी लेकर दिल्ली भाग गए नौटियाल के पास। और जब मैं दिल्ली पहुंची तो नौटियाल ने मुझे बताया कि वो तृप्ति से प्यार करते हैं। तब पहली बार कुछ माने। मैंने कहा तो मैं जाऊं? बोले मैं तय नहीं कर पा रहा मुना, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन भाई साहब, जब ये बंबई वापस आने लगे तो एक रात आपसे बात करने के लिए यहां उतर गए। जाने आपने क्या मंत्र फूका कि बंबई पहुंचते इन्होंने मुझे बाहों में भर लिया और बोले चलो मोना, इतवार को शादी कर ले। भाई साहब, उसी वक्त निमंत्रण पत्र तैयार किया, जाकर छपवाया, सब मित्रों को भेजा और पांचवें दिन हमारी शादी भी हो गई।
1: तो फिर तृप्ति कैसे आ गई इतने वर्षों बाद?
0: आप ही उनसे पूछकर मुझे बताइए भाई साहब। आजकल तृप्ति यहीं आई हुई है, दिन दिन भर उसे घुमाते फिरते हैं। मैंने हल्की सी शिकायत की तो बोले अब मेरी पुरानी मित्र है, इतना भी शिष्टाचार न बरतो। वो ना आए तो कभी नहीं बुलाऊंगा, पत्र न लिखे तो क्या हवा में जवाब दूंगा? मैं पत्र नहीं लिखता, वो लिखती है। तुम उसे समझा दो कि मुझे पत्र न लिखे।
1: मेरे सामने कहे ना ऐसी बात।
0: दास भाई साहब, आपने मुझ पर इतने एहसान किए, क्या आप तृप्ति को नहीं समझा सकते कि मेरी जिंदगी तबाह न करे?
1: मुना, मैं तृप्ति से कभी मिला नहीं, और ऐसे में प्रवचनों का हमेशा उल्टा असर होता है। लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं हेम से बात करूंगा। लेकिन एक शर्त है कि ये सब जाने वाले उतारो, ठीक से खाओ पियो, अरे मन करे न करे ठीक से रहो, जिंदगी को कुछ व्यवस्थित करो। तुम हेम के बराबर पढ़ी हो, बराबर का वेतन पाती हो, अरे तुम चाहो तो हेम जैसे चार को कमाकर खिला सकती हो, क्यों नहीं मान के साथ जीती? समझ लो ये संबंध नहीं चलेगा और फिर जीना शुरू करो। स्थिति सुधर गई तो अच्छा, न सुधरी तो उसके लिए भी तैयार रहो।
0: दास भाई साहब, हेम के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसके बिना मैं जी नहीं सकती।
1: नहीं जी सकती तो उसे साधो, समझ लो उसे साधने में अपने आप को और अपने घर को व्यवस्थित करना पहला कदम है। वरना औरत प्यार के दुख में अपनी या अपने घर की शक्ल बिगाड़ ले तो पुरुष के मन में दया या वितृष्णा तो पैदा कर सकती है, प्यार नहीं।

0: प्रोफेसर साहब, मुझे मोना का भी पत्र मिल गया था और हिमिन का भी। जो अफवाह कनाडा में आप तक पहुंच गई वो दिल्ली कैसे ना पहुंचती? मैंने हिम को पत्र लिखकर पूछा था, मोना को भी लिखा था। उत्तर में दोनों ने मुझे दिन के दिन यहाँ आने के लिए कहा, सो मैं चला आया।
1: नौटियल, ये बताओ कि हिमिन के इरादे क्या हैं?
0: इरादे तो उसके यही हैं कि तृप्ति से भी शादी रचा ले और मोना को भी ना छोड़े, और अगर दो चार ऐसी और भावुक मूर्खाएं उसे मिल जाएं तो उनका भी हार प्रोकर अपने गले में डाल ले।
1: मजाक की बात नहीं है नौटियल, तुमने उससे बात की होगी।

0: तृप्त से भी मिले होंगे।
1: हेमेन को हाथ से गंवाने के बाद ही तृप्ति को उसकी कद्र मालूम हुई है। मोना से उसे ईर्ष्या भी है और विद्वेष भी। जैसे भी हो, अब वो मोना को ध्वस्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे हेमेन के साथ बिना कानूनी शादी किए ही क्यों ना रहना पड़े।
0: और हेमेन,
1: अगर मोना शोर शराबा ना मचाए, कॉलेज में उसकी नौकरी पर आंच ना आए, तो वो भी तैयार है।
0: नौटियाल, ये छोटा शहर है, दिल्ली से महानगर नहीं। इस तरह खुले हम दूसरी स्त्री रखने वाला यहाँ शांति से अध्यापकी नहीं कर सकता।
1: लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने हट में हेम नौकरी की परवाह ना करे और तृप्ति के साथ लखनऊ चला जाए। मोना का घर तो हर हालत में टूट जाएगा।
0: मेरा ख्याल था हेम मुझसे मिलेगा तो मैं उससे बात करूंगा। जब मैं कुछ दिन पहले उसके यहाँ गया था तो आते समय मोना ने कहा था कि वो हेमन से कहेगी कि मुझसे मिल ले, लेकिन वो आया नहीं।
1: मोना के साहस की मैं दाद देता हूँ प्रोफेसर साहब। उसका पत्र पढ़कर तो मैं डर गया था कि कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इतनी निराशा भरी थी उस पत्र में। लेकिन कल मैं उससे मिला तो दंग रह गया। दिल में उसके जो भी बवंडर मच रहे हों, चेहरे पर उनका कोई आभास न था। हमेशा की तरह हंसती हुई मिली। ड्राइंग रूम इतना साफ सुथरा सजा बजा कि लगा ही नहीं कि वहां के रहने वाले किसी भयंकर तूफान से गुजर रहे हैं।
0: हाँ, मैं खुश हूं नौटियाल, मैं खुश हूं कि मोना ने इस विपत्ति से जूझने का फैसला किया है। हेमन उसे तलाक दे या वैसे ही संबंध विच्छेद कर ले, मोना हौसला नहीं छोड़ेगी तो इस मुसीबत से पार पा जाएगी।
1: आप अनुभव संपन्न व्यक्ति हैं प्रोफेसर साहब, हो सके तो किसी तरह तृप्ति को इन दोनों के बीच से निकाल दें, वरना हेमेन जैसा कमजोर आदमी किसी दिन भी गुंजलक में फंस सकता है। मोना लाएगी हेम को आपके पास, उसे ना समझाइए, तृप्ति को समझाइए।

0: लीजिए भाई साहब, मैं इन्हें ले आई हूँ।
1: आओ बैठो हिम
2: जी।
0: अब आप ही इनसे पूछिए इन्हें मुझसे क्या शिकायत है और क्यों ये तृप्ति को इतनी लिफ्ट दे रहे हैं।
2: मैं कहाँ लिफ्ट दे रहा हूँ?
0: और लिफ्ट कैसे दी जाती है? जब से वो आई है दिन भर आपकी शक्ल नहीं दिखाई देती। आज उसे भेड़ाघाट की सैर करा रहे हैं, कल मदन महल की पहाड़ियों और किला दिखाने ले जा रहे हैं, कभी पिक्चर का प्रोग्राम, कभी शॉपिंग का।
2: तुमसे हर बार साथ चलने को कहा, अब तुम साथ न चलो तो
0: मैं बीच में क्यों बाधा बनूं?
2: देखिए भाई साहब, ये जानती हैं कि मेरा और तृप्ति का 10-12 वर्षों का संबंध है।
0: अब लेकिन तो मैं जान गई हूँ कि 10-12 वर्ष ही क्या, आपका उसका जन्म जन्मांतर का संबंध है।
2: सुन लीजिए,
0: अगर मुझे ये पता होता कि आप उसे इस हद तक प्यार करते हैं तो मैं चुपचाप आपके रास्ते से हट जाती।
2: आप भाई साहब इसे समझाइए, इंटर में थी तृप्ति जब मैं उसे पढ़ाता था, वो पढ़ने की बजाय मुझे चाहने लगी। पहले तो मैंने उसे किशोरवय का रोग समझा और सीरियसली नहीं लिया, लेकिन लखनऊ से मेरे आने के बाद भी वो लगातार पीछे पड़ी रही। मैंने मोना से शादी कर ली और लाख चाहा कि तृप्ति भी कहीं और शादी कर ले और मेरा ख्याल छोड़ दे, लेकिन ना उसने शादी की ना मेरा ख्याल छोड़ा। अब ऐसे में आप ही कहिए मैं क्या करूं, अपने ही घर में कैसे उसका अपमान कर दूं। अब वो रतनलाल गुप्त है ना, मोना को चाहते थे, एक बार वो इससे मिलने चले आए। पूछ लीजिए इसे कि मैंने क्या कहा था
0: कि जाओ इन्हें शहर घुमा लाओ, भेड़ाघाट दिखा लाओ। इसीलिए ना कि आपको भी सुविधा हो जाती कि तृप्ति के साथ गुलछर्रे उड़ाए। मैं ऐसी दोहरी जिंदगी नहीं जीती, ना ऐसा दोहरा प्यार ही कर सकती हूँ।
2: अब तुम अपने आप को जड़ परंपराओं और रूढ़ियों के घेरे में बंद रखना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। भाई साहब, एक नारी रत्न की समझ में ये बात नहीं आ सकती। ये भले ही अपने चाहने वाले का अपमान कर दे, मैं नहीं कर सकता। हाँ, अब ये और बात है कि तृप्ति खुद पत्र लिखना बंद कर दे या मिलना छोड़ दे।
1: तब क्या तुम्हें बुरा ना लगेगा हिमिल?
2: क्यों, मुझे क्यों बुरा लगेगा?
1: अच्छा तो तुम उसे मुझसे मिलवा दो और कुछ देर एकांत में बात करने दो, वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगी।
2: ठीक है, मैं उसे आपसे मिला दूंगा।
1: मोना
0: जी,
1: तुम जरा अंदर अपनी भाभी के पास बैठो, मैं हिमिल से बात करूंगा।
0: जी बहुत अच्छा।
1: देखो हिम
2: जी,
1: तुम मेरे शिष्य भी हो और मित्र भी, पहले ये बताओ कि मोना से तुम्हें शिकायत क्या है?
2: भाई साहब, मोना इज वेरी पोजेसिव, उसने अपने आप को एक घेरे में बंद कर रखा है और मुझे भी उसी घेरे में बंद करना चाहती है। वो मेरे तन पर ही नहीं मन पर भी अधिकार पाना चाहती है। मैं तो घुट गया हूं उन घेरों के अंदर भाई साहब।
1: हेमेन, औरतें ही नहीं मर्द भी अधिकार लोलुप होते हैं। They are also possessive. पत्नी पर पुरुष की तरफ जरा प्यार या प्रशंसा भरी नजर डाले तो पुरुष के दिल पर क्या गुजरती है, इसे शायद तुम नहीं जानते। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें प्रेम करने वाली मोना जैसी पत्नी मिली है।
2: ये भी क्या सौभाग्य है कि घर में मेरी कोई प्राइवेसी ही ना हो। तृप्ति के पत्र को लेकर उसने मुझे इतना परेशान किया है, इतने ताने दिए हैं कि मैंने दराजों को ताले लगाने शुरू कर दिए हैं।
1: ये उसकी गलती है।
2: ये ठीक है कि उसने अपना थीसिस लिख लिया है और मैं नहीं लिख सका, लेकिन शुरू से आखिर तक उसके थीसिस पर मैंने कितनी मेहनत की है क्या वो भूल गई? मैं अगर अपना थीसिस पूरा नहीं कर सका तो इसमें क्या उसका कोई दोष नहीं? मैं जब घर में रहता हूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई कोना मेरा अपना कोना है, कोई क्षण मेरा अपना क्षण है। वो घर की हर जगह को हर वक्त घेरे रहती है। मैं जब लिखता हूं और नौकरानी भी कमरे से गुजर जाए भाई साहब, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, लेकिन वो खाना पकाती और घर के सारे काम काज करती, लिख सकती है, मैं नहीं लिख सकता।
1: हेमेन, वो अल्लड़ लड़की है और तुम्हें चाहती है।
2: अल्लड़ नहीं, वो मुंह फट भी है। क्या कहनी है क्या अनकहनी, बोलते वक्त इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। हार कर अपना थीसिस पूरा करने के लिए मैंने अलग कमरा लेने की सोची, तब यारों ने उड़ा दिया कि मैं तृप्ति के साथ वहां रहना चाहता हूं और मोना ने खाना पीना छोड़ दिया।
1: तो वो अफवाह थी?
2: बिल्कुल, तृप्ति अब भी मुझे चाहती है मानता हूं, पत्र लिखती है, मिलने आती है, पर मैं तो कभी लखनऊ नहीं गया। लेकिन आपसे झूठ नहीं बोलूंगा भाई साहब, मुझे कभी कभी ये ख्याल जरूर आता है कि तृप्ति उतनी पोजेसिव नहीं है, उसके साथ मैं एकांत पा सकता हूं।
1: देखो हेम, औरत मर्द के सही गुण दोषों का पता असल में शादी के बाद ही चलता है। क्या गारंटी है कि तब तृप्ति में कोई दूसरे दोष नहीं दिखाई देंगे?
2: ये आप ठीक कहते हैं।
1: मैं मोना को समझा दूंगा, वो ऐसी मूर्ख लड़की नहीं कि छोटी छोटी बातों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। हाँ, उसे तुम्हारे प्यार का विश्वास होना चाहिए, फिर वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा हेमंत, अब सच सच बताओ कि वाकई तुम चाहते हो कि तृप्ति तुम्हें छोड़ जाए?
2: मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच्ची बात यह है भाई साहब कि वो मुझे किसी तरह भी छोड़ने को तैयार नहीं। मैंने उसे लाख कहा कि वो शादी कर ले और मेरा ख्याल छोड़ दे, लेकिन लेकिन वो तो जैसे पागल हो गई है। पिछले साल मैं डलहौजी गया हुआ था, खजियार की मैंने बहुत तारीफ सुन रखी थी, सो मैंने 5-7 दिन वहां काटने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन की बात है, दोपहर की मीठी मीठी धूप में खजियार झील के किनारे आराम कुर्सी डाले बैठा था कि क्या देखता हूं, घोड़े पर सवार तृप्ति चली आ रही। जाने जबलपुर और डलहौजी कहां कहां से पूछती हुई वो खजियार आ पहुंची थी। अब बताइए भाई साहब, ऐसी औरत से कैसे छुटकारा हो?
1: हाँ, और तुम कहते हो कि वो पॉजेसिव नहीं होगी। रही छुटकारे की बात, तो जाओ उसे बुला लाओ, मैं कोशिश करूंगा कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे।

0: ये सच है प्रोफेसर साहब, 12 वर्षों से मैं हेम को प्यार करती हूँ।
1: तो फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की तृप्ति? क्यों उसे मोना के चक्कर में फंसने दिया? अब फंस भी गया था तो उसका उद्धार क्यों नहीं किया?
0: मैं तो बहुत बार शादी के लिए जोर देती थी, लेकिन उन दिनों हेम के आदर्श सार्थ मोहते थे। ये कहते थे विवाह प्यार के लिए घातक होता है, शादी के बिना जिस कृत्य को समाज पाप समझता है, शादी के बाद उसकी इजाजत दे देता है, ये सोशलाइज्ड सिन है, समाज सम्मत पाप। और हेम कहते थे हम शादी नहीं करेंगे, सार्थ और मदाम दाबुआ की तरह इकट्ठे रहेंगे।
1: अरे हेम तो पुराना चुगद है, भूल जाता है कि वो हेम है सार्थ नहीं, और ये पुण्य भूमि भारत है, फ्रांस नहीं। तो अब क्या वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, या बिना शादी किए तुम उसके साथ रहने को तैयार हो गई हो?
0: हेम कहते हैं वे मोना से तलाक ले लेंगे।
1: हाँ, तलाक में कठिनाई नहीं, वो मिल भी सकता है, लेकिन इससे पहले कि हेम तलाक ले या तुम उसके साथ शादी करने या बिना शादी किए रहने का फैसला करो, मैं दो एक जरूरी सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं।
0: पूछिए।
1: देखो तृप्ति, तुम जानती हो हेम की एक बच्ची भी है और उस पर तलाक का बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
0: बच्ची का ख्याल ना होता तो हम कब के शादी कर लेते। हेम चाहते थे बच्ची कुछ बड़ी हो जाए।
1: जब हेम मोना के साथ वैवाहिक जीवन के 4-5 वर्ष बिताने के बाद भी तुम्हारा साथ चाहता है तो जाहिर है।

0: मोना के लिए उसके दिल में जो प्यार था वो मंद हो गया है, लेकिन संबंध विच्छेद के लिए महज प्यार की किंचित कमी ही काफी नहीं, उसके लिए कहीं ज्यादा कठोर और क्रूर भावना की जरूरत है। क्या मोना के प्रति उसके मन में घोर वितृष्णा पैदा हो गई है? क्या वो मोना से घृणा करने लगा है? देखो, ये प्रश्न तलाक के सिलसिले में बहुत जरूरी है। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो तृप्ति, अगर दो जनों में नफरत की दीवार खड़ी हो जाए तो पसंद से या प्यार से, घर या बाहर के दबाव से संपन्न होने वाली शादी को निभाना मैं जरूरी नहीं समझता। इस मामले को तुम भावना की आंखों से नहीं, यथार्थ की आंखों से देखो। अगर तुम समझती हो कि मोना के लिए हेम के दिल में घृणा और वितृष्णा पैदा हो गई है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं मोना से उसे तलाक दिलवा दूंगा, और इस शहर में मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो हेम की पत्नी के रूप में तुम्हारा स्वागत करेगा।
1: मैं नहीं समझती कि वे मोना से घृणा करते हैं।
0: देखो तृप्ति, मोना की तरह तुम भी मेरी छोटी बहन या बेटी के बराबर हो। एक बात समझ लो, जब दो व्यक्ति प्यार करते हैं तो हमेशा अपना अच्छा पक्ष ही एक दूसरे के सामने रखते हैं। जिंदगी भर की कोर्टशिप भी एक दूसरे को पूरी तरह समझने के लिए काफी नहीं होती। ये तो शादी के बाद ही संभव होता है कि एक दूसरे की खामियां पति पत्नी के सामने उजागर होती हैं और उनके साथ एडजस्ट करने की जरूरत पेश आती है। तुम दोनों के साथ कई वर्ष तक हेम का अफेयर चलता रहा है, आखिर जब चुनाव की बात आई और उसने मोना को चुना, तब जरूर ही तुम्हारी अपेक्षा मोना में उसे कुछ ज्यादा खूबियां दिखाई दी होंगी। लेकिन प्रकट है कि शादी के बाद मोना की खामियां भी उसके सामने आईं, तब उसे तुम्हारे गुणों की याद आई, तुम लोगों का टूटा हुआ तार फिर जुड़ गया। तृप्ति, मैं तुमसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उस स्थिति में जब वो मोना से नफरत नहीं करता, कहीं ऐसा तो ना हो कि 2 साल बाद उसे मोना की यानी उसके कुछ ऐसे गुणों की याद आने लगे जो तुमसे भिन्न है, वो मोना से फिर संबंध बना ले और तब जैसे वो तुम्हारे साथ खजियार में 4 दिन रहा, मोना के साथ किसी दूसरे रमणी के स्थान पर 4 दिन काटे, ऐसे में तुम कैसा महसूस करोगी?
1: मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा।
0: हाँ, सोचना चाहिए। हाँ, तुम एक गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर हो, लड़कियों की जिंदगियां तुम्हारे हाथ में है और अपने उदाहरण से तुम उन्हें बना बिगाड़ सकती हो। तुम्हारे आचरण का तुम्हारी छात्राओं पर, तुम्हारे सहयोगियों पर, तुम्हारे मित्र परिचितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तुम्हें सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि कभी तुम अपने आप को मोना की स्थिति में पाओ तो कैसा फील करोगी।
1: मोना से मेरी जो बातें हुई हैं और आपने जो भी कहा है, उससे तो मुझे लगा कि आप लोग शायद समझते हैं कि हेम मेरे लिए उतना फील नहीं करते जितना मैं उन्हें चाहती हूँ, जबकि बात ऐसी नहीं है। जब उन्होंने मोना से बाकायदा शादी कर ली और ऊपर से मुझे निमंत्रण भी दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने केवल बधाई भेज दी थी और फिर उसे कोई पत्र नहीं लिखा था। तब शादी के 8-10 महीने बाद रचना के जन्म से कुछ पहले उनका पत्र आया कि मोना को चुनने में उन्होंने बहुत गलती की और उसके कारण उनका लिखना पढ़ना सब धरा रह जाएगा। मैंने तब भी कोई उत्तर नहीं दिया। फिर एक पत्र आया, मैं फिर भी चुप रही। तब रचना के जन्म के बाद वे लखनऊ पहुंचे। मैं जानती हूं मोना से उन्होंने कहा है मैं ही उनके पीछे पड़ी हूं। पुरुषों के अहम को इससे थोड़ा संतोष मिलता है। फिर मोना को वो अपने दिल की कैफियत बताना भी नहीं चाहते। उन्होंने मुझसे सब कुछ स्वीकार किया है और चाहा है कि मैं उनकी बिगड़ी जिंदगी बना दूं और मेरा साथ पाए बिना उन्हें चैन नहीं आएगा। मोना से शादी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने आप पर डाल दी है। अब भी यहाँ आने से पहले उन्होंने मुझे बहुत ब्रीफ किया है। मैं तय करके आई थी कि मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, लेकिन आपने स्थिति के जिस पक्ष से बात की है मैंने उस पर कभी विचार नहीं किया था।
0: देखो तृप्ति, तुम्हारा और हेमन का इतने वर्षों का साथ है, इतना तो तुमने भी देखा होगा कि हेम बड़े प्यारे झूठ बोलता है।
1: हाँ, वे परले सिरे के झूठे हैं।
0: हाँ, तो बस तुम खुद सोचो और तय करो।
1: मैंने तय कर लिया है, मैं इसी वक्त चली जाऊंगी। अभी गाड़ी में पौन घंटा है, मैं गाड़ी पकड़ लूंगी।
0: अरे सुनो सुनो सुनो सुनो, इस तरह रूठ कर चुपचाप जाने का मतलब होगा कि हेम भागा भागा तुम्हें मनाने लखनऊ जाए। ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं। अगर तुमने मेरी बातों पर ठंडे दिल से गौर किया है तो उससे मिलकर और साफ कहकर जाओ कि वो तुम्हारा ख्याल छोड़ दे। देखो तृप्ति, मैं बहुत स्पष्टवादी हूं। मैं मानता हूं कि मोना और रचना बर्बाद ना हो, यही मेरी पहली चिंता है। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तुम भी मोना जैसी ही लगी हो। मैं नहीं चाहता कि महज क्षणिक आवेग में तुम बिना सोचे समझे कुएं में जा गिरो, इसलिए मैंने सारी स्थिति तुम्हारे सामने रख दी है। अगर मेरी बात तुम्हारे मन लगी है तो बड़े धैर्य और गंभीरता से हेम से बात करके जाओ। ऐसे रिश्तों को बेदर्दी से काटना पड़ता है, तभी जिंदगियां बनती हैं।
1: मैं आपका आभार मानती हूं कि आपने पूरी स्थिति मेरे सामने रख दी है। आप चिंता न करें, मैं हेम से साफ साफ कहकर ही जाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी उखड़ी हुई जिंदगी का कुछ बना सकूं।
0: मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं।
1: आप तृप्ति को रोकिए भाई साहब, आप उससे कहिए वो हेम के साथ रहे, मैं ही उनके जीवन से निकल जाऊंगी।
0: अरे कैसी बेवकूफी की बातें करती हो मोना।
1: अभी कुछ मिनट पहले बरामदे में मुझे तृप्ति मिली थी, उसने कहा मोना मैं हमेशा के लिए हेम की जिंदगी से जा रही हूँ, तुम खुश रहो और अपने पति को हाथ में रखो, नहीं रखोगी तो तृप्ति न सही कोई दूसरी आ जाएगी।
0: वो ठीक कहती है।
1: वो शायद यहीं से स्टेशन जाना चाहती और हेम उसे रोक रहे हैं। मैं समझती थी वो इनके पीछे पड़ी है, हेम का कोई दोष नहीं, पर तृप्ति ने मुझे जो कुछ बताया है उससे हेम पर से मेरा विश्वास उठ गया है। ये मुझसे सदा झूठ बोलते रहे, ये न मुझे पूरी तरह छोड़ना चाहते हैं न तृप्ति को पूरी तरह अपनाना। He wants to have the best of both the worlds. और इस झगड़े में बेचारी मेरी बच्ची याद ना पा रही है, जिससे हम आप आए थे ना भाई साहब, बनारस से बहन का पत्र आया था कि वहां एक गर्ल्स कॉलेज में मुझे नौकरी मिल सकती है। मैंने दूसरे ही दिन आवेदन

0: ठीक से सो सकूं, न जाग सकूं, न खा सकूं, न पी सकूं, हमेशा भयाक्रांत रहूं।
1: तुम जो ठीक समझती हो वही करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अकलमंद बिगड़ी बना लेते हैं, रूठे को मना लेते हैं। ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचना बुद्धिमानी नहीं जिसे पार ही न किया जा सके।
0: लेकिन भाई साहब, बिगड़ी को बनाना और रूठों को मनाना क्या सिर्फ औरतों का ही फर्ज है? मर्दों की इसमें हेठी होती है क्या? मैं हेम की प्रतीक्षा करूंगी, लेकिन मेरे टूटे हुए विश्वास को फिर जोड़े इतना तो उन्हें करना ही होगा।

0: लक्ष्मण रेखा। अभी आप श्री उपेंद्रनाथ अश्क का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। प्रोफेसर दास श्री नंदलाल शर्मा, हेमेंद्र श्री श्याम अरोड़ा, नौटियाल श्री राम गोपाल, तृप्ति श्रीमती सुनीति कोहली और मोना श्रीमती वीना होरा।
1: अभी आप सुन रहे थे उपेंद्र नाथ अश्क का लिखा नाटक लक्ष्मण रेखा। निर्देशक सत्येंद्र शरत और प्रस्तुति सहयोग था सुदर्शन कुमार का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से और पत्रों के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें पत्र भेज सकते हैं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। और श्रोताओं, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9457078288। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए, तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत बाजी फिल्म का, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में ये गीत है और इसे लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, बाजी फिल्म का ये गीत जो अभी आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में, इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश की थी मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा, मुस्कान और अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी और आपके परिवार ने इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे थे। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवेज और अब्दुल आज़ाद ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से लिखकर भेजी थी। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश राकेश और रिशिता ने भी मोहम्मद अजीज की आवाज़ का गीत सुनने की फरमाइश की है। देखिए हम आगे इस फरमाइश को पूरा अवश्य करेंगे। और बाजी फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश आसिफ अली खान, मोहम्मद नाज, मुस्कान, आसिफ, सादिक अली खान और सारिक अली खान ने भी की थी। और मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने भी बाजी फिल्म के इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिखकर भेजी थी। तो श्रोताओं, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म पति पत्नी और तवायफ से। आवाजें हैं सलमा आगा और मोहम्मद अजीज की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में ये गीत है और इसे लिखा है आनंद बख्शी ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला जिला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयसा, सायना, महवेश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं ग्राम व पोस्ट राहु नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, अक्षत चौहान, राघव चौहान, कनिष्का, भावना, भव्या और रचना। इस गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं मास्टर ब्रजेश कुमार विलेज मोहम्मदपुर राजौरी से। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से लिखकर भेजी है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया ने। सलमा आगा की आवाज का कोई गीत सुनने की फरमाइश कर रहे थे रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है रविंद्र कुमार राणा की। आप लिख रहे हैं आपने अभी तक अपना पता नहीं लिखा है, बहरहाल आपका नाम हम तक पहुंच गया है, बहुत बहुत शुक्रिया फरमाइश करने के लिए। और ये मैसेज हमें भेज रहे हैं परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीर सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान और आपके सभी पारिवारिक सदस्य। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं सलमा आगा और मोहम्मद अजीज की आवाज का ये प्यारा सा नगमा। फिल्म का नाम है पति पत्नी और तवायफ।

श्रोताओं, ये गीत अभी जो आपने सुना सलमा आगा और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में, इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ ने। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उस गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज़, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और राधा नामदेव। इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं आज़ाद अनुराग, कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। लता मंगेशकर की आवाज का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ, वैष्णव कॉलोनी सनावत से। कर्तव्य फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश आई है गांव गोविंदगढ़ माझी वाला श्री करनपुर राजस्थान से। लिखने वाले हैं राजू टूटेजा, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मनु, शिव, सेठी और आपका पूरा परिवार। ये मैसेज हमारे पास आया है वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, मुस्तकीम सलीम, शोहरत जहां, अजीम खान का। और ये सुनने की फरमाइश कर रहे हैं कर्तव्य फिल्म का ही गीत। और ये मैसेज हमारे पास डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, आरजू और गुड्डू का आया है पटेल नगर मलोट से। अनिल विनोचा जी नगीना से मैसेज कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ का कोई खूबसूरत नगमा सुनने की फरमाइश इन्होंने हमें भेजी है। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज, अनवर और लुबना ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। तो लीजिए आप सब की फरमाइश पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन का ये गीत, जिसे लिखा है कफील अजहर ने और फिल्म का नाम है कर्तव्य, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर की आवाज़ का ये गीत अभी सुना आपने फिल्म कर्तव्य से, और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं वर्ली मुंबई से नवाब खान इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, मुस्तकीम सलीम, शोहरत जहां और अजीम खान। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा भी नगीना फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। पुरखलूस आदाब के साथ दादा बाबू रोड ग्रिडी झारखंड से मैसेज हमें कर रहे हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहमद, मेफ्रा नवाज़, बेबी चाहत और सादिया। आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय, शुभम, पवन जरिए और संजीव डाबेराव, अनुराधा।

कोटवाल की आवाज का गीत सुनने की फरमाइश लिखकर भेज रहे हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर और मलकपुर से नारायण इंग्लिश, सोपान तायडे और आशीष मुरहेकर ने भी अनुराधा पौडवाल की आवाज का गीत सुनने की ही फरमाइश की है। मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद आयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमशुल कमर राही गंज डुंडवारा से हमें मैसेज भेज रहे हैं। इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, महराज अंसारी और बाबू अंसारी मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से अनुरोध कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ का गीत सुनने के लिए। और ये मैसेज हमारे पास आ रहा है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार का, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ और रसीद वारसी नागिन फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। बदलापुर मुंबई से प्रणीता, सिद्धांत और अर्जुन ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत और सरिता गवाणकर के साथ साथ एकांश गवाणकर ने भी अनुराधा पौडवाल की आवाज़ का गीत सुनने की फरमाइश भेजी है। और ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और रितिका का, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। तो लीजिए श्रोताओं, आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं नगीना फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। रात के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले होंगे।
1: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
3: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से

प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की बुखारेस्ट पहुंची। केटरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।